0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2 Radio Musty.
1: भाई सपना, इतने मेहमानों को छोड़कर कहाँ छुप गई? बाहर कब आओगी? जब हम चले जाएंगे तब?

0: Welcome to RM2
1: Radio Masti.
2: Radio Masti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Masti.
0: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
3: मंगलवार 26 मई की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे हैं।
4: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
0: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: प्रेम और संगीत के इस धारे में हम भी बहते चले जा रहे हैं और आपको भी अपने संग संग लिए जा रहे हैं। 5:04, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, रियली होप सब ठीक ठाक हैं और बस अच्छी नींद के बाद फिर से सुबह हुई, फिर से नया पन्ना खुल चुका है, फिर से आपको मौका, हम सबको मौका मिलता है कुछ नया लिखने का, अपनी जिंदगी को संवारने का। सो व्हाटएवर यू माइट बी स्टे वेल ट्यून्ड, आपके मैसेजेस एज यूजुअल नंबर तो वही है 7999298। एवरग्रीन सदाबहार गानों का सिलसिला शुरू हो चुका है एंड नीतू आपके साथ टिल 7 AM।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: पांच वर्ष का रुनेस बिना चाफी का नाम, चाहे वो 13 हो, 14 हो, 15, 16, तारीख जो भी हो या फिर नंबर जो भी हो, आपका नंबर पहला ही आता है. वेरी गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को. ड्राइविंग नाउ एट सच हॉस्पिटल. सो दोस्तों के नाम जयशन, तेंबा, जीवन, ओमिरान, अंगोटिया, साथ में है आकाश, शर्वन, रामदेवा, मेविन, एंड थैंक यू हमारे हम सफ़र बनने के लिए. वेरी गुड मॉर्निंग आपको. काहोलिन से है कौन, मिस्टर गुलाब जगा सिंह एंड फैमिली, बस यादें उभर कर आ गई हैं. प्रेमिला जी फ्रॉम प्लंदी पपाए किचन में है, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही है. सो बों को गाश गन आपके नाम, पति रंजीत, सब परिवार. इक्वली गुज आर टू यू, ज्योति फ्रॉम शाहतुबिनागस, आशनी, रेखा, सुरेखा, माधव परिवार. A very good morning आपको यहाँ पर बोकोगाश. Thank you so much भाई सूरज, सजदा एंड फैमिली त्रियोले से. Good morning धीरज, आयुष, विधिशा, अश्विन, ज्योति, हरक परिवार फ्रॉम मौदाल बेया. यहाँ पर है कौन, वेल गाने की फरमाइश. सुबह सुबह तो फरमाइश टाइम नहीं है माय डियर, मैं देखती हूँ अगर लिस्ट में है संजना, डेफिनेटली आपके लिए

कोशिश करेंगे। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। अगला गाना आपके नाम रीना फ्रॉम पॉपुलर मूसर्स। आपके नेफ्यू श्रेयान खेदा अपना 8th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ढेर सारा प्यार, ब्लेसिंग्स मामा मनीषा, पापा सुधीर, नानी गीता, नाना शिवा, दादी सीता, आंटी रीना, मौसा विशाल, मामू रितेश, मामी श्वेता, दीदी हाना, रितिशा श्रेष्ठा, भाई योहन, सुहान एंड सभी जवान की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको। एंड आपके नाम अब्दुल एंड सायरा बानो एंड ट्यूसडे ब्लेसिंग्स आपके लिए भी हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है शारदा और शारदा की आवाज़ आपको पसंद आई। थैंक यू सरोज, मनीषा बल्कि मोनिका है यहाँ पर, पूनम, श्रिया, उमेश, अर्शी, अम्बल, आशिता एंड आपके सभी डियर वंस के नाम।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: तुम जो हमारे मीत ना होते मुकेश की आवाज़ में आशिक फिल्म का सरबहार गाना वर मीठा मीठा बोलिए और मीठा मीठा सोचे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दिमाग में बस कचरे भरे भरे रहते हैं और दूसरों के बारे में बस बुराइयां करते रहते हैं। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, आपका भी अच्छा होगा, आपका भी भला होगा। 5499294 पर ललिता जीतन। गुड मॉर्निंग मिस्टर टोनी फ्रॉम खुशबुआ।

आप कहते हैं कि इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बीइंग काइंड एंड बीइंग राइट, चूज बीइंग काइंड एंड यू विल ऑलवेज बी राइट. दैट्स सो ट्रू. अभी तो यही कहा ना, सो बी काइंड एंड हमेशा आप सही रास्ते पर चलोगी. सरिता गुडलैंड से, और गाने अच्छे लग रहे हैं, बस एंजॉय कीजिए. 5499-1294 पर मैसेजेस भेजते रहे अपनों के नाम एंड अपाडू फैमिली. गुड मॉर्निंग आपको फ्रॉम गुशनुआ एंड जय हनुमान. रामटिकल फैमिली मीला आपको फ्रॉम मोताब्लॉश.

हजारों में हो, बहारों में हो, दिल में तो हमेशा आप बसे रहते हैं। थैंक यू सो मच। हे प्यारी सी दूतिका, कैसी हैं आप? फ्रॉम रिविया दिखरेओल, आपके पूरे परिवार रघुजना फैमिली को अ वेरी गुड मॉर्निंग।

0: पर हैं मेरी तीन बहनें सभी सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के नाम फ्रॉम बोवालू खास आपके लिए आनी सरोजनी नेगी ओजुल आपादू फैमिली को गुड मॉर्निंग
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musti.
0: इस गीत के बाद आपका होरोस्कोप.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: Aries Mesh Rashi.
2: चलिए जी शुरुआत करते हैं। आज आपका दिन मानो एक साथ कई दिशाओं में दौड़ता नजर आएगा। कामों में भार गौर और आपको थका सकती हैं, लेकिन अगर समय को सही ढंग से संभाल लिया तो सब कुछ आसानी से लिपट जाएगा। सरकारी मामलों में जरा सी भी लापरवाही भी आपको बाद में परेशानी यानी कि इसको डाल सकती है, इसलिए सतर्क रहें।
1: टॉरस वृषभ राशि।
2: आज चारों तरफ से खुशखबरी और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। घर परिवार का माहौल पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुशहाल रहेगा। अगर किसी रिश्ते में खटास चल रही थी तो आज मिठास लौटती दिखाई देगी। ध्यान रखें, किसी विवाद में फंसना आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए शांत रहना ही बेहतर रहेगा।
1: जेमिनी मिथुन राशि।
2: आज किस्मत आपके लिए नया घर, जमीन या संपत्ति से जुड़े खुशखबरी लेकर आ सकती है। लंबे समय से जिस काम को लेकर मन परेशान था वो आखिरकार पूरा होने की राह पर दिखाई देगा। आपकी मेहनत और लगन आपको लोगों के बीच अलग पहचान दिलाएगी। वैसे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
1: कैंसर कर्क राशि।
2: वेल, आज स्टूडेंट्स के लिए सितारे खास चमक रहे हैं। पढ़ाई में मन लगाइएगा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के भी संकेत हैं। मन में किसी के प्रति जलन या फिर नकारात्मक भावना रखने से बचे, वरना खुद की शांति भंग होगी। खोई हुई कोई प्रिय वस्तु मिलने से मन खुश हो सकता है। सरकारी योजनाओं से लाभ मिलने के योग बन रही है। व्यापार में किसी बहस से दूरी बनाकर रखना समझदारी होगी।
1: लियो सिंह राशि।
2: आज का दिन आपको खुद को साबित करने का मौका देगा। किसी सहकर्मी की बात दिल को चुभ सकती है, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास और मेहनत से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे। जीवन साथी की सफलता या प्रमोशन घर में खुशी की लहर ला रहा है। पैसों की वजह से रुका हुआ काम आज आगे बढ़ेगा। पिता की सलाह के से आपके बड़ों की सलाह आपके लिए किसी मार्गदर्शक की तरह काम करने वाला है।
1: वर्गो कन्या राशि।
2: आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी लोगों को प्रभावित करेगी। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें और बिना मांगे सलाह देने से बचें, वरना गलतफहमी पैदा हो सकती है। भाई बहनों के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। घर में किसी शुभ कार्य या मांगलिक आयोजन की तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिससे उत्साह का माहौल बनेगा।
1: लिब्रा तुला राशि।
2: राइट, आज का दिन आपके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा सकारात्मक साबित हो सकता है। व्यवसाय में पहले से बेहतर परिणाम मिलेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्षेत्र में दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद की क्षमता पर भरोसा करना सीखे, ये आपको आगे ले जाएगा। पुराने फैसलों को लेकर थोड़ी कसक मन में जो है रह सकती है, लेकिन वो अनुभव अब आपकी ताकत भी बन सकती है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
2: आज आपका जीवन आराम, सुख सुविधाओं और नई खुशियों से भरता नजर आएगा। बिजनेस में कई बड़ी डील पार्टनरशिप के जरिए आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। संतान आपकी कुछ बातों से असहज जो है महसूस कर सकते हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को समझने की आप पूरी कोशिश करें। घर की सजावट या रिनोवेशन का काम शुरू हो गया है एंड आज आपका मन खुद को और बेहतर बनाने और दूसरों से आगे निकलने की चाह में लगा रहेगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
2: ये दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बिखरने वाला रहेगा। जीवन साथी की ओर से मिला कोई प्यारा सरप्राइज दिल खुश कर देगा। ऊपर की यानी कि भगवान की भक्ति में मन खूब लगेगा। किस्मत भी हर कदम पर आपका साथ निभाती नजर आएगी। यदि किसी को उधार दिया हुआ पैसा अटका था तो उसे वापस मिलने के संकेत हैं।

0: दोस्तों या परिवार के साथ घूमने फिरने या पिकनिक की योजना बन सकती है। बस आसपास के लोगों की नीयत को समझने में थोड़ी सावधानी रखें।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आपके भीतर कुछ नया और बड़ा करने की इच्छा जागेगी। काम को लेकर आपका अनुशासन और ख्याति आपको समय पर सफलता दिलाएगी। परिवार में किसी नए सदस्य के आने की खुशखबरी माहौल को खुशनुमा बना सकती है। कार्यक्षेत्र में बॉस की बातों को हल्के में ना लेना नुकसानदायक हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर चर्चा या फिर बंटवारे की स्थिति बन सकती है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को उम्मीद से जुड़ी अच्छी खबर मिल भी सकती है।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज का दिन हंसी मौज मस्ती और पुराने रिश्तों में मिठास से भरा रहेगा। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर देगी। हालांकि बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। हाँ, परिवार के बड़े सदस्यों के साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं आप, जिससे समाधान का रास्ता भी मिलेगा।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: लास्ट आज आपका मन बार बार भटक सकता है, लेकिन जरूरी कामों पर फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का विचार कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को जल्दबाजी से बचना होगा। स्टूडेंट्स को मानसिक दबाव से राहत महसूस होगी, पढ़ाई में मन लगेगा। सामाजिक कार्यों में आपका योगदान लोगों को प्रभावित करेगा और आपको मान सम्मान या पुरस्कार मिलने के भी योग बन रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: You're listening to RM2 Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: बस थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। एंड लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ ब्लेस्ड ट्यूसडे, जय श्री राम आपको भी, मिस्टर विक्रम कोसियन फैमिली फ्रॉम मोशवासी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट गाना आपके नाम चलाएंगे माँ पापा, माँ सीता पापा देवन मधु और पॉइंट दिलास्को। आज उनकी शादी की 57th एनिवर्सरी है। ढेर सारा प्यार शुभकामनाएं आपको और सेहतमंद रहें। बस बड़ों आप सबका आशीर्वाद आपके छोटों के साथ, फ्रॉम डॉटर्स, बेटे, दामाद, ग्रैंड चिल्ड्रन, सब परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
4: To Radio Musti.
5: The time is brought to you by
6: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
5: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
7: North, South,
8: 103.5.
7: East, West,
8: 96.4.
7: Center,
8: 99.4.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
7: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
3: 6 baje hai. Sunte hain sankshipt samachar aapse aastha. Namaskar.
9: नमस्कार। 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज मंगलवार को राष्ट्रीय सभा की बैठक लगेगी। प्रधानमंत्री से कुल 22 सवाल पूछे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, स्वास्थ्य सेक्टर, कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और सिल्वर बैंक जैसे अहम मुद्दे आज की कार्यवाही के केंद्र में रहेंगे। वहीं देश की पांचों नगर पालिकाओं में नए मेयर और डिप्टी मेयर

0: ने जिम्मेदारी संभाल ली है। पोर्टली में पहली बार राजधानी की कमान दो महिलाओं के हाथों में सौंपी गई है। क्रिस्टल पोंटा नई मेयर चुनी गई है जबकि महजबीन करमताली उनकी डिप्टी होंगी। वाक्वा फिनिक्स में अली हुसैन अब्दुल कादिर नए मेयर बने हैं जबकि क्यूपिप में तशयाना लक्ष्माना पीले को मेयर चुना गया है। कैट्रोबोन में सुबिराज गंगा पिसुन नए मेयर होंगे और इंदिरा देवी कायाला डिप्टी मेयर का पद संभालेंगी। उधर बजट पेश किए जाने से पहले कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस ने बढ़ती महंगाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और कृषि भूमि में कमी को लेकर चिंता जताई है। यूनियन ने ज्यादा सामाजिक और न्याय संगत बजट की मांग की है। और हज से जुड़ी बड़ी खबर, आज योम अराफात मनाया जा रहा है। हज से सबसे अहम दिनों में से एक माने जाने वाले इस दिन लाखों हाजी अराफात के मैदान में इबादत और दुआ में मशगूल रहेंगे। माना जाता है कि इसी मुकाम पर हजरत मोहम्मद ने अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम दिया था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमरीकी सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी ईरान में नए हमले किए हैं। और अब बढ़ते हैं मौसम के समाचारों की ओर। मस्कारीन्स के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज हवाओं का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान केवल ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात हो सकती है, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। रात को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, ऊंचाइयों पर बरसात हो सकती है। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके से ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में नहीं निकले। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त 5:38 पर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
2: Radio Musty.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: ये भी एक सच्चाई है कि जब आपका दिल किसी का हो जाता है तो मतलब प्यार हो जाता है. So keep loving, keep sharing happiness. 6:08. Welcome back to Radio Musti. A very good morning to you all. Especially all those going to work. रास्ते पर already हैं आप. तो please drive carefully. ठंड का मौसम है, सर्दीली रात तो नहीं कहेंगे, सर्दीली सुबह डेफिनेटली कहेंगे. और स्वेटर एक आप कोट पहन कर रखिएगा एंड समथिंग वेरी वार्म, यू नो, कोजी. और यहाँ पर गुड वाइब्स, गुड म्यूजिक आपके साथ, नीतू के संग टिल 7 AM. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू रीना संजीता फ्रॉम कैथ कोको. प्लीज़ कै डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू माई टू बेबीज प्रत्यूष, दुर्वांश, श्रीना और मामा रेणुका, पापा मनोज, हरदयाल फैमिली के नाम, वाई नॉट. गुड मॉर्निंग आपको, कैसे हैं आकाश, जय श्री कृष्ण. साथ में अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू सोनम फूला, अविश, अविश, अश्विनी, मामा के लिए एंड पूरे परिवार के नाम. यही अगला गाना गुजार टू यू ललिता एंड डिविशन फैमिली. ये तो हो गया, लेकिन हाँ, कुमार एंड डिविशन फैमिली यहाँ पर है. ओके, सो चले, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशिंग यू बोल अ लवली मॉर्निंग.

आपके कदमों को रोकता नहीं है बल्कि आपके कदमों को और आगे बढ़ाता है ना। थैंक यू सो मच। यहाँ पर गाना आपके नाम संगीता पूरे परिवार के लिए। माय डियर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू रेडियो मस्ती टीम। थैंक यू मिस्टर धनेश्वर फ्रॉम बॉम्बो, पत्नी सुनीता, रेखा, संजीव, निशा, मीना, ऋषि, तहान, हंसवी, दविदुस, सनीचर फैमिली एंड सबको बोको आज विश कर रहे। थैंक यू सो मच पंखुरी एंड धनराज। यहाँ पर है छोगा लाल परिवार फ्रॉम गुडलैंड्स। हल्की हल्की हवाएं बह रही है, आपके बदन को छू रही है, आह मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। हैप्पी 15th बर्थडे टू प्रिंस जान गुलाब ऑफ रोड्रिग, बोंजोर रोड्रिग, ज़ियान, ज़ारा, रविश, प्रिशा, लव शंडिया वांस की तरफ से ढेर सारा प्यार आपको। 5499 1294 पर आपके नाम मैसेजेस, आपके अपनों के नाम पैगाम।

सही रास्ते पर होंगे, ड्राइव कर रही होंगी, तो सूदिंग दिल के एहसासों को जगाने वाला नगमा। थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए। कैसी हैं प्यारी से अंजू लोहर फ्रॉम मोगो, डेडिकेटिंग द नेक्स्ट गाना फॉर रचना एंड अक्षय बाबूराम जिनकी शादी की दूसरी सालगिरह है। बेस्ट विशेस बेटा शिवांश, सभी लोहर बाबूराम परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार श्वेता हुकुम फ्रॉम बोनाकई, हबी हैं रोशन एंड लव यू लोड्स आप कहते हैं उनको, बस ये प्यार अमर रहे यही तो हम कामना भी करते हैं।

बस इसी मस्त गानों के साथ हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं 6:28 6:30 पूरा समाचार बुलेटिन उसके बाद वेदिता के साथ मॉर्निंग बीट चलते चलते अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको प्यारी सी कविता एंड यहाँ पर आप कहते हैं कि प्लीज रिव्या जहाँ पर सी नानी का बर्थडे है मॉम नाना और सचिन पापा बोबी मामा दीपा विराज वशिष रेशमा रूमा विद्या विक सब की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं लगे हाथ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी रेखा एंड पूरे परिवार एंड मेरा नाम भी जोड़ दीजिए प्लीज व्हाई नॉट आप है भदवा का विदेशी एंड एनी सॉन्ग आप कहती हैं टू अनुषा जो भी गाने हैं जब हम चलाते हैं सब आपके नाम

नमस्कार, 6:30 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज राष्ट्रसभा की बैठक लगेगी, प्रधानमंत्री से 22 सवाल पूछे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दे रहेंगे केंद्र में। देश की 5 नगर पालिकाओं में नए मेयर और डिप्टी मेयर ने संभाली जिम्मेदारी। पोटली में पहली बार 2 महिलाओं के हाथों में होगी राजधानी की कमान। बजट से पहले CITU ने बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था और कृषि भूमि में कमी को लेकर चिंता जताई। ज्यादातर सामाजिक और न्यायसंगत बजट की मांग की गई है। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर

0: आपदा राहत उपकरणों का किया वितरण। उद्देश्य तूफान और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी को मजबूत बनाना है। हज का सबसे अहम दिन आज मनाया जा रहा है यौम अराफात। लाखों हाजी अराफात के मैदान में इबादत और दुआ में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमरीकी सेना का दावा है दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले, मिसाइल ठिकानों और नौकाओं को बनाया गया निशाना। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। आज मंगलवार को राष्ट्रीय सभा की बैठक फिर से लगेगी। प्रधानमंत्री से कुल 22 सवाल पूछे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, स्वास्थ्य सेक्टर, सिल्वर बैंक, कानूनी व्यवस्था और सड़क सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे आज की बैठक के केंद्र में रहेंगे। करुणा लाली।
1: सांसद राम इटवारिया सत्र की शुरुआत सार्वजनिक कर्ज पर प्रधानमंत्री डॉक्टर विनराम गुलाम को संबोधित एक सवाल के साथ करेंगे। वे जानना चाहते हैं कि क्या वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और महंगाई के बीच 2025-2026 वित्त वर्ष के लिए निर्धारित अनुमान से अधिक कर्ज हो चुका है। साथ ही वे ये भी पूछेंगे कि किन लेनदारों से उधार लिया गया और कितनी राशि उधार ली गई। इसके बाद सांसद इसान जुमन मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 के बीच एकत्रित VAT की सटीक राशि के बारे में जानकारी मांगेंगे। सांसद आश्ले रामदास प्रधानमंत्री से बैंक ऑफ मॉरिशस की उस विज्ञप्ति पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें 83 बिलियन रुपए की कथित मुद्रा छपाई का उल्लेख किया गया था। सांसद रोशन झमन गंगा तालाब पर एक पर्यटक पर हुए हमले की जांच की प्रगति पर अपडेट चाहते हैं। वे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या स्थल को स्पिरिचुअल सेंचुरी या फिर स्पिरिचुअल पार्क घोषित कर वहाँ की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रवेश सीमित करने संबंधी कोई अनुरोध किया गया है। इसके अलावा संसद के एजेंडे में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल भी शामिल है। इस विधेयक के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन गठित करने का प्रस्ताव है जिसका मकसद संविधान में व्यापक सुधारों की समीक्षा और सिफारिश करना होगा। इनमें मौलिक अधिकारों को मजबूत करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण और सार्वजनिक प्रशासन में बेहतर सुशासन सुनिश्चित करना शामिल है।
0: हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में कि देश की पांचों नगर पालिकाओं में अब नए चेहरे और नई जिम्मेदारियां देखने को मिलेंगी। सोमवार 25 मई को यानी कल नगर पालिका चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई और इसके साथ ही नए मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल भी शुरू हो गया है। पोटली में इस बार एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। पहली बार राजधानी की कमान दो महिलाओं के हाथ में होंगी। लेबर पार्टी की क्रिस्टल पोंदो नई मेयर चुनी गई हैं जबकि MMM की महजबीन करामताली उनकी डिप्टी होंगी। नई लोर्ड मेयर का कहना है कि वे नगर परिषद को लोगों के और करीब लाना चाहती हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे बुनियादी ढांचे, विरासत संरक्षण और पोटली के लोगों के कल्याण से जुड़ी कई परियोजनाओं पर ध्यान देंगी। उनको सुनते हैं।
2: Pour lui, c'est une ville culturelle et économique. Et mon cousin Redonis Ovalier me connaît qui beaucoup de monde est là dans Pour lui. Par exemple, nous avons beaucoup de soucis par rapport avec Bazar. Nous avons infiltration de rats, de pigeons qui nous pouvaient travailler ça, même jour à venir. Nous pouvaient assister travailler avec le ministre des Finances, le ministre de local government et trouver les moyens parce que. Il arrive 2 ans, nous là, nous avons besoin au moins faire quelque chose. Nous pas qu'avoir d'hier, nous payons l'argent et nous assister. Nous avons l'argent.
0: वहीं डिप्टी लोर्ड मेयर महजबीन करामताली ने निरंतरता, लोगों से जुड़ाव और प्रतिबद्धता को अपनी प्राथमिकता बताया। उनका कहना है कि वे ईमानदारी और सम्मान के साथ पोटली की सेवा करेंगी। उनको सुनते हैं।
3: C'est un suivi, c'est un travail continu qui nous peut faire. Le maire sortant, l'adjoint, nous commence le travail et nous là pour nous continuer et qui nous faire les projets arriver. Moi, avec la mairesse, commence à établir notre plan de travail. Et nous, pour là, nous pour l'écoute des citadins, pour là, pour les gens les plus vulnérables.
0: कल ही वाक्वा फिनिक्स नगर परिषद में भी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। अली हुसैन अब्दुल कादिर वाक्वा फिनिक्स के नए मेयर चुने गए हैं। उन्होंने खेल सुविधाओं को बढ़ाने, सड़क

0: सड़कों के निर्माण और सार्वजनिक लाइटिंग व्यवस्था में सुधार जैसे कई परियोजनाओं को लागू करने की बात कही है. उनको सुनते हैं.
1: Nous voulons plutôt focus pour capable implément ça va un projet qui finit déjà mettre des pipelines. Devant drain, du design une pipeline, une ban rénovation, une ban infrastructure sportif, on va un mini soccer pitch, ban terrain football, ban terrain football grand terrain qu'on disait aux 11, puis une énorme aussi ban research aussi ban road, ban construction de new road aussi nous design, ban lighting système nous vous améliorer. Tout ça va un projet fini. Mettez la pipeline, mais faute de temps pas venir réussir à implémenter. Mais nous pouvons mettre toute l'énergie, vous répétez ça, pour qui nous capables au moins réaliser ce projet.
0: वहीं मारी कैथरीन क्रिस्टल लेग्रैंड नई डिप्टी मेयर बनी हैं वाकुआ फिनिक्स शहर की. उन्होंने अपने पूर्व नेता पॉल बेरोंशे के प्रति आभार प्रकट किया. उनका कहना है कि वे वाकुआ फिनिक्स शहर की पुरानी पहचान और गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करेंगी.
2: Moi, je tenais à remercier le Premier ministre. Je remercie aussi tous les dirigeants de l'Alliance du changement et dirigeants du MMM. Et aussi, j'ai une pensée spéciale pour mon ancien leader qui m'en apprend beaucoup avec lui et qui m'a pas continué ce travail. Et comme mon camarade Aline dit, nous pouvons continuer le travail que nos camarades Saint-Gilles, Saint et tous les conseillers vont faire pendant l'année venue. Et parce qu'ils nous viseront à avoir quoi sous l'aide de noblesse.
0: क्यूपिम में भी कल सोमवार को आयोजित नगर परिषद बैठक के दौरान नई मेयर का चुनाव किया गया. तशियाना लक्ष्मणा पीले शहर की नई मेयर चुनी गई हैं, जबकि डायना आमी को डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है. इन नगर पालिका चुनाव के बाद ये दूसरा अवसर है जब किसी शहर की कमान पूरी तरह महिलाओं की टीम के हाथों सौंपी गई है. नई मेयर टीम अब क्यूपिप के विकास और शहर से जुड़े अहम मुद्दों पर काम करेगी. मेयर और डिप्टी मेयर को सुनते हैं.
3: Premièrement, un sentiment de fierté hein. En tant que femme, connaître une vie, le DPM, être DPM à l'île Maurice, c'était premièrement quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, nous trouvons cette madame, le 10, qui me prend plus comme meilleure, députée meilleure, dans les 5 différentes villes. Donc, c'est un premier, parce qu'après, nous avons réalisé qu'après l'indépendance, les armées de Safin arrivaient. Donc, ça montrait comment le PM, ensemble avec l'Alliance du changement, toi le ministre, au fait, moi j'ai franchement envie que même madame émancipée dans la politique.
0: सुबिराज गंगा बिसुन काट्रोबोन शहर के नए मेयर चुने गए हैं, जबकि इंदिरा देवी कायाला डिप्टी मेयर का पद संभालेंगी. नई मेयर टीम के सामने काट्रोबोन के विकास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी. नए मेयर को सुनते हैं. काट्रोबोन में नई टीम ने निरंतरता बनाए रखने की बात कही है. लक्ष्मी सुबिराज गंगा बिसुन को काट्रोबोन का नया मेयर चुना गया है, जबकि इंदिरा देवी कलाया डिप्टी मेयर होंगी. दोनों को सर्वसम्मति के साथ चुना गया. इस अवसर पर सरकार के कई सदस्य भी उपस्थित रहे. नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता नगरवासियों की अपेक्षाओं को पूरा करना है. बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं और नगरपालिका सेवाओं में सुधार के अलावा नए मेयर ने कर्मचारियों और नगरवासियों के साथ संवाद और नजदीकी संबंध पर जोर दिया.
4: Il y a la foi à Belle-Rose qui est déjà enclenchée et il y a un problème de BLN, un terrain abandonné. Nous pouvons essayer de mettre un lot. C'est un nouveau concept, rencontre avec le maire là. Il y a une plateforme de dialogue entre le maire, député maire et aussi un conseiller qui nous capable qui est un truc qui a une difficulté de gagner le terrain, qui a quelque chose qui nous capable d'améliorer pour eux.
0: अपने नए वर्ष के कार्यकाल को सफल बनाने के लिए नए मेयर अपनी डिप्टी मेयर के सहयोग पर भरोसा करेंगी. इंदिरा देवी ने नगर पालिका परिषदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया.
5: Nous remercier le gouvernement qui vient de mettre, qui vient de commencer, pense, un peu aux dames, parce que nous aussi, nous avons besoin de nos places dans la société. Et c'est madame qui est le pilier de la famille, partout. Donc voilà, on est là, on va faire notre preuve.
0: बजट पेश किए जाने से पहले कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस ने कई अहम मुद्दों को लेकर चिंता जताई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की मुश्किलें, बढ़ती महंगाई और कृषि भूमि में लगातार कमी, यूनियन का कहना है कि इन सभी मुद्दों

0: पर अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सीआईटीयू ने ज्यादा सामाजिक और न्याय संगत बजट की मांग की है, साथ ही मध्यम वर्ग को अधिक सहायता, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। राधा कृष्णा साजन से बात की हमारी सहयोगी शैली निर्बन ने, विवरण करुणा लालू का है।
1: हॉस्पिटल सेक्टर में कर्मचारियों की कमी, ओवर टाइम भुगतान में देरी, साथ ही चिकुनगुनिया और लेप्टोस्पिरोसिस से जुड़ी स्वास्थ्य चिंताओं को लेकर ट्रेड यूनियन ने खासतौर पर अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेस और इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की भी आलोचना की। यूनियन का कहना है कि इस क्षेत्र में कई बिलियन रुपए की बर्बादी हो रही है और इसमें गहरे सुधार की आवश्यकता है। एक अन्य चिंता का विषय उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले उत्पादों की कीमत और गुणवत्ता नियंत्रण। यूनियन खाद्य सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं और ये भी कहती हैं कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटीज के कारण कृषि भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है। ट्रेड यूनियन ने मध्यम वर्ग के लिए अधिक अनुकूल कर नीति, प्रवासी श्रमिकों के बेहतर नियमन तथा मॉरिशस में बढ़ती सामाजिक समस्याओं के मद्देनजर शिक्षा और मनोरंजन में अधिक निवेश की मांग की है।
0: नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर द्वारा आपदा राहत उपकरणों का प्रतीकात्मक वितरण किया गया। ये पहल रेजिलियंस बिल्डिंग एंड डिजास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट इंडिया इंडियन ओशन कार्यक्रम के तहत उठाई गई है। वितरित उपकरणों में पेड़ काटने वाली मशीनें, पानी निकालने वाला पंप और राहत दलों के लिए सुरक्षा सामान शामिल हैं। उद्देश्य है प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए मॉरिशस को ज्यादा मजबूत बनाना। ऑफिसर इंचार्ज प्रेमानंद बदू को सुनते हैं।
2: इंडियन ओशन कमीशन यूरोपियन यूनियन,
1: हिंद महासागर आयोग ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर मॉरिशस में जोखिम और संकट की संभावना को घटाने के लिए सहयोग मजबूत किया है। खासकर स्थानीय अधिकारियों को जो उपकरण मिले हैं, इनकी बदौलत वे ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे। फर्स्ट रेस्पोंडर अन्य प्राथमिकताओं को भी देख पाएंगे। इन उपकरणों में ज्यादातर SMF को दिए गए हैं। ये सुनिश्चित करेंगे कि देश को जल्द से जल्द सभी सुविधाएं प्राप्त हो।
0: वहीं डिजास्टर रिस्पांस यूनिट के मेजर राजीव दबारी का कहना है कि तूफान, अचानक बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में ये उपकरण बेहद अहम होंगे। उनसे बात की हमारी सहयोगी शैली निर्बन ने, विवरण करुणा लालू।
1: हमारी इकाई के लिए एक बहुत शुभ और प्रतीकात्मक दिन। इन उपकरणों का उपयोग खासकर आपदाओं के समय किया जाएगा, खासकर तूफान, बाढ़, मानव संकट के समय। इनमें वाटर पंप और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी शामिल हैं। इससे कर्मचारियों की सहायता होगी।
0: इस्लामी तकवीम यानी इस्लाम के कैलेंडर में आज एक बेहद पाक और अहम दिन माना जाता है, जिसे यौम अराफात कहा जाता है। हज की अदायगी के हिसाब से ये सबसे अहम मरहला होता है। सभी हाजी आज अराफात के मैदान में पहुंचेंगे, जहां वे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे और अल्लाह से रहमत, बरकत और माफ़ी की दुआ मांगेंगे। माना जाता है कि कोह ए अराफात पर ही इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद साहब ने अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम दिया था। आज हाजी मस्जिद अल निमरा में भी नमाज अदा करेंगे। सुमेरा अकबर अली।
3: यौमी अराफा वो है जब हज की नियत से जुटे वो सारे मुसलमान सऊदी अरब के मैदानी अराफात में होते हैं। इस्लामी कैलेंडर के दुल्हिज्जा महीने की 9वीं तारीख को ये रोज़ आता है जो रोज़े हज है। कोहे अरफा पर ही इस्लाम के आखिरी नबी सरकारी दोआलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए आखिरी खुतबा दिया था। 2 मिलियन से ज्यादा मुसलमान अपना फर्ज पूरा करने सऊदी अरब गए हैं। मैदानी अराफात में तपती धूप के बावजूद सभी हाजी हज अदा करेंगे। वो खुदा से दुआएं तलब करेंगे और रब जलील से मग़फ़िरत मांगेंगे। आज के दिन रोज़ा रखा जाता है और सभी मुसलमान ज्यादा से ज्यादा माफ़ी और खुदा से रहमतें तलब करते हैं। 1500 से ज्यादा मुर्शन मुस्लिमीन हज अदा करने के लिए

देश स्तर पर अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के मिसाइल ठिकानों और कुछ नौकाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई ताकि क्षेत्र में मौजूद उसके सैनिकों की सुरक्षा की जा सकी। वहीं ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई लेकिन किसी समझौते तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। हालांकि नए हमलों पर ईरान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्करविंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात हो सकती है, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। रात के मौसम की बात करें तो ऊंचाइयों पर मौसम रह रहकर खराब ही रहेगा, अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 20 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:36 पर हो गया है, सूर्यास्त होगा शाम को 5:48 पर।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे यूसुफ, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। माधव लेन मोताबा में श्रीमती विद्वंती रघु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विद्या के नाम से अधिक जानते थे। पैदाइश नाम माधव, उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उनके बेटे संताराम रघु के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। खुदबा सैन कटरोबोन में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की अनीता देवी दीपू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम आलोक, लोग उन्हें अनीता के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं के मकान कटरोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेतो कटरोबोन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड खोंगुब में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के रोशन कालूते की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राम के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी बेटी के मकान घोंगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड ओयता वाक्वा में 81 ईयर्स ओल्ड की सती सावित्री संतू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुसुल, लोग उन्हें सुरेशा के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उन्हीं के मकान वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेहिनो वाकुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। सेगन रोड मारी जानी रोजबेल में 42 ईयर्स ओल्ड के श्री अरुण रविंद्र तोमाल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विकेश के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे उनके पिता सुभाष तोमाल के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की ही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। पेरिस फ्रांस में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के महेश दुकरन की मृत्यु हो गई है। वे पहले मॉरिशस में मुसलमान कुंजू प्लेंदी पपाई के रहने वाले थे। उनकी अर्थी गुरुवार 28 मई को दिन के मॉरिशस के समयानुसार दिन के 1:30 बजे फ्रांस में ही उठाई जाएगी।

Le Grand Branch Road, Grand Boimin, Basata, Saleki, 62 years old, की पुलवंती तपसी की मृत्यु हो गई है. पैदाइश शाम सुकाहा, लोग उन्हें वीना के नाम से अधिक जानती थी. उनके अर्थे आज सुबह के 10 बजे उनके पति कंदायानाल के मकान खोंबुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोंबुआ की ही शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टू डी एफ 10 ईएम. Chemin Rouleau, Bélier-Rivière-Sèche-Mi, 85 साल की, 85 years old की, रमावती दाबू की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें सुबहवती के नाम से अधिक जानती थी. उनके अर्थे आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी बेटी विजय दाबू के मकान Bélier-Rivière-Sèche से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टू डी एट 2 पीएम. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

6:55 बस हमारे जाने का टाइम आ गया है और दिल की कलम से आप कुछ नया लिखे, कुछ ऐसा लिखे जिससे आपका दिन, आपकी रात, आपकी जिंदगी, आपका जीवन एकदम सवर जाए। थोड़ी देर में वेदिता के साथ मॉर्निंग बेट, मिलते हैं आपसे थर्सडे मॉर्निंग को। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे अहेड।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
1: वेलकम टू RM2।
3: रेडियो मस्ती,
2: रेडियो मस्ती,
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
3: सेंटर
2: 99.4।
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
1: Feel the Musti.
4: Time check 7 baje hai.
5: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2
1: Radio Musti. Musti.

0: बेबी को बेस पसंद है।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
3: बेबी को बेस पसंद है, लेकिन बेस में क्या पसंद है ये नहीं पता, क्योंकि पिज्जा के भी कई सारे बेसेस होते हैं ना। तो चलो कोई बात नहीं, सुबह के 7:05, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती, वेलकम टू मॉर्निंग बीट। चलो भाई, यहाँ पर हम भी लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे कमाल के गाने हमारे आज के प्रोग्राम में, जहाँ पर आपके सारे स्ट्रेस को हम करेंगे दूर, लेकिन उसके साथ साथ खुश करने के भी कई सारे हमारे पास ऑप्शन हैं आपके लिए। तो गेम्स है, साथ में स्पोर्ट्स है, अभी थोड़ी देर में बर्थडे सेलिब्रेट करना है, और कुछ और सरप्राइजेस के साथ गए हैं आपके लिए लेकर आपका मॉर्निंग बीट। तो हमारे साथ रहिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड इन योर मैसेजेस ऑन 5491294।
1: अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो, मॉर्निंग बीट RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: A good beat for your morning show.
1: Come on.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: सुबह के 7:08 हुए हैं. यस, जैसा हमने कहा कि हम आपको करेंगे हैप्पी हैप्पी हैप्पी. अभी आपने गाना सुना, जी हाँ, और ये सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म से लिया गया था. तो अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे तो आपको हो सकता है MBC के साथ खेलने पर मिल सकता है एक वाउचर वर्थ 500 रुपीज वेंडी बाय हैंड ऑफर टू यू बाय MJ इवेंट्स ऑफ इनाम. ओके, तो आपको मुझे बताना है कि ये जो गाना भी आपने सुना, लाइक आई सेड सीक्रेट सुपरस्टार का, इसमें आमिर खान का जो किरदार था उसमें उन्होंने कौन सा किरदार निभाया था? आर्किटेक्ट था उसमें, या तो फिर वो एक हीरो था, या तो फिर एक म्यूजिशियन था. आपके पास तीन ऑप्शन है, आप मुझे जल्दी से बताइए. 5491294 पर, आर्किटेक्ट था वो, एक एक्टर था उस मूवी में, या तो फिर वो एक म्यूजिशियन था. आपको मुझे बताना है, सही जवाब देना है 5491294 पर.
0: RM2
2: रेडियो मस्ती.
4: Guys, ça vous pas faire popcorn là là? Astier! Si me dis qui popcorn, c'est une nouvelle façon pour gagner cashback le shopping. Ou sautez tellement content, non? Et ça cashback là, ou capable de transférer direct le compte la banque et l'air là, ou décider que ça n'a pas pour faire content avec sa petite casse là. Allons, pas tarder! Download application popcorn depuis Play Store ou App Store, scan ou ban récit paiement et si dans le panier, la main produit qui rapporte tout popcorn. Ça fait bon! Popcorn! Fais la bouse doux! Vite, follow popcorn mon Slow Facebook. Cette fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, petites attentions, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners. Passez en magasin et trouvez le cadeau parfait pour dire merci à nos héros. Les tasses maman et papa à 149,95 € et le coffret déodorant et eau toilette Ulrich de Varence à 459,95 €. Pas oublier, ex-scan to pay, gagne plus points Weave. À tous les mamans et papa, merci.
5: On est tous winners.
0: RM2
2: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musty.
2: All right, that was a beautiful one for you. Good morning and welcome. सुबह के 7:13 अब तेरा क्या होगा कालिया? चलो जो होगा अच्छा ही होगा. अच्छे अच्छे सोच के आप उठे होंगे आज, है ना. तो इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में अगर मैं आपके मॉर्निंग को और भी ब्यूटीफुल बना दूँ, तो यहाँ पर चलिए हमने आपसे एक सवाल पूछा था. हमने आपसे कहा था कि ये जो सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर खान का जो किरदार था, उसमें वो आर्किटेक्ट थे, उसमें वो एक्टर थे, उन्होंने म्यूजिशियन का किरदार निभाया था. एंड द राइट आंसर, उन्होंने निभाया था एक म्यूजिशियन का किरदार. यस, सही जवाब किसने दिया, चलिए जानते हैं. तो आपको खेलना था हमारे साथ MBC के साथ, और आपके लिए एक गिफ्ट वाउचर था वर्थ 500 रुपीज वनडी बाय हैंड ऑफर्ड बाय MJ इवेंट्स ऑफ नाम. और यहाँ पर सही जवाब देकर विनर बनी है सुषमा नगेसर बिगन. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया. तो ये 500 रुपीज का वाउचर जाता है आपके नाम. भूलिएगा नहीं कि हमारी जो प्रोडक्शन असिस्टेंट वो आपको थोड़ी देर में कॉल करेगी. बाकी आपका जो वाउचर है उसको आपके लिए पोस्ट कर दिया जाएगा.
1: RM2 Radio Musty.
0: Hit music only.
3: Radio Musty feels a musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: And yes, Radio Musti सुबह के 7:18 आज है Tuesday 26 मई. हेलो जी, कैसे हो जी? बड़ा खुश नजर आ रहे हो. चलो आपकी खुशी को चार चांद लगा देते हैं. कैसे? आपके लिए लेकर आए हैं चार ऐसी चीजें जो आपको मिल सकता है हमारे इस गिफ्ट हैम्पर में. जी हाँ, Farmland हॉट चॉकलेट, Farmland फैमिली सीरियल, Farmland मिल्क पाउडर और एक एक्सक्लूसिव मग. अब चलिए यहाँ पर शुरू होता है हमारा असली गेम.
3: कमजी वाला मशीना, एक Farmland नुगेयों को बूकू प्लीज.
2: जी हाँ बिल्कुल, हमारा गेम जो है आपके लिए हम लेकर आए हैं Farmland की तरफ से. देखो भाई, मैं अभी सुबह सुबह आपके दिमाग का दही नहीं बनाने वाली हूँ. बहुत ही आसान तरीका है, आपको बस मुझे अपने 31 सेकंड्स देने हैं. आपके लिए हम एक प्रोमो चला रहे हैं, ठीक है? ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, 31 सेकंड्स मांग रही हूँ. आपके लिए हम एक प्रोमो चला रहे हैं जिसमें आपके लिए यहाँ पर तीन टैगलाइन रखे गए हैं, लेकिन वो क्रियोल में है. मैं आपको हिंदी अनुवाद बता देती हूँ. बस आपको करना क्या है कि आपको उसको सुनना है और फिर उसके बाद आपको मुझे बताना है कि ये तीन कौन से टैगलाइन है. ठीक है जी, आपको मुझे बताना है कि ये तीन कौन से टैगलाइन है. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और ज्यादा आसान, और ज्यादा तैयारी, और ज्यादा स्वादिष्ट. जी हाँ, अब आप सोचिए सोचिए सोचिए, फिर मैं अभी आपके लिए वो प्रोमो चला रही हूँ. अब मुझे वो तीनों टैगलाइन आपको मुझे बताना है और ध्यान से सुनना, नोट कर लेना और मुझे कॉल करना. जी हाँ, 5491294 आपको पता है, ये तो मैसेज भेजते हैं, लेकिन आपको मुझे कॉल करना है. जी हाँ, फ़ोन करना है मुझे एंड आपको मुझे बताना है कि वो तीन टैगलाइन कौन से हैं. तो जल्दी करें, आप मुझे जवाब सोच के बताइएगा. मैं आपके फोन का कर रही हूँ इंतजार.
4: L'habitude qui jamais pousse en zé, ou tea time avec Farmland.
3: Ah ben oui, madame Sheila, ou toujours bien smart.
4: Et comme au sorti travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Farmland.
3: Mmh, ou fais-moi faire.
4: Assez avec Farmland Hot Chocolate, la vie encore plus tamame. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
3: Assez avec Farmland, nous gagnons encore beaucoup plus.
4: Farmland, ça même nous. Smart choice.
0: A good beat for your morning show. Morning Beat. RM2.
1: Radio Musti. Musti.
0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: जी हाँ बिल्कुल, हमने आपके लिए प्रोमो चला दिया. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर 31 सेकंड्स एंड नाउ आपने ध्यान से सुना होगा वो जो तीन टैगलाइन है, और आसान और ज़्यादा तैयारी और ज़्यादा स्वादिष्ट आपको मुझे बताना है और मुझे फ़ोन करना है 4028035 पर फॉर 028035 पर. जल्दी करें, जवाब भेजें और ले जाइए नाम.
5: Banjo!

0: चै चू चै चै। भाई इनका दिल तो धक धक करने लगा, लेकिन यहाँ पे हमारा दिल करता है चू चै चू। लेकिन यहाँ पर अभी समय हो गया है उनसे मिलने का, पूछने का कि वो तीन जो टैगलाइन है वो क्या है। चलिए मिलते हैं इधर आपसे। हेलो, गुड मॉर्निंग।
1: मॉर्निंग,
0: गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ?
1: मैं मनीषा बोल रही हूँ।
0: मनीषा जी कहाँ से बोल रही है?
1: सैपुर से।
0: सैपुर में काफी ठंड है मनीषा जी।
1: हाँ, बहुत ज्यादा।
0: और इस ठंडे ठंडे मौसम में अगर आपको गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट, गर्मा गर्म आपको सीरियल, या तो फिर आपको दूध बनाने के लिए मिल्क पाउडर और एक प्यारा सा एक्सक्लूसिव मग मिल जाए तो क्या बात है, है ना?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो इसके लिए मैंने सवाल किया था और आपने जवाब दिया, एक बार रिपीट कर।
1: जी
0: ओहो ओहो, क्या बात है जी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है मनीषा जी, कंग्रेचुलेशंस। जी हाँ, आपको मिल रहा है एक गिफ्ट हैम्पर जो आपको MBC आकर कलेक्ट करना पड़ेगा अपने ID कार्ड के साथ। और ये गेम था आपके लिए फार्मलैंड की तरफ से, और जैसा मैंने कहा कि फार्मलैंड की तरफ से हॉट चॉकलेट, फार्मलैंड फैमिली सीरियल, फैमिली के लिए पूरा यहाँ पर फार्मलैंड मिल्क पाउडर और एक एक्सक्लूसिव मग आपके लिए रखा गया है। एंजॉय योर डिलीशियस ट्रीट्स विद योर फैमिली हमारे फार्मलैंड के साथ। कंग्रेचुलेशंस।
1: थैंक यू।
0: खुश हैं आप? आप खुश हैं?
1: बहुत खुश हूँ।
0: बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, आप अभी अभी अभी आकर कलेक्ट करेंगी MBC, अपना ID कार्ड लेकर जरूर आइएगा।
1: जी जरूर।
0: थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ गुड डे।
1: बाय।
2: कम से वाला मशीना एक फार्मलैंड नु गयों को बूकू प्लीज।
3: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
2: Radio Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: It's a beautiful morning. एक नई शुरुआत, कल जो हुआ भूल जाओ और जिंदगी में मुस्कुराओ और आगे बढ़ते रहो। चलिए भाई, इसी के साथ समय हो गया है कि जिनका आज बर्थडे है उनकी भी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। आप किसी का बर्थडे और आप उनको विश करना चाहते हैं, चलो कोई भी, हर कोई तो विश करता है, बस हैप्पी बर्थडे बोल दिया, व्हाट्सएप पे आपने बुकेज भेज दिए, सब कुछ भेज दिया, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी मेहनत भी करनी होती है। एक छोटा मैसेज आपका उनकी लाइफ में कई सारी खुशियां लेकर आ सकता है, क्योंकि अब हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं बर्थडे ऑफ द डे। जी हाँ, लुलु हाइपरमार्केट की तरफ से देखते हैं कि वो कौन है जिनका आज हम बर्थडे मनाएंगे, वो भी मनाएंगे बर्थडे ऑन एयर। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप के फैमिली सर्कल्स में किसी का बर्थडे है या फैमिली मेंबर्स में कोई है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, डोंट फॉरगेट टू सेंड मी देयर नंबर एंड उनका नाम बिना नाम के हम कैसे उनको बुलाएंगे, है ना? तो उनका नाम और उनका फोन नंबर आपको भेजना है 54991294 पर, और फिर उसके बाद यहां पर होगा कमाल, क्योंकि उनका करेंगे हम फोन ट्रिंग ट्रिंग और उनको विश करेंगे हैप्पी बर्थडे। तो अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो जल्दी करें, भेजें उनका नाम और उनका फोन नंबर, ताकि लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से हम देंगे उनको सरप्राइज।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: Comme là, elle a senti bon que toi là. Qui? Tu baignes de parfum? Tu l'auto aussi baignes de parfum? Tu sales des bains si baignes de parfum toi? Tu comique toi deux?

0: for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: एंड जस्ट फ्रेंड्स, लाइक आई सेड, इट्स बर्थडे ऑफ द डे और यहाँ पर हम लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से सरप्राइज करते हैं सबको. मॉर्निंग में एक छोटा सा गिफ्ट मिल जाए तो क्या बात है. तो यहाँ पर भी हम पूरी कोशिश कर रही हैं कि जिनका बर्थडे है उनको हम फ़ोन लगाएं, उनसे बात करें. तो हमारे कोशिश में चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या यहाँ पर वो फ़ोन उठाते हैं या नहीं. वेल, शायद हाँ शायद नहीं भी. भाई, हम जिनको फ़ोन कर रहे हैं उनका नंबर बिजी है तो कोई बात नहीं. यहाँ पर चलिए उनको हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं. एंड यहाँ पर बर्थडे किसका है ये भी जान लेते हैं. सो आज बर्थडे है मिस्टर दयानंद रामदेवर सिंह का और उनको हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे उनकी पूरी फैमिली की तरफ से और विशेज़ हैं आपके लिए.

0: रेडियो मस्ती।
1: सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे मिस्टर दयानंद राम दिवर सिंह। आपकी इस जीवन में बहुत प्यार, बहुत खुशियां हो। आपकी पूरी फैमिली की ओर से विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे। और लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आपको मिल रहा है एक सरप्राइज। जी हाँ, आपके लिए एक वाउचर है जो कि आपको कलेक्ट करना है MBC आकर, आज नहीं तो कल। आपके पास 2 दिन है, प्लीज आएगा अपने ID कार्ड के साथ।
2: मॉर्निंग बीट, a good beat for your morning show. James.
3: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News, latest updates.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
4: और ये स्पोर्ट्स वर्ल्ड की खबरों के साथ आ गए स्टूडियो में अरविंद, चलिए उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि क्या चल रहा है। हेलो अरविंद, गुड मॉर्निंग टू यू।
5: गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। स्पेन के वर्ल्ड कप स्क्वाड में लामिन यमाल है, पर पहली बार के लिए रियल मैड्रिड से एक भी खिलाड़ी लागोआ में नहीं है। रियल मैड्रिड के डिफेंडर डीन होइसन और दानी कावाहाल नहीं चुने गए। प्रीमियर लीग से 7 खिलाड़ी हैं, दाविद राया, जुबिमेंडी, पेड्रो पोरो, कुकुरेला, रोड्री, येरेमी पिनो और मेरिनो टीम में शामिल हैं। वर्ल्ड कप के दौरान ईरान की टीम मेक्सिको में रहेगी। यूएसए उन्हें होस्ट नहीं करना चाहता, पर मेक्सिको राजी है। ईरान का ट्रेनिंग कैंप मेक्सिको में होगा और मैचों से पहले और मैचों से बाद मेक्सिको की टीम वहीं पर रहेगी। ईरान की टीम मेक्सिको में रहेगी। मैनचेस्टर सिटी के एक्स बॉस पेप ग्वार्डियोला के फेयरवेल पार्टी में बास्केटबॉल का लेजेंड माइकल जॉर्डन और पूर्व कप्तान विंसेंट कंपनी मेहमान थे। 19,000 सपोर्टर पार्टी में थे। गौजुला का सेंड ऑफ यादगार रहा। लीग टू प्लेऑफ में कल मैच खेला गया। नॉट्स काउंटी ने 3-0 से साल्फोर्ड को हराया। स्कॉटिश प्रीमियरशिप प्लेऑफ में सेंट मिरन की जीत 1-0 से पार्टिक टीम के खिलाफ। जर्मन बुंडेसलीगा प्लेऑफ में पादेरबोर्न ने 2-1 से वुल्फबर्ग को हराया एक्स्ट्रा टाइम के बाद। कल कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल खेला जाएगा। क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला रायो वालेकानो से है। टेनिस फ्रेंच ओपन जारी है। कल के मैचों में श्वातिक रिबाकीना, हुबर्ट गास्टन, रिंडेनच, विटोलिना, अनिसिमोवा, शेल्टन, पाओलिनी, दे योंग, कास्पर रूड, मुचोवा, फिर सेरुंडोलो, इन सभी खिलाड़ियों की जीत हुई। वावरिंका आउट हो गया। आज के मैचों में सबालेंका का मुकाबला होगा आज बुजास मानेरो से, फिर कोको गोफ खेलेगी टाउनसेन के खिलाफ, यानिक सिना खेलेगा ताबू के खिलाफ, जबकि वाल्टन वर्सेस मेदवेदेव। और क्रिकेट में आईपीएल 2026 का क्वालिफायर 1 आज खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। जो जीतेगा सीधे फाइनल में, हारने वाली टीम एलिमिनेट नहीं होगी, इंतजार करेगी सेमीफाइनल में जाने के लिए। एलिमिनेटर में कल राजस्थान रॉयल्स खेलेगा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, यहां जिसकी जीत होगी सेमीफाइनल में और जिसकी हार वो बाहर। सो दैट्स इट, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते बता दें कि वर्ल्ड कप स्पेशल 8:30 लेकर आएंगे ऑन RM2। टिल देन हैव ए वंडरफुल टाइम, टेक केयर, बाय बाय।
4: यस, थैंक यू सो मच अरविंद, इंतजार रहेगा आपका।
6: मेगा प्रोमो कोड क्वालिटी देखो, टाइल्स 30x30, मेगा डील लो टाइल्स 60x60, सीपे सेल्स लो ग्रानाइट क्वार्ट्ज, रिकासे लो लावो, ला लुमिएर मॉडर्न प्रिसो. Look!

0: देखो।
1: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
3: Radio Musty.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 8 बजे हैं। नमस्ते, सुना भोजपुरी में समाचार। आज मंगल के राष्ट्रसभा की बैठक फिर से लगी। प्रधानमंत्री 22 सवाल के जवाब दियन। सार्वजनिक कर्ज, सेहत सेवा, सिल्व बैंक, कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा, इस सब मुद्दा आज की बैठक में मुख्य रही। देश के पांचों नगरपालिकन में अब नवा चेहरा और ये नया जिम्मेदारी देखी की मिली। काल सोमवार 25 मई के नगरपालिका चुनाव पूरा भइल और ये नवा मेयर और ये डिप्टी मेयर लोग अपन जिम्मेदारी संभाल लेलन जा। पोटली में पहला हला। राजनीति राजधानी के कमान दो महिला के हाथ में गलबा। क्रिस्टल पोदो नया मेयर, नया लोर्ड मेयर हवन, जबकि महजबीन कहमताली उनकर डेप्यूटी। लोर्ड मेयर बोलन कि उ नगर परिषद सड़क मूल ढांचा और विरासत संरक्षण और शहर के भलाई खातिर खास काम करियन। महजबीन कहमताली जनता के जुड़ाव, जिम्मेदारी और लगातार सेवा पर जोर देलन। काल वक्वा फिनिक्स नगर परिषद में भी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भइल। अली हुसैन अब्दुल कादिर नवा मेयर चुनल गल हवन। उनकर कहना बाकी खेल मैदान के सुधार, सड़क निर्माण और लाइटिंग व्यवस्था पर ही काम करल जाए। क्यूपिप में तशियाना लक्ष्माना पीले नवा मेयर चुनल गल हवन, जबकि दयाना आमी डिप्टी मेयर। ये दूसरा मौका बा जब पूरा शहर के जिम्मेदारी महिला टोली के हाथ में गल बा। नवा टोली शहर के विकास और कई जरूरी मुद्दन पर काम करी। कठबोन में सुबिराज गंगा बिसु नवा मेयर चुनल गल हवन, जबकि इंदिरा देवी कायला

0: डिप्टी मेयर के जिम्मेदारी पर ही रहियन ई खास मौका पर ही कई को मंत्रीगण और ई माननीय लोग मौजूद रहलन जा नवा नगर परिषद टोली शहर के विकास साफ सफाई और ई लोगन के भलाई खातिर काम करी। बजट पेश होखे में अब दो हफ्ता से कम समय बाकी बा। ई बीच कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस कई जरूरी मुद्दन पर ही चिंता जताईले बा। बढ़त महंगाई, सेहत व्यवस्था की दिक्कत और खेती के जमीन में कमी। यूनियन के कहना बा कि अब ठोस कदम उठावे की जरूरत बा। CITU जस्ती सामाजिक और न्याय संगत बजट की मांग कर ले बा। साथ ही मध्यम वर्ग खातिर सहारा, सार्वजनिक यातायात में सुधार और देश उत्पादन बढ़ावे पर जोर देवल गलबा। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार आज यौमे अराफात मनावल जाता। ई दिन मुस्लिम समाज खातिर बहुत ही पाक और अहम मानल जाला। हज के दौरान ई सबसे महत्वपूर्ण दिनन में से एक है। आज लाखों हाजी अराफात के मैदान में जुटियन जा जहां वो इबादत करियन जा। ई खास दिन अल्लाह से रहमत, बरकत और माफी के दुआ मांगे के मौका बा। मानल जाला कि यह दिन के हजरत मोहम्मद साहब अपन उम्मत खातिर आखिरी पैगाम देले रहलन जा। दूसर देश की खबर में अमरीकी सेना दावा कर लेबा कि दक्षिणी ईरान में नवा हवाई हमला करल गलबा। ई हमला में मिसाइल ठिकाना और कुछ नावों के निशाना बनावल गलबा। अमरीका के कहना बा कि ई कार्रवाई के आत्मरक्षा खातिर करल गलबा जमी उ इलाका में मौजूद सैनिक लोगन के सुरक्षा हो सकी। तो ये हाल हमने के भोजपुरी में समाचार हमने के सुन ला जा। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Morning Beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: हेलो, गुड मॉर्निंग. सुबह के 8:08 हुए हैं और आज है ट्यूसडे 26 मई 2026. जी हाँ दोस्तों, विदिता का साथ है और आपके मॉर्निंग में थोड़ी सी सनशाइन लाने की हम कोशिश कर रहे हैं. आई होप आप अभी काम पर पहुंचने वाले ही होंगे या तो फिर जो अभी ड्राइव कर रहे हैं, हमारे गीतों के साथ आपका स्ट्रेस थोड़ा सा दूर हो रहा होगा. देखो भाई, लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हर मॉर्निंग एक नया चांस तो ज़रूर देती है ना, थोड़ा हंसने का, थोड़ा सीखने का और थोड़ा खुद को बेटर फील करवाने का. तो वही हम कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कि अभी आप ट्रैफिक में फंसे होंगे, थोड़ा सा इरिटेट हो रहे होंगे, हो सकता है कि बॉस ने काम दिया होगा, आपने कंप्लीट नहीं किया होगा, या सुबह सुबह कभी कभी अलार्म भी तो धोखा दे देता है. हम सोचते रहते हैं लेकिन अलार्म को भी धोखा नहीं देता. हम क्या करते हैं, स्नूज कर देते, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है. चलो फिर भी एक रीजन तो बनता है ना स्माइल करने का, खुश करने का. तो वो स्माइल करने का रीजन हम देते हैं ना आपको. साथ रहिए हमारे, दिस इज योर मॉर्निंग बीट विदिता के साथ. अभी मौसम कैसा रहेगा चलिए ये भी जान लेते हैं आस्था के साथ.
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स.
3: On est tous winners.
4: मस्करीन्स के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज हवाओं का असर है. पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान केवल ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात हो सकती है, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी. रात को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, ऊंचाइयों पर बरसात हो सकती है. हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके से ज्यादा तक पहुंच सकते हैं. प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में नहीं निकले. तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा. सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त 5:38 पर.
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: Cette fête des mères, faites plaisir sans vous compliquer la vie. Du 22 mai au 7 juin, Winners célèbre nos héros de tous les jours. Beauté, gourmandise, maison, accessoires, petites attentions, retrouvez les meilleures idées pour tous les budgets à prix Winners. Passez en magasin et trouvez le cadeau parfait pour dire merci à nos héros, tout simplement. Pas oublier, ex-can to pay, gagne plus points Weave. À tous les mamans et papa, merci.
6: On est tous Winners.
0: Morning Beat.
1: James. RM2, Radio Musti, in the mix.

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जी बल्ले बल्ले क्या, हम तो डबल बल्ले बल्ले बल्ले करने के लिए एकदम रेडी है, लेकिन अगर आप रेडी है तो जी आप तो कब से रेडी है, सॉरी सुबह 11:15 हो गए हैं। बार बार टाइम दिलाना, याद दिलाना हमें अच्छा लगता है ताकि आप कहीं कुछ मिस न कर दे। चले भाई, यहाँ पर आपके लिए अब हम लेकर आए हैं एक गेम। याद रखिएगा कि अभी हम गेम लेकर आए हैं, अगर आपने यहाँ पर सही जवाब दिया है तो आपका नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। एक ड्रॉ होने वाला है 29 में, ओके दूर नहीं है। तो आपको करना क्या है, मेरे सवाल का जवाब देना होगा, फिर उसके बाद हम एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद आपका नाम जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एक और बड़े ड्रॉ के लिए, जहाँ पर आपको एमबीसी के साथ खेलने पर मिल सकता है एक वाउचर वर्थ 4,000 रुपीज। जी हाँ, 4,000 रुपीज का वाउचर प्लोंजे सुमारिन ऑफर्ड बाय एमजे इवेंट्स ऑफ मन, और यू कैन जॉइन अस एट कैप्टन मिमीज डाइविंग सेंटर एट थ्रो बीच आज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। कम डाइव विद अस फॉर अ मेस्मराइजिंग experience, and for more information you can call on 571-36761। तो मैं आपको बता दूं, जो बड़ा ड्रॉ होने वाला है, लकी ड्रॉ होने वाला है, वो 29th of May को होने वाला है। अभी के लिए नाम जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब सवाल तो होना बनता ही है, तो चलिए आपके लिए हम एक सवाल लेकर आएंगे। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी हाँ, इसमें आप मुझे ये बताइए कि इसमें एक इंस्ट्रक्टर हैं जो डाइविंग सिखाती हैं, वो किरदार किसने निभाया था। जी हाँ, वो किरदार किसने निभाया था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर हैं, वो किरदार किसने निभाया था। आपको मुझे सही जवाब देना है 54991294 पूरे नाम और पते के साथ, ताकि आपका नेम जो है वो शॉर्टलिस्ट किया

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कई सारे हमारी यादें हैं इस गाने के साथ। आपने कभी डांस करना ट्राई किया है इस डांस को? नहीं ना, चलो अभी तो कर लिया होगा।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: तो ओके, यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसमें एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर है, आपको मुझे बताना था कि वो कौन है जिन्होंने इस किरदार को निभाया था। कहानी तीन दोस्तों की है, अर्जुन, कबीर और इमरान, रिमेम्बर। एंड गाना तो था सेन्योरिटा, जहाँ भी तीनों ने अपनी आवाज़ें दी हैं। तो सही जवाब है कैटरीना कैफ, और यहाँ पर हमें सही जवाब दिया किसने, चलिए जानते हैं। अनु गोवर्धन फ्रॉम गांव साबले, जी हाँ, आपका नाम आया है, आपने मुझे सही जवाब दिया है। तो मैं आपको बता दूं अनु जी कि आपका नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है। अभी हमारा जो बड़ा सा लकी ड्रॉ होगा, जिसके लिए बड़ा सा इनाम रखा गया है, तो वो होगा 29th of May को, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया है एक ऐसे गिफ्ट के लिए जो कि वर्थ है 4,000 rupees प्लोंजे सुमारिन ऑफर by MJ Events of Man, और यहाँ पर जो कैप्टन मिमी का जो डाइविंग सेंटर है थ्रोबिश में, ये होता है मंडे टू फ्राइडे, आप जाकर डाइविंग कर सकते हैं, एक मेस्पराइजिंग एक्सपीरियंस होता है। मूवी देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए यू कैन कॉल ऑन 5713-6761। ओके, सो वी वेट फॉर द लकी ड्रॉ जो फ्राइडे को होने वाला है, और ये होगा 29th of May को, वेट कीजिए। लेकिन कंग्रेचुलेशंस, आपका नाम शॉर्टलिस्ट हो गया है।
2: RM2
3: Radio Musty Feels a Musty.
4: À votre défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
0: पता है दोस्तों, कभी कभी हम बातें तो बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन कौन सी बात किसके दिल तक पहुंचती है, किसको कितना दर्द होता है, हम जान नहीं पाते हैं, है ना। इंसान को नीचा दिखा के कभी खुद ऊपर नहीं उठ सकता इंसान। असली क्लास तो तब होती है जब हम रिस्पेक्ट देते हैं, तभी हमें रिस्पेक्ट मिलती है। दूसरों को ह्यूमिलेट करके जो खुशी मिलती है ना, वो कुछ पल के लिए ही होती है, पर किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ देना, उसके कॉन्फिडेंस को क्रश कर देना, उसका असर बहुत गहरा होता है। असली पावर वो नहीं जो सबके सामने किसी को नीचा दिखाए, असली पावर वो है जो गुस्से में भी इज्जत देना जाने। कई लोग मजाक, इंसल्ट या पब्लिक एम्बैरेसमेंट को डोमिनेंस समझते हैं, लेकिन रियलिटी में ह्यूमिलेटिंग समवन ऑफन सेज मोर अबाउट द इनसिक्योर माइंडसेट ऑफ द पर्सन डूइंग इट देन द विक्टिम इट्सेल्फ। जब किसी को इंटेंशनली एम्बैरेस किया जाता है, उसका कॉन्फिडेंस हर्ट होता है, ट्रस्ट ब्रेक होता है, और कभी कभी वो दर्द भी इतना गहरा होता है कि वो दर्द से उभरने के लिए कई टाइम लग जाता है। टेम्प्रेरी ईगो बूस्ट के लिए किसी की डिग्निटी को डैमेज करना कभी रियल विक्ट्री नहीं होती। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ही लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बिल्ड करता है।
4: Avant le défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2 Radio Musty.
1: Hit music only.
3: Radio Musty feels a musty.

0: बाप रे बाप, इतने सारे गेम्स के नीचे से ऊपर से इधर उधर करके निकलने के बाद पहुंच गई मैं। मेरे पास इतने सारे गेम्स है ना आपके लिए, सच कहूं आज आप भी कहेंगे बस कर विदिता बस कर, कितना गिफ्ट देगी, कल के लिए भी छोड़ दी, नहीं कल के लिए भी होगा। चलो सुबह के 8:30 बज गए हैं, गुड मॉर्निंग, हमारे दोस्त रामा जी हमारे साथ हैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो जी? चलो भाई, ये साथ दे रहे हैं आप लोग हमारे। अब आप सोच रहे होंगे कि अब मुझे क्या करना है, आपको करना है, मैं तो गेम लेकर आई हूँ आपके लिए। हाँ, तो अभी क्या है ना कि आप लोगों को पता है ना कि MBC ने लॉन्च किया है MBC प्ले 1.0, इसका एक नया वर्जन लॉन्च किया है। और आपको फटाफट क्या करना है, बस इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसका स्क्रीन शॉट लेना है। जी हाँ, आपको दिखेगा MBC OTT। जी हाँ, तो करना क्या है, आपको बस उसका एक स्क्रीन शॉट लेना है। स्क्रीन शॉट करके आपको हमें भेजना है 5491294 पर, ठीक है? उसको आप भेजेंगे, फिर उसके बाद एक लकी ड्रॉ होने वाला है। अब बाकी अगर आप डिटेल्स भूल गए हैं तो चलो बबुआ याद दिला ही देते हैं।
1: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à l'essence des grands gagnants pour un pot d'étiquette Saken pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la sens, participe dans le grand final le 29 mai. MBC Play, avec ou partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
0: Samaj gaye babu, aya badam bhejo ghar pe.
2: RM2
3: Radio Musti.
4: Pas dire moi. Une machine à laver midi à top loading 10.5 kg à seulement 12 990 roupies et qu'un aspirateur en K2, pas badiner deux. Puis ça, 10 dollars la case, maman, 3 dizaines qui vous gagne ça.

0: That was a beautiful one आपके लिए जुबीन नौटियाल की आवाज में। अब मैं सोच रही थी रेडियो पर इनके गाने सुने हैं आपने, बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। अब अगर हम आपको रियल में एक वाउचर दे दे, वाउचर क्यों दूं भाई, टिकट दे देते हैं। अब देखो भैया, यहाँ पर सवाल है एक प्लैटिनियम टिकट का। ये प्लैटिनियम टिकट आप जीत सकते हो, बिल्कुल आपको बस खेलना है हमारे साथ रेडियो मस्ती पर, एंड आपको एक मौका मिल सकता है टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रैंड म्यूजिकल सेलिब्रेशन। एंड चलो भाई, RM2 रेडियो मस्ती के साथ अगर आप खेलेंगे तो यहाँ पर जो प्लैटिनियम टिकट है वो मिल सकता है टू असिस्ट दिस स्पेक्टेक्युलर जुबिन नौटियाल लाइव कॉन्सर्ट। तो आपको हमें ज्वाइन करना है सैटरडे 30th of May को रात 8 बजे एट SBICC Pi फॉर एन अनफॉर्गेटेबल इवनिंग विद जुबिन नौटियाल। एंड रिमेंबर, यहाँ पर आपको मौके मिलेंगे बहुत सारे उनके कमाल के गाने सुनने का। एंड द कॉन्सर्ट इज प्राउडली ऑर्गेनाइज बाय ग्रेविटी जीरो इन कोलैबोरेशन विद ticketbox.mu। सो अपने टिकट्स अगर आपको बुक करना है तो अभी कर लीजिए www.ticketbox.mu पर। एंड फॉर रिजर्वेशंस यू कैन कॉल द हॉटलाइन, इट्स 214-6464। जी हाँ बिल्कुल, 214-6464। तो मैं आपको बता दूँ, जुबिन नौटियाल इंडिया का सबसे जाने माने सिंगर्स में उनका नाम आता है, नोन फॉर हीज सोलफुल रोमांटिक songs and emotional voice। जी हाँ, अब इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ, ही इज बोर्न इन देहरादून 14th June 1989। ओके, म्यूजिक के लिए इनका जो पैशन है ना, ये बचपन से ही शुरू हो गया है। ही इज़ ए ट्रेन्ड सिंगर, उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा है और जो इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाते हैं इट्स लाइक गिटार, पियानो, हारमोनियम एंड ड्रम्स। अब इनके जो गाने हैं, इनका जो सिंगिंग स्टाइल है, वो हर तरह के गाने गाते हैं। ही इज़ एडमायर्ड फॉर ब्लेंडिंग रोमांस, सैडनेस एंड मेलोडी अपने गाने के स्टाइल में, और बस सबके फेवरेट तो बन ही गए हैं। मॉरिशस में भी, इंडिया से लेकर कहाँ अब्रोड तक, यहाँ मॉरिशस में उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं। और इन्होंने अवार्ड भी जीते हैं अपने सिंगिंग के लिए। अभी हम सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ उनके गीतों को उनके कॉन्सर्ट में। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं, वो सोच रहे होंगे कि विदिता बस करना यार, सवाल पूछ लेना, जवाब देना है हमें। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिएगा कि उनको एक गाने के लिए आइफा की तरफ से अवार्ड मिला था। जी हाँ, प्लेबैक सिंगर मेल। अब मुझे ये बताइए कि वो कौन से मूवी का गाना था जहाँ पर जून 2022 में उनको आइफा की तरफ से अवार्ड मिला था। जी हाँ, अवार्ड मिला था प्लेबैक सिंगर मेल के लिए, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल के लिए। तो आप जल्दी कीजिए, मुझे बताइए कि वो कौन सी मूवी थी। अगर आपके पास गाना भी है तो गाना भी आप मुझे बता दीजिए कि वो कौन सा गाना था।
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hits music only.
2: Feels a musti.

0: भाई आप इतना प्यार देते हमारे लिए तो बहुत बहुत बहुत गर्व की बात की है। हमारे इतने सारे दोस्त हैं, इतने सारे हमारे लिसनर्स हैं जो अपना प्यार भेजते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने आपसे सवाल किया था कि आईफा बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर जून 2020 में मिला था जुबिन नौटियाल को, वो कौन सी मूवी थी और वो कौन सा गाना था। यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। द राइट आंसर इज शेर से शेर शाह। ओके सॉरी, सुबह सुबह कभी हो जाता है। हाँ तो ये है शेर शाह और गाना था राता लंबिया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए। देखो हंसना बंद करो, मॉर्निंग मॉर्निंग में हो जाता है। ओके डोंट लाफ। चलो हंस दिया, खुश हो गए, चलो हंस दो। तो कौन है जिन्होंने जीता है ये प्लैटिनियम टिकट, जानते हैं? सही जवाब देकर यहाँ पर विनर बने हैं लकी ड्रॉ के बाद वरुण शर्मा, जो कि रहते हैं फ्रॉम कैटरबोन। बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं आपको बताऊं, आपने खेला यहाँ पर द गेम इज पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो इन टिकट बॉक्स एंड आपको मिल रहा है एक प्लैटिनम टिकट जो आपको मौका देगा जाकर असिस करना का द स्पेक्टेकुलर जुबिन नौटियाल लाइव कॉन्सर्ट जो होने वाला है सैटरडे 30 मई को सुबह नहीं बल्कि शाम के 8 बजे, रात के 8 बजे, और ये होगा SBICC में। जुबिन के नाम से इतना दिल ढड़क रहा है, वो सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। Oh my God, I just can't believe it. Okay, तो अगर मेरा ये हाल है तो आपका ये क्या हाल होने वाला है। ये कॉन्सर्ट जो है इज प्राउडली ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रेविटी जीरो इन कोलैबोरेशन विद ticketbox.mu। आपका टिकट आप अगर बुक करना चाहते हैं तो जल्दी करो, www.ticketbox.mu पे जाओ, क्लिक करो और बुक करो, नहीं तो रिजर्वेशन के लिए कॉल द हॉटलाइन 2146464। द गेम वॉज पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स। चलिए इसी के साथ अब समय भी हो गया है, जानते हैं कि अभी वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है। अरविंद बहुत इंतजार कर लिया ना, चलिए उनसे मिलते हैं।
3: Get ready for the biggest World Cup ever.
4: 2026 FIFA World Cup.
3: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
4: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
5: चलो वर्ल्ड कप की ओर, एक के बाद एक वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड फाइनलाइज किए जा रहे हैं। इधर वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट टीमों में से एक स्पेन की टीम तैयार है। लामिन यामाल जो इन दिनों घायल हैं स्क्वाड में हैं, पर पहली बार के लिए रियल मैड्रिड का एक भी खिलाड़ी लाहौगा में नहीं। प्रीमियर लीग से 7 खिलाड़ी हैं, माइकल मेरिनो, डेविड राया, जुबिमेंडी, पेड्रो पोरो, मार्क कुकुरेला, रोड्री और येरेमी पिनो। कोलंबिया की टीम भी तैयार है, कप्तान रामेस रोड्रिगेज टीम में है, साथ में है लुइस जाज। ग्रुप ए से ग्रुप एल मतलब 12 ग्रुप, हर ग्रुप में 4 टीमें, टोटल एक्सपांडेड 48 टीम्स। ग्रुप प्रेजेंटेशन पूरा हुआ, आज वर्ल्ड कप के कुछ खास फैक्ट्स इस पर चर्चा करेंगे। 1930 में फर्स्ट टूर्नामेंट उरुग्वे में केवल 13 टीमों ने भाग लिया, होस्ट टीम उरुग्वे चैंपियन बनी थी। फिर 24 साल बाद 1954 में स्विट्जरलैंड में पहली बार के लिए टीवी ब्रॉडकास्ट। 1982 में इस बार 24 टीमें 24 टीम्स इनमें भाग ले पाए। 1998 में 32 टीम्स। 2022 में मिडल ईस्ट में पहली बार के लिए कतर होस्ट रहा और 2026 में पहली बार 3 देशों में वर्ल्ड कप, USA, कनाडा और मेक्सिको, और पहली बार 48 टीम फॉर्मेट। कल वर्ल्ड कप विनर्स पर चर्चा करेंगे। सो दैट वाज रोड टू वर्ल्ड कप, चलो वर्ल्ड कप की ओर।
0: थैंक यू सो मच अरविंद।
6: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स

0: James.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.
0: A good beat for your morning show. RM2,
1: Radio Musty.
2: अरे भाई, आप खेल खेल के थक जाओगे और हम यहाँ पर इनाम देते देते नहीं थकते। एक गया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, आते ही रहे। और यहाँ पर रोजर्स कैपिटल की ओर से हम खेल रहे हैं और आपको मौका मिलेगा जीतने का एक वाउचर वर्थ 1000 रुपीज फ्रॉम डोमिनोज पिज्जा। तो यहाँ पर अब मेरे सवालों का जवाब आपको देना होगा। आपको मुझे बताना है, ऑन विच एप्लीकेशन कैन यू मेक अ क्रेडिट परचेज एट ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स? On which application can you make a credit purchase at Dragon Electronics? जल्दी करो, सही जवाब भेजो। नंबर है 5499-1294।
0: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2.
1: Radio Musty.

0: बेटा इतना काम करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा सवाल पूछा था हमने, जवाब दे दो और इनाम ले जाओ।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: On which application can you make a credit purchase at Dragon Electronics? सही जवाब है नूला। जी हाँ, नूला application के साथ you can actually make a credit purchase at Dragon Electronics. ये सवाल था हमारा और सही जवाब देने पर आपको मिल रहा है एक voucher worth 1000 rupees from Domino's Pizza. तो ये जो voucher है इसको post किया जाएगा। अब इनाम किसको मिला है चलिए देखते हैं। सही जवाब देकर हमारे विनर बने हैं निखिल पुनीत फ्रॉम फिजी आफ्रे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बिल्कुल दिया है सही जवाब और आपका ये जो इनाम है पोस्ट किया जाएगा आपका वाउचर। और मैं आपको बता दूं कि रॉजर्स कैपिटल होल्ड्स अ लाइसेंस फ्रॉम फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन।
1: मॉर्निंग बीट
2: RM2 Radio Musti in the mix.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: चलो भाई एक और गेम के साथ हम आए हैं सेंट पॉइंट। जी हाँ, ये गेम जो है आपके लिए है। नाउ यू कैन प्ले एंड विन अ वाउचर वर्थ 800 रुपीज। ये है ब्यूटी à la française at center point Triano. So this Mother's Day aap apni mama ko khush kar sakte hain and don't miss the Champions League final live at center point Triano. Big screen yani big vibes. So aapka ye voucher bhi aapko send kiya jayega by post. Aapko mujhe batana hai, ji haan, aapko mujhe batata hai ki is gaane mein jo hamari singer hai wo kiski awaaz hai. गाना सुनिएगा, बताएगा कि ये जो गाना है इसमें आवाज किसकी है। हे
3: हे हे अंटे अमलापुरम अंटे आहापुरम अंटे इंडियन रिदम

0: चलो भाई, हमने सही जवाब पूछा था, यहाँ पर दीपा ने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है, थैंक यू सो मच। द राइट आंसर इज मालती, एंड सही जवाब देकर आप बनती है विनर। आपको ये वाउचर मिलता है 800 रुपीज का, और ब्यूटी एला फ्रांसे दैट सेंटर पोंट्रियो ने दिस मदर्स डे, एंड वाउचर आपको पोस्ट किया जाएगा। एंड डोंट मिस द चैंपियंस लीग फाइनल लाइव एट सेंटर पोंट्रियो, बिग स्क्रीन एंड बिग वाइब्स।
1: अरे तनिक ताल तो बदलना भैया।
2: Welcome to RM2
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
2: RM2
4: Radio Musti.
2: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
5: Good morning, time check. It's 9 a.m. थोड़ी देर में संक्षिप्त समाचार।

बाद जी हाँ नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज मंगलवार को राज्यसभा की बैठक लगने वाली है। प्रधानमंत्री से कुल 22 सवाल पूछे जाने वाले हैं। सार्वजनिक ऊर्जा, स्वास्थ्य सेक्टर, कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और सिल्वर बैंक जैसे अहम मुद्दे आज की कार्यवाही के केंद्र में रहने वाले हैं। वहीं देश की 5 नगर पालिकाओं में नए मेयर और डिप्टी मेयर ने जिम्मेदारी संभाल ली है। कल से पोटली में पहली बार राजधानी की कमान 2 महिलाओं के हाथों में सौंपी जाएगी। क्रिस्टेल पोंदो नई लोर्ड मेयर चुनी गई हैं, जबकि महजबीन करामताली उनकी डेप्यूटी होंगी। जबकि वाक्वा फिनिक्स में अली हुसैन अब्दुल कादिर नए मेयर बने हैं और क्यूपिप में ताशियाना लचमाना पीले को मेयर चुना गया है। काट्रोबोन की बात करें तो सुबेराज गंगा पिसु नए मेयर होंगे और इंदिरा देवी कायाला डिप्टी मेयर का पद अब से संभालेंगी। उधर बजट पेश किए जाने से पहले कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस यानी CITU ने बढ़ती महंगाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और कृषि भूमि में कमी को लेकर बेहद चिंता जताई है। यूनियन ने ज्यादा सामाजिक और न्याय संगत बजट की मांग की है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर द्वारा आपदा राहत उपकरणों का वितरण हाल में किया गया, जिसका उद्देश्य आपको बता दें तूफान, बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए मॉरिशस की तैयारी को और मजबूत बनाना है। और हज से जुड़ी बड़ी खबर, आज यौमे अरफात मनाया जा रहा है। हज के सबसे अहम दिनों में से एक माने जाने वाली इस दिन लाखों हज यात्री अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में शामिल होंगे। माना जाता है कि इसी मुकाम पर हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी उम्मत की आखिरी पैगाम दी थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमरीकी सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी ईरान में हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में मिसाइल ठिकानों और कुछ नौकाओं को निशाना बनाया गया। हालांकि ईरान की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो हमारी ओर से ये थी अब तक की खबरें, हमें आगे दीजिए। नमस्कार।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Oh yes, Happiness का मॉर्निंग फेस्टिवल इज ऑन ऑन. यस लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार हमारी मिलता है मौका आपके साथ जुड़ने का इस सफर में, जहां पर आप बिल्कुल सफर नहीं करें क्योंकि म्यूजिक आपका हम सफर बनकर साथ चलने वाला है. हे वेदा का साथ रहा, इतने सारे गेम्स मैं भी खेल रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी सिचुएशन कभी टाइट. हाँ, लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे यहाँ पर इनाम मिले, मज़ा आ गया. हाँ, ट्रैफिक में फंसो तो ऑफिस के काम का प्रेशर हो या घर पर आप गरम गरम चाय पी रहे हो, जो भी हो, वो स्टीम इंजन से स्टीम निकलती है, दिमाग से मन निकालो यार, आराम से लो, टेंशन नहीं. ठंडा ठंडा कूल कूल म्यूजिक साथ चलेगा तो आप जाएंगे सब प्रॉब्लम्स भूल.

0: हाउसहोल्ड टिप्स से लेकर डेकोरेशन टिप्स से लेकर आपकी राशियां, बहुत सारी मस्ती जारी है। अभी तो म्यूजिक की बारी है, लेकिन डोंट फॉरगेट ये 3 घंटे का जो है अवसर, इसको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखो फ्रीक्वेंसी।
1: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2.
2: Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: भाई हमारे सितारों हो, अब सितारों की चाल तो जानना चाहते हो ना? Right, शुरुआत करते हैं with
2: Aries मेष राशि.
1: मेष राशि, आज दिन मानो एक दिशा में नहीं बाकी दिशाओं में भागता नजर आएगा. काम की भरमार रहने वाली है, थका सकती है, लेकिन समय रहते अपना छोटा छोटा ब्रेक लेते रहिए. परिवार में आपकी राय को इम्पोर्टेंस मिलेगी और लोग आपकी समझदारी की तारीफ करेंगे. कितना इंटरेस्टिंग है, कितना स्मार्ट है, बत्ती जल गई टुंग टुंग.
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज चारों तरफ से खुशखबरी और पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है. घर परिवार का माहौल पहले से ज्यादा शांत और खुशहाल रहने वाला है. अगर किसी रिश्ते में खटास चल रही थी तो आज मिठास लौटती वापस दिखाई दे रही है. क्या बात है. किसी विवाद में फंसना आपके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए दूर रहो, दूर से ही ऐसी किसी कान में कह दो.
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज किस्मत आपके लिए नया घर जमीन या संपत्ति से जुड़ी कुछ खुशखबरी लेकर आ सकती है. लंबे समय से जिस काम को लेकर मन परेशान था, हैरान था, वो आखिरकार पूरा होता दिख रहा है. आपकी मेहनत और लगन आपके लिए रंग लेकर आएगी. सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है.
2: कैंसर कर्क राशि,
1: अगर सूर्य है तो सितारे चमक सकते हैं. पढ़ाई में मन लगेगा, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने के संकेत हैं. मन में किसी के प्रति जलन या जो नेगेटिव भावना है उससे दूर रहें, वरना खुद की शांति भंग हो सकती है. कोई हुई की हुई प्रिय वस्तु वापस मिलने से काफी खुशी हो सकती है. अच्छा, यहाँ रखा था, पैर तो है नहीं कि चल पड़े.
2: लियो सिंह राशि,
1: लियो जो भी काम है उसको कर दियो. आज का दिन खुद को साबित करने का मौका देगा. किसी सहकर्मी की बात दिल को चुभ सकती है, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास और मेहनत से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेंगे. आपका स्टाइल ही कुछ ऐसा है, आपकी कैपेसिटी के जो आपकी कैपेसिटी के साथ साथ कंपैटिबिलिटी, वो भी कमाल. जीवन साथी की सफलता या प्रमोशन घर में खुशी की लहर ला सकती है. पैसों की वजह से रुका हुआ काम आज आगे बढ़ सकता है. पिता की सलाह आपके लिए मार्गदर्शक बन सकती है. यात्रा या घूमने फिरने के दौरान किसी जानकारी मिलने से भविष्य में काफी हेल्प हो सकती है.
2: वर्गो कन्या राशि,
1: समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है. किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी लोगों को प्रभावित कर सकती है. हाँ, गाड़ी चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें, बिना मांगे सलाह देने से बचें, नहीं तो गलतफहमी पैदा हो सकती है. सेहत थोड़ी सी कमजोर, वो आजकल वो ठंड का सीजन चल रहा ना. हाँ, लेकिन खाने पीने पर भी पूरा पूरा कंट्रोल.
2: लिब्रा तुला राशि,
1: आज के दिन आपके लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है. व्यवसाय से पहले आप थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्य क्षेत्र में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद की क्षमता पर भरोसा रखना ये ज्यादा अच्छा होगा. पुराने फैसले अच्छा है, लेकिन मन में कोई कसक रह सकती है.
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आपका जीवन आराम, सुख सुविधाओं और नई खुशियों से भरता नजर आ रहा है. बिजनेस में कोई बड़ी डील पार्टनरशिप के जरिए आपके लिए फायदे ही फायदे. संतान आपकी कुछ बातों से असहज महसूस करेगी, इसलिए अच्छा है कि उनके साथ बैठकर थोड़ी सी बातें करें. ये जो एज गैप है, जो जनरेशन गैप है, उसको ब्रिज अप कीजिए.
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज के दिन चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाला दिन है. जीवन साथी की ओर से मिला प्यार, कोई सरप्राइज दिल को खुश कर देगा. भगवान की भक्ति में मन खूब लगने

0: अला और किस्मत भी आपका हर कदम पर साथ देते नजर आ रही है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: भाई आपके भीतर कुछ नया और बड़ा करने की इच्छा जागेगी। काम को लेकर आपका जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है और सख्ती है, समय पर सफलता दिला सकती है। परिवार में किसी से नए सदस्य के आने से खुशखबरी, उसका माहौल बन सकता है। कार्य क्षेत्र में बॉस की बातों को हल्के में लेना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अपना व्यू पॉइंट अच्छे से रखें, काम आगे बढ़ाएं।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: भाई दिन हजीम और

0: भरा रहेगा। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात होगी, ओ था कहाँ। हालांकि बातचीत के दौरान शब्दों का चयन सोच समझ के कीजिए, नहीं तो दिल पर ठेस लग सकती है। परिवार के बड़े सदस्यों के साथ बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा कर सकते हैं, जिससे समाधान मिलेगा, रास्ता मिलेगा।
1: Pisces, मीन राशि।
0: लास्ट बट नॉट द लीस्ट Pisces, आज कई बार मन भटक सकता है, काम अटक सकता है, लेकिन अपना प्रयास ना छोड़ें, काम करते रहें। मन में बेचैनी है और लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, तो किसी अपने से बात कर सकते हैं। स्टूडेंट है, मानसिक दबाव से राहत आपको महसूस होगी और पढ़ाई में मन लगेगा। सामाजिक कार्य में भी आपका योगदान लोगों को प्रभावित करेगा।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti. RM2 Radio Musti. Feels a Musti.

डोंट फॉरगेट ग्रेविटी जीरो का एक और बहुत ही हैपनिंग इवेंट इज राइट है। जुबिन नौटियाले का बहुत ही कमाल के सिंगर, इतनी सारे हिट्स उन्होंने दिए हैं एंड उन्होंने मिला था बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड 2025। ही इज गोना बी लाइव और इतने सारे सरप्राइज के साथ, इतनी सारी कमाल की इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस के साथ। डोंट फॉरगेट RM2 Radio Musti Feels a Musti

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जब बात होती है कि मुझसे शादी करोगी तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सिने गोअर्स किसी एक्टर को इतना पसंद कर लें कि ये क्वेश्चन अगर उनके सामने मिल जाए तो यही पूछ लें। वैसे एक एपिसोड में रियलिटी शो के वहाँ पर आशा पारिक पहुँची थी, उन्होंने कहा कि बस आपको बताते हैं दीवानगी राजेश खन्ना साहब के बारे में, 200 से 300 लड़कियां अंदर घुस गई थी। आशा पारिक ने सुनाया राजेश खन्ना को लेकर लड़कियों की दीवानगी का किस्सा। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना के पीछे जो क्रेज़ था वो लड़कियों का पागलपन था, वो मैंने सिर्फ एक और हीरो के लिए देखा है। उन्होंने कहा छोटा थिएटर और 200-300 लड़कियां अंदर घुस गई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पिक्चर एकदम से हिट हो गई और सब लड़कियां दीवानी हो गई, तब लगा कि सुपरस्टार बन गए हैं। इसके लिए मैं कहूंगी कि राजेश खन्ना के पीछे जो क्रेज़ था, लड़कियों का जो पागलपन था, वो मैंने सिर्फ एक और हीरो के लिए देखा है और वो है देवानंद। उनके लिए भी लड़कियां बेहोश हो जाती थी। इसी तरह राजेश खन्ना जी के लिए भी सुना है कि उनकी गाड़ी को किस करती थी और कुछ तो उनके फोटो के साथ शादी भी कर लेती थी। कहते हम लोग शूटिंग कर रहे थे और मेरे सपनों की रानी के लिए डबिंग थिएटर में गए थे, छोटा थिएटर था और 200-300 लड़कियां अंदर घुस गई थी। राजेश खन्ना जी को देखकर सब पागल हो गई थी और बात बात के अंदर कहा कि जब मैंने फिल्म देखना शुरू किया तब जमाना बच्चन साहब की तरफ मुड़ चुका था, लेकिन राजेश खन्ना साहब की बहुत कहानियाँ सुनी हैं, बड़े स्टार थे। मुझे उनके स्टारडम का असली एहसास तब हुआ जब सांता क्रूज में देखा कि किसी से पूछो राजेश खन्ना गार्डन कहाँ है तो हर कोई बता देता था। यानी कि एक टाइम पर हम कह सकते थे कि नॉर्मल नहीं होता था किसी का बड़े स्क्रीन पर आना। इट वॉज लार्जर देन लाइफ सिनेमा, लार्जर देन लाइफ एक्टर्स।
0: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2
1: Radio Musty.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: RM2 Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Well, good morning, Dan Jake. It's 10 a.m. स्टूडियो में आगे आस्था से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
6: नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज मंगलवार को राष्ट्रीय सभा की बैठक लगने वाली है। प्रधानमंत्री से कुल 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, स्वास्थ्य सेक्टर, कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा तथा सिल्वर बैंक जैसे कई अहम मुद्दे आज की कार्यवाही के केंद्र में रहेंगे। वहीं देश की 5 नगर पालिकाओं में नए मेयर और डिप्टी मेयर ने जिम्मेदारी संभाल ली है। पोटली में पहली बार राजधानी की कमान 2 महिलाओं के हाथों में सौंपी गई है। क्रिस्टल पोंदो नई लोट मेयर चुनी गई है, जबकि महजबीन करमताली उनकी डिप्टी होंगी। वाकुआ में अली हुसैन अब्दुल कादिर नई मेयर बनी हैं, जबकि क्यूपिप में तशनाया लक्ष्माना पीले को मेयर चुना गया है। कटोबोन में सुबिराज गंगा बिसुनेयर मेयर बनी हैं और इंदिरा देवी कलाया डिप्टी मेयर का पद संभालेंगी। उधर बजट पेश होने से पहले कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस यानी CITU ने बढ़ती महंगाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और भूमि कृषि भूमि में कमी को लेकर चिंता जताई है। यूनियन ने ज्यादा सामाजिक और न्याय संगत बजट की मांग की है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर द्वारा आपदा राहत उपकरणों का वितरण किया गया, जिसका उद्देश्य तूफान, बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए मॉरिशस की तैयारी को और मजबूत बनाना है। और हज के संबंध में आज यौम अराफात मनाया जा रहा है। हज के सबसे अहम दिनों में से एक माने जाने वाले इस दिन लाखों हाजी अराफात के मैदान में इबादत और दुआओं के लिए जुटते हैं। माना जाता है कि इसी मुकाम पर हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में मिसाइल ठिकानों और कुछ नौकाओं को निशाना बनाया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। मादबलेन मोताबा में विद्वंती रागू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विद्या के नाम से ज़्यादा जानते थे। पैदाइश नाम माधव, उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, आज दोपहर बाद 1 बजे उनके बेटे संताराम रागू के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रिजर्वर रोड गुडलैंड्स में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की बीबी फरीदा तुराबाली इंतकाल कर गई हैं। पैदाइश नाम हुसैनी। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके पति महमूद हुसैन तुराबाली के मकान

0: गुडलैंड से निकालकर दफनाने के लिए बेलमों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा. फ्यूनरल टुडे एट 11 AM. शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.
1: RM2 Radio Musti.
2: Hit music only.
3: Radio Musti feels a Musti.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: ये मूवी काफी चर्चा में है, वेलकम टू द जंगल। अब जंगल में क्या क्या होने वाला है? जंगल में मंगल तो होगा ही होगा, लेकिन अगर बात करें हम बॉलीवुड एक्ट्रेस, कौन है इसके अंदर? बहुत सारी, लेकिन भोजपुरी एक्ट्रेस ये कौन है? ये है सिंगर और भोजपुरी एक्ट्रेस, इनका नाम है अक्षरा सिंह। अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल के भोजपुरी गाने को लेकर चर्चा में है। इस गाने में अक्षय कुमार के साथ घिस घिस घिस गाने में एनर्जेटिक अंदाज में नजर आ रही है। अब ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, लेकिन हाँ कहते हैं कि बहुत ही कमाल की बात है और बहुत ही खास पल बताया। उन्होंने कहा कि कभी सोचा नहीं था कि अक्षय कुमार के साथ, नहीं उनके साथ मैं कभी डांस करने वाली हूँ, परफॉर्म करने वाली हूँ। वाह वाह वाह, कहते चेतावनी, ये गाना सुन के अगर आप नाचने लग जाए तो हमरा पर इल्जाम मत लगाई, यानी कि उनका कहना है। कहते बहुत ही धमाकेदार पार्टी और डांस ओरिएंटेड आइटम नंबर है जिसकी बीट्स काफ़ी शानदार है। गाने में बॉलीवुड के ग्लैमर और भोजपुरी का देसी अंदाज देखने को मिल रहा है, यानी कि लगेगा तड़का। वैसे कहते कभी सोचा नहीं था कि अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका मिलेगा। अक्षय कुमार भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी लैंग्वेज को समझें, कैसी बोली जाती है, उसके हाव भाव, और गणेश आचार्य ने काफ़ी सपोर्ट किया तब बन पाया ये गाना। मैं आपको बाद में चाहेंगे सुनाना।
0: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2
1: Radio Musty.

0: FM 2
1: Radio Musti
0: Fashion Tips powered Fashion Tips powered by Halkori Fashion House of Ready-Made Garments Welcome to RM2
1: Musti Mornings Radio Musti
2: नहीं जब फैशन की बात होती है तो साथ साथ में कंफर्ट फैक्टर भी होना बहुत जरूरी है वेदर चाहे सिंपल हो लेकिन स्टाइल हमेशा हीरो एंट्री वाला होना चाहिए आज के लिए ट्राई करो सॉलिड शर्ट या पैस्टल कुर्ता विद क्लीन वाइट स्नीकर्स हाँ एक छोटी सी लाइट जैकेट उसके ऊपर डाल सकते हैं क्योंकि सुबह सुबह मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है और लेयरिंग से फायदा ये होता है कि जब गर्मी लगे तो जैकेट उतार दी बिल्कुल उस बॉलीवुड हीरो वाइब की तरह जो बिना एफर्ट के स्टाइलिश लगता है और हाँ परफ्यूम हल्का सा जरूर क्योंकि फिल्मी इंप्रेशन सिर्फ कपड़ों से नहीं बनता स्टाइल का फंडा सिंपल है कंफर्टेबल रहो कॉन्फिडेंट दिखो बाकी स्पॉटलाइट तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगी लेडीज आज ऑफिस लुक को बोरिंग मत होने दो क्लासी कोऑर्ड सेट एलिगेंट लॉन्ग कुर्ती मिनिमल ज्वेलरी फुल मूवी हीरोइन वाइब देगा मेकअप लाइट रखो स्माइल ब्राइट रखो और हैंड बैग ऐसा जो कि अवार्ड फंक्शन में एंट्री हो फैशन का असली मैजिक तब होता है जब कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों साथ चलते हैं हैंड टू हैंड
0: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स आरएम2
1: रेडियो मस्ती

0: यानी वेडिंग दी टूटी। हम बात करेंगे अबाउट मधुमक्खी। क्या किया उसने, किस्सा हुआ बताता हूँ।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: हाँ, वैसे कभी कभी होता है कि कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो वायरल बन जाते हैं। वही कि घर के आसपास अगर आप देखते हैं कि मधुमक्खियां हैं, उनका एक छत्ता है, तो दिल में घबराहट पैदा कर सकती है और मधुमक्खी काट ले तो ये सोचकर मन घबराने लगता है। लेकिन हुआ कुछ अलग ही, यानी कि मधुमक्खियां एक एनकाउंटर के लिए पहुंच गई। अब कहां पर, चलिए आपको बताते हैं। एक इंसान ने अपनी बाइक को पार्क किया एक पार्क के अंदर और अपना हेलमेट वहीं छोड़ दिया। जब वापस आया तो देखा उसके हेलमेट के अंदर मधुमक्खियों ने बना लिया था अपना छत्ता, इतनी सारी कि उसने पास जाने की हिम्मत नहीं बटोरी। कहते बस आराम से खड़ी थी बाइक तो, और ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितने सालों से वहाँ पर वो छत्ता है, इतनी जल्दी हो गया। वैसे वो पता है कि अभी वर्ल्ड बी बनाया गया था, वर्ल्ड बी डे, और ये था ऑन द 20th of May, मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। लेकिन इस दिवस हुआ ये कि जब इतनी सारी मधुमक्खियाँ देखी अपने हेलमेट के अंदर, तो बंदा हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो फाइनली एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा उसको हटाने के लिए। कभी कभी हो जाता ना, कहता है इट्स नॉट माय नेचर, लेकिन देखो कमाल हो गया, और वो भी मेरे बाइक का हेलमेट। तभी लोगों ने कहा हेलमेट।

ब्यूटीफुल सोलफुल हिट से लेकर द लेटेस्ट हिट्स, दैट्स व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू. बात करें हम जुबिन नौटियाल की, राइट इन मॉरिशस ऑन द 30th ऑफ मई एसवीआईसीसी पाए. और मत भूलिए, आप अपने टिकट लेना चाहते हैं तो ticketbox.mu. Another great event brought to you by Gravity Zero. अब बहुत ही कमाल की आवाज़ है, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, बहुत सारे दिल भी. और इस बारे में कुछ अलग ही सरप्राइज एलिमेंट लेकर आपके साथ शामिल होंगे जुबिन नौटियाल इन मॉरिशस लाइव.

0: FM2 रेडियो मस्ती
1: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीएसएल लो ग्रानाइट एंड क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावो ला लुमिएर मॉडर्न प्री सोक लो डोज अबान प्री की पू फेयर ओ मेम गाय पाको डेकोरेशन पू ला

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
3: RM2 रेडियो मस्ती
4: फील्स अ मस्ती।
5: Nacho night, do you feel alright? Wanna nacho?

0: Tuesday, 26th of May, time check, exactly 11 a.m. आज आगे स्टूडियो में उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज राज्यसभा में विपक्ष नेता जूली जोंगो का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन, बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा की रेपो रेट में की गई बढ़ोतरी पर आधारित रहेगा। 20 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दिया। प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि इस फैसले का असर परिवारों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों पर किस प्रकार पड़ेगा। बैठक आज सुबह के 11:30 बजे से लगने वाली है। राज्यसभा में आज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल की दूसरी पढ़त होगी। इस विधेयक ये विधेयक संविधान की समीक्षा के लिए आयोग के गठन पर आधारित रहेगा। इस बिल को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पेश करेंगे। राज्यसभा की बैठक में ही कई अहम संसदीय प्रश्नों को लेकर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, सिल्वर बैंक प्रकरण, गंगा तालाब की पवित्रता, पुलिस जांच और कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल सदन में उठाए जाएंगे। इसके अलावा एमओएसएस की वित्तीय स्थिति, सेफ सिटी कैमरा, मेट्रो एक्सप्रेस विस्तार, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी विभिन्न मंत्रियों से जवाब मांगे जाएंगे। वहीं शिक्षा, कृषि, सशक्तिकरण, पर्यावरण और खेल क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे भी आज की बैठक में चर्चा का केंद्र रहेंगे। देश की 5 नगर पालिकाओं में नए मेयर और डिप्टी मेयर ने जिम्मेदारी संभाल ली है। पोर्टलुई में पहली बार राजधानी की कमान 2 महिलाओं के हाथों में सौंपी गई है। विदेश स्तर पर इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ नए हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले लेबनान के कई इलाकों में किए गए। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। वहीं हिजबुल्ला ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए ड्रोन और रॉकेट से 22 हमले करने की बात कही है। इस बीच संघर्ष विराम बढ़ाए जाने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कश्मीर स्ट्रीट लिस्पेरेंस ट्रिबुशे में 80 साल की 80 साल की श्रीमती देवयंती जीबन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम सीसाहा। उनकी अर्थी आज सुबह की 3 बजे उन्हीं के मकान लिस्पेरेंस ट्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: RM2 Radio Musti.
3: Hit music only.
4: Radio Musti feels a musti.

0: तो साहब देखते देखते पहुंच गए थर्ड आवर 11:06 और देखते देखते साथ भी, क्योंकि हम साथ साथ हैं। कितनी कमाल की बात है ना, बस चाहे कोई भी हो सफर, बस हमें दे छोटा सा अवसर कि हम जुड़े रहें आपके साथ। यस,
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।
0: कुछ मैसेजेस, कुछ और बातें, बॉलीवुड का तड़का।

0: ये सोचा था कि हैप्पी, हाँ यानी कि खुशी, और फिर हैप्पी हैप्पी हूँ के बाद मैंने सोचा अरे दूसरा गाना तो खुशियाँ बटोर लो, जो भी नौटियाल, राइट, इज गोना बी इन मॉरिशस 30th of May। और फिर आपको बताइए कि कहानी चलने वाली है बहुत ही स्टाइल के साथ, और जो उनकी परफॉर्मेंस है वो तो होती है बेमिसाल। चलिए अभी चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। और यहाँ पर आशा जी कहते हैं गुड मॉर्निंग एंड सभी लिसनर्स को बिग हेलो एंड एबीसी टीम, अरे क्या बात है, ट्यूसडे की मॉर्निंग यानी कि मंगलवार, और खुशी का जो सीजन है सर पर सवार होना ही चाहिए। मामा कुमारी है, नेफी शुभम, ऋषभ, दीदी आरती, राज एंड जानू फैमिली के लिए अगला गाना जरूर जरूर जरूर। मीला जी गुड गुड मॉर्निंग, कहते हैं बस हम चाहते हैं कि रेडियो के साथ जुड़े रहें, और कोशिश भी रहती है कि बस वॉल्यूम ऑन करके हम भी सेम फ्रिक्वेंसी पे आ ही जाएं। ये हुई ना बात, राइट। और यहाँ पर कहते हैं हेलो गुड गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है नीता, और आई नीता, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कहते हैं सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली को हैप्पी ट्यूजडे, अच्छी बात है। देखिए एक छोटा सा मैसेज ना, कभी कभी लगता है हाँ मेरे लिए भी है, इंक्लूडिंग एवरीबडी, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड परिवार के साथ, सहयोगी कर्मचारी जितने भी लोग हैं सबको शामिल कर लो, क्योंकि यही होता है जब आप खुशियाँ बटोरते हैं, सबका प्यार मिलता है, सबकी प्रार्थनाएं। नमस्कार आपको दीप्ति, और कहते हैं कि मैं नोवल फोन से हूँ, और हमेशा की तरह मॉर्निंग में जुड़ गई हूँ, फिर चाहे काम कर रहे हो इधर उधर, लेकिन रेडियो ऑन है तो लगता है कि जैसे एक दोस्त है जो साथ चलता जा रहा है। आपने सच कहा, ऐसे होता है, काफ़ी लोग यही करते हैं। आपने देखा होगा पुराने जो हमारे हैं यंगस्टर्स, हाँ हमारे पुराने यंगस्टर्स अभी भी जवान हैं, दिल रंगी होना चाहिए, वो हमेशा यही करते थे कि चाहे घर में कितना भी हलचल हो या जो भी प्लान हो, लेकिन म्यूजिक ऑन हो तो लगता है कि ये इज़ अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन। तो चलिए साहब अभी पकड़ लिए डेली रूटीन में गाने कुछ खुशी वाले, बटोरनी है खुशियाँ, गम को करें बाय बाय, अरे गिव इट अ ट्राई।
1: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2
2: Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: देखिए हम सब जानते हैं कि स्मोकिंग इज सो सो इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। लेकिन सच्ची बात यह भी कि कई एक्टिव स्मोकर्स होते हैं जो खुद सिगरेट पी रहे हैं और कुछ ऐसे जो कि उस धुएं को स्मेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो हो गए पैसिव स्मोकर्स। अब देखिए साहब, पैसिव स्मोकर्स की तो चॉइस नहीं थी कि वो स्मोक को इनहेल करें। हाँ, ये तो गलत बात होगी ना। करें तो क्या करें। अरे साहब, ये भी है कि आप अगर स्मोक कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप वहाँ ना हो जहाँ पर और भी बाकी पब्लिक है, धुआं उधर

0: थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और वैसे बच्चों को भी आप बहुत दिमाग में रखें। जब बच्चों की बात करें तो बच्चे घर को सोचते हैं कि सबसे सिक्योर प्लेस है ना, फिर चाहे आप बालकनी में खड़े हैं या खिड़की में स्मोक कर रहे हैं और वो धुआं अंदर जा रहा है, या फिर आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं स्मोक कर रहे हैं बाकी लोग, हाँ तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने बस स्मोक किया, बस मैं स्मोक कर रहा हूँ, हाँ वो ठीक है, लेकिन आप जो धुआं एक्सहेल कर रहे हैं वो कोई और इनहेल कर रहा है, तो थोड़ा सोच समझ कर। यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा मैसेज आया और कहा कि दिस मॉर्निंग मैं वहीं पर था, नितिन थैंक यू सो मच फॉर द मैसेज। उन्होंने ये बात उठाई, उन्होंने कहा कि प्लीज़ अगर रेडियो पर इसके बारे में बात कर सकते हैं, नहीं नॉट रियली, लेकिन हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी बहुत ज़रूरी है और ये भी सोचना कि इफ़ इट्स नॉट इंजूरियस तो ठीक है, लेकिन अगर है तो अरे साहब खुद को भी बचाइए और दूसरों को भी सोचिए ना। अब जैसे आप रोड पर निकलते हैं, एक पब्लिक एरिया है तो आप शेयर कर रहे हैं उस एरिया को, ऐसे ही आप हवा भी शेयर कर रहे हैं और वो हवा उड़कर किसी और के पास जा रही है। मतलब जस्ट ट्राई योर बेस्ट, अगर आप इस हैबिट से बाहर निकल सकते हैं तो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं तो थोड़ा धीरे धीरे कम करते जाइए, फैमिली का सपोर्ट लीजिए, दोस्तों का सपोर्ट लीजिए और फिर देखिए साहब जिंदगी जाएगी फुल यू टर्न मारने फॉर अ गुड वे।
1: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2.
2: Radio Musty.

बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है एंड इवन धुरंधर द रिवेंज के अंदर शामिल हुआ। कैसे ओल्ड स्टाइल के गाने वापस लौट कर आ रहे हैं जैसे चुनरी चुनरी, ये तो होना ही था। जो पॉपुलर है, जो हमेशा के लिए एवरग्रीन है, वो तो रहेगा ही रहेगा।

एबार पिसे याद दिला दें कि अगर आप जीतना चाहते हैं हेलीकॉप्टर राइड, देन डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड एमबीसी प्ले 1.0 और जब आप साइन इन करेंगे तो फिर आपको एक मिलेगा मैसेज एमबीसी ओटीटी। बस जैसे ही मैसेज आए अपने मोबाइल फोन पर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भेजिए ऑन 5499-1294 व्हाट्सएप मैसेज और फिर आपको 4 to 7 के बीच में

0: पता चल जाएगा कि क्या आप ही हुए हैं शॉर्टलिस्ट फॉर द डे. और ये जो फाइनल होगा इट्स गोइंग टू बी ऑन द 29th ऑफ मे. हो सकता है कि ये नाम हो जाए आपके नाम. तो भेजिए अपने स्क्रीनशॉट्स ऑन 5499-1294. ऑल द बेस्ट.
1: A good beat for your morning show. Come on. Morning Beat. RM2. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: मैं सुनने वाला है कि एक कहानी चल पड़ी है रणवीर सिंह के इर्द गिर्द. अब सुनने वाला है कि अब कुछ साल के लिए उनको बैन कर सकते हैं. रणवीर सिंह और फिल्म डॉन 3 को लेकर एक विवाद बढ़ गया है और वो फेडरेशन तक पहुंच गया है और उन्होंने कहा कि अब वो काम नहीं करना चाहते उसके अंदर. अब जानते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है. बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फिल्म डॉन 3 को लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा है.

0: और सोमवार को कहा गया कि उसके 4 लाख से अधिक सदस्य रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 से आखिरी समय में बस बाय-बाय कर दिया। अब आपको बताया कि बहुत टाइम से इसकी प्लानिंग चल रही है और इस घटना ने बड़ी बहस छेड़ दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या धुरंधर और धुरंधर 2 एक्टर रणवीर सिंह अब नहीं कर पाएंगे काम फिल्म इंडस्ट्री में, पता नहीं। लेकिन बयान का मतलब ये है कि अब इस सरकार द्वारा नहीं है और ना ही कानूनी रूप से किसी एक्टर को फिल्में साइन करने से रोकता है, लेकिन ये जो फ्रेटर्निटी है साथ में मिल गई है, अब काम करेंगे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस। लेकिन ये कदम अभी फिलहाल काफ़ी सीरियस लग रहा है। एक्टर के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव का मतलब ये है कि फेडरेशन से जुड़े सदस्य, टेक्नीशियन और वर्कर्स फिलहाल रणवीर सिंह या उसके प्रोजेक्ट के साथ काम नहीं करेंगे, सहयोग नहीं देंगे। अब देखते हैं आगे चलकर क्या और डेवलपमेंट होती है, पता चलेगा। डॉन 3 अब हो सकती है क्या टेंशन फ्री, पता लगेगा तो जरूर बताएंगे। खबर खबर पर हमारी नजर।
1: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2 Radio.

0: You're into Radio Masti. Feels a Masti.
1: गैजा जी आपको बिग हेलो और साथ में साथ दे रहे हैं, कहते शाम हूँ और ऑल सॉन्ग्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। एंड प्यार से गाना प्लीज़ मेरे लिए भी, एंड कहते हैं अनुषा के लिए अगला गाना, गुड मॉर्निंग जी आपको, एंड कहते हैं प्लीज़ अगला गाना टू ऑल द वंडरफुल पीपल, यहाँ साथ दे रहे हैं। जाने के वक्त थोड़ी देर में रेट्रो रिदम, मुसाफिर हैं तो साथ हो जाए म्यूजिक के।

0: ट्रेकियो टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार आस्था के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज राज्यसभा में इसी समय विपक्ष नेता जूली रुंग का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा की रेपो रेट में की गई बढ़ोतरी पर आधारित है। 20 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दिया था। वे प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि इस फैसले का असर परिवारों और अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टरों पर किस प्रकार पड़ रहा है। राज्यसभा में दूसरी पढ़त के दौरान प्रधानमंत्री द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश करेंगे। ये विधेयक संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग के गठन पर आधारित रहेगा। इस राज्यसभा की बैठक में ही आज ही कई अहम संसदीय प्रश्नों को लेकर सरकार से जवाब भी मांगे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, सिल्वर बैंक प्रकरण, गंगा तालाब की पवित्रता, पुलिस जांच और कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल सदन में उठाए जाने वाले हैं। इसके अलावा एमओएसएस की वित्तीय स्थिति, सेफ सिटी कैमरा, मेट्रो एक्सप्रेस विस्तार, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी विभिन्न मंत्रियों से जवाब मांगे जाएंगे। वहीं शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और खेल क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे भी आज की बैठक में चर्चा का केंद्र रहेंगे। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार आज यौमे अरफात का पाक दिन मनाया जा रहा है। हज के दौरान इस दिन को सबसे अहम माना जाता है। आज लाखों हाजी अरफात के मैदान में पहुंच रहे हैं, जहां वे इबादत कर रहे हैं और अल्लाह से रहमत, बरकत और माफ़ी की दुआ मांगेंगे। मान्यता है कि आज के दिन इसी स्थान पर हज़रत मोहम्मद साहब ने अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम दिया था। भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का असर लगातार बना हुआ है। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और पंजाब समेत कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कश्मीर स्ट्रीट लिस्पेरेंस ट्रिब्यूशे में अ 6 साल की डीएसओल की श्रीमती दिव्यंती जीबन पैदाइश नाम सीसाहा। उनकी अर्थी आज सुपहर के 3 बजे उन्हीं के मकान लिस्पेरेंस ट्रिब्यूशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Retro Rhythm.
4: RM2.

0: Retro Rhythm.
1: खूबसूरत सा सफर शुरू हो चुका है आपके और हमारे बीच में ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। जी हाँ दोस्तों, चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 12:07 हो चुके हैं। गिनीशा हाजिर है खूबसूरत गानों का सिलसिला लेकर। बिल्कुल जी, रोज दोपहर को आ जाते हैं, यानी कि यह 12 से लेकर 2 तक इस खूबसूरत से सफर में आपका साथ देने के लिए, आपका हम सफर बनने के लिए और आपकी यादों को और भी सपोर्ट करने के लिए। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार और गिनीशा का प्रणाम। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स? आई नो आप इंतजार में बैठे रहते हो कि कब ये रेट्रो रिदम शुरू हो जाएगा और आप अपने दिल को थाम कर बैठेंगे आराम से खोने के लिए इन खूबसूरत यादों में, इन खूबसूरत गानों के साथ। बिल्कुल जी, यही तो हम कोशिश करते रहते हैं कि इन खूबसूरत गानों के जरिए मुंहों पर मुस्कुराहट हम लेकर ही आए आपका। तो चलिए जी, स्वागत हमने आपका कर लिया, याद दिला देते हैं द मैजिकल नंबर। वैसे बहुत सारे लोगों को तो याद है, लेकिन फिर से बताऊंगी, 5499-1294-5499-1294। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दिल की बात लिख के भेजिए। कोई भी ऐसी बात हो अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, आपकी यादें, खूबसूरत खूबसूरत प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें, सो डू इट राइट नाउ राइट अवे थ्रू योर डेडिकेशंस। और लेकर आए हैं कुछ बहुत ही गिने चुने गाने। तो चलिए जी, ये अगला गाना हमारी तरफ से आपके नाम, किशोर दा की आवाज में, नीले नीले अंबर पर। Sit back, relax and enjoy. Until those having their lunch, bon appétit.

0: रेट्रो रिदम।
1: बिल्कुल जी, चांद तारे भी गवाह हैं आपके प्यार का और हमें भी पता है कि आपको कौन सा गाना सुनना अच्छा लगता है, तभी तो हम चुन चुन कर लेकर आते हैं योर फेवरेट गाने, योर फेवरेट सॉन्ग स्पेशली ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती। फिलहाल के लिए 12:22 हो चुके हैं। मोना पेटी माय डियर, इफ यू आर हैविंग योर लंच एंड यम्मी यम्मी खाना खाते समय जब प्यारे प्यारे गाने हम सुनते हैं ना, तो डाइजेशन में भी बड़ा काम आ जाता है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ट्यूजडे 24 May 2024, हेलो जी, आज wish you a magical birthday my dear. Filhal ke liye chaliye, let's check it out your dedications on 5499-1294 par. Hamare saath de rahe hain Abdul ji aur Sehra Banu ji. Have a nice day my dear, and aapko bhi salam. And Babita Umpolkarville, Babita ji kaise ho aap, ek gana specially aapke liye my beautiful lady. To kisi ne likha hai, to chaliye arz kiya hai ki ye dosti chirag hai ise jalaye rakhna, ye dosti chirag hai ise jalaye rakhna, aur ye dosti gul hai ise khilaye rakhna. हम रहे ना रहे इस जहां में, बस हमारी याद दिल में हमेशा के लिए बसाए रखना। दैट्स कमिंग फ्रॉम आकाश चेतन मानसुक जो रहते हैं बॉम्बे में, एंड विशिंग ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून उनके तरफ से और उनके पूरे जो मानसुक परिवार हैं। अगला गाना उनके नाम, एंड कृष्टि जी हेलो कैसे हो आप। हाँ जी कृष्टि, रिविया डे क्रियोल से एज यूजुअल ऑन टाइम मैसेज भेजने के लिए आपके बहुत ही प्यारे हस्बैंड हैं मिस्टर विक्रम, उनके लिए ट्विंस कौशिक एंड कुशल के लिए ऑस्ट्रेलिया में है एंड एक कनाडा में है, तो आपके लिए भी हमारे टीम के लिए हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। हेलो मॉरिशस, हाय या पेरिस, कैसे हो मिस्टर डे फ्रॉम द सिटी ऑफ लव। ऑफ कोर्स हमेशा हमें याद आता है क्योंकि जब भी पेरिस की बात होती है तो हमेशा इट्स ऑलवेज अबाउट लव, तो हमेशा हम मेंशन करते हैं मिस्टर डे फ्रॉम द सिटी ऑफ लव। सो तुझे देखा तुझे चाह, तुझे देखा तुझे चाह, ये गाना ना चलिए जी थोड़ी देर में हम जरूर प्ले करेंगे आपकी वाइफ के लिए, और गॉड ब्लेस यू ऑलवेज माई लवली लवली मिस्टर डे और उनकी प्यारी सी बीवी। तो चलिए जी, ऑसम selection Darren Schwitter wish Prusha Lavisha Padu families as usual. Agla gana aapke liye, we have Sanjay from Sebastopol ka birthday hai, so happy birthday to you and best wishes from Vidyani, Mahen, Vishwani, and we do have Vishal as well, Gitisha and Sichuan parivar ki taraf se lots of love and happiness to you my dear. To chaliye to all those jo Amitabh Bachchan ke die hard fan hai, I'm pretty much sure you're gonna love this song. Kavita Krishnamurti ki awaaz mein, ji haan dost, you are going to

0: लव इट। और ये है स्पेशली आपके लिए हमारी तरफ से ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। ऐसे चुम्मा तो आप मांगने वाले हो, इससे पहले हम दे ही देते हैं चुम्मा फॉर यू।
1: Radio Musti.

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: Lolo Hypermarché, Low Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentinat Phoenix.
1: Tout le monde s'y presse pour aller chez Lolo.
2: RM2
3: Radio Musty.
4: Quatrième saison débat climat peut continuer. Ban participants pour continuer débat sur ban questions climatiques qui concernent nous pays et nous planète. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 30 mai pour la suite compétition débat climat entre ben élèves collèges à partir 8h30 à soir lors MBCN et MBCSAT.
2: Retro Rhythm.
5: तो कैसा लग रहा है अब सभी लोगों को ये खूबसूरत गानों का सिलेक्शन जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इन योर रेट्रो रिदम के निशानदार माइक साथ देने के लिए एंड ऑफ कोर्स हमें तो बहुत ही मजा आ रहा है ऐसे पुराने गाने पुराने यादों के साथ व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जस्ट रिमाइंड यू द शोज लाइव ऑन टिकटॉक और रेंटो रेडियो मस्सी और फिलहाल के लिए आइए जी चेक करते हैं आपके प्यारे प्यारे लवली लवली डेडिकेशंस जो आपने भेजे हैं ऑन 5499194 पर और चलिए जी फिलहाल के लिए किसी ने लिखा है यानी कि रोशनी जी ने लिखा है कि वाह वाह ऐसा लग रहा है कि बाजार में सेल लगी हुई है ले ले चुम्मा ले ले सो फनी हर तो कोई बात नहीं हमने भी चुम्मा तो दे ही दिया था आपको एंड हियर वी गो विना जी एंड वो है नोवेल फ्रांसे एंड बोलती हैं कि एक गाना हो जाए लवली सारे मदर्स के लिए इन द वर्ल्ड यस ऑन संडे वी गोना सेलिब्रेट मदर्स डे स्पेशल तो ऑफकोर्स सारे मम्मियों के लिए गाना तो बनता है लेकिन अभी थोड़ी देर बाद सो डेडिकेटिंग द नेक्स्ट वन फॉर निकिलेश डू ऑफ बोआ रूज पॉम्प्लेमूस द क्यूट प्रिंस इज सेलिब्रेटिंग हिज फोर्थ बर्थडे टुडे सो हैप्पी बर्थडे टू यू माई डियर एंड बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम दादा दादी मामा एंड पापा पुलू एंड थैंक यू सो मच हनी ललिता जीतन जी कैसे हो आप ये अगला गाना आपके लिए लंच टाइम है तो गाने एंजॉय कर रही हैं अपने कलीग्स टीचर्स के साथ तो चलिए जी सिनिका पिंकी सोनिया दिशिता अमिता सिमी एंड वी डू हैव रवि एज वेल रवि जो है साथ दे रहे हैं एंड आश्ले ललिता एंड पूरे जितन परिवार के लिए जो लावों छह के रहने वाले हैं वी डू हैव वीडा वाली हाय दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम वीडा वाली एंड तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं बिल्कुल हाँ भी इंतजार कीजिए दीवाना मूवी का ये गाना एंड बेस्टी वनीशा के लिए आप डेडिकेट करना पसंद करोगे तो चलिए जी वी डू हैव एंजल वी डू हैव निखिल एंड वी हैव प्रिया एज वेल लिसनिंग टू अस एंड वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक आवर एंड टू रेडियो मस्ती एंजल बोलते हैं गाना उनके लिए हो जाए शी इज नॉट वेल एंड गेट वेल सून हनी तो चलिए तो ऑल दोस्त जो इस गाने के बहुत ही

दीवाने हैं एंड बहुत ही पसंद करते हैं और आई एम प्रीटी मच श्योर यू मस्ट बी हैविंग सम लवली सुवेनियर्स, सम लवली लवली जो आपकी यादें हैं इस गाने के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हैं तो बस तैयार हो जाइए टू गेट नॉस्टैल्जिया विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: द्वारा 20 मई को की रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि पर चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री के अनुसार ये फैसला इस संस्था की पुनः प्राप्त स्वतंत्रता को दर्शाता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो उनके मुताबिक पिछली सरकार के शासनकाल में नहीं थी। प्रधानमंत्री का कहना है कि इन्फ्लेशन दर पूर्वानुमान से ज़्यादा रहेगी, यानी 5.5%। डॉक्टर नवीन राम गुलाम के अनुसार इसके पीछे वैश्विक स्तर पर पाई जा रही अस्थिरता का कारण है। आजसू द्वारा चलाई गई एक वृहद कार्रवाई के दौरान आज गोंबे के कोंकाहल इलाके में सिंथेटिक ड्रग्स बरामद किए गए, जिनकी कीमत 22,000 रुपये के आसपास की बताई जाती है। अफसरों को एल्यूमिनियम के 13 पार्सल्स मिले और एक प्लास्टिक की थैली में कुछ द्रव्य भी बरामद किए गए। ऐसा संदेह है कि ये पदार्थ सिंथेटिक कैनाबिनॉइड हैं। इस मामले में 58 वर्षीय एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ पूछताछ की जा रही है। मॉरिशस की टेक्सटाइल कंपनी वर्ल्ड नीट्स पिछले एक साल के दौरान कैपिटल की प्रवाह को लेकर गंभीर समस्याओं का सामना कर रही थी। अब इसे वॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन के तहत रखा जा रहा है। पिछले जनवरी में एक सुधार योजना प्रस्तुत करने और हाल के महीनों में परिचालन जारी रखने के बावजूद कई आंतरिक और बाहरी कठिनाइयों के कारण ग्रुप के परिचालन में लगातार देरी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, जहां कल एक बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ठोस शांति संधि तय होने की उम्मीद की जा रही है, वहीं कल ही 40 दिनों के युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर नए हमले किए। इस बार ईरान के मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में उसकी ताकतों ने ये हमले किए। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ, आगे दीजिए, नमस्कार।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2, Radio Musty. Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: मुकेश दा की आवाज में स्पेशली आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये खूबसूरत सा गाना हिमालय की गोद में, ये मूवी से लिया गया स्पेशली आप लोगों के लिए। माय डियर लवली लिसनर्स, वेलकम बैक इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो, दैट्स योर रेट्रो रिदम हैपनिंग ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती। जी हाँ, आपके और हमारे बीच में ये खूबसूरत ऐसा जो रिश्ता हमने ये बनाया है उसको कायम रखने के लिए आपके मनपसंद गानों को हम लेकर आए हैं। आई नो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। और फिलहाल के लिए चलिए जी, आई गॉट यू बहुत ही प्यारे प्यारे गाने हियर फॉर दिस आवर। सो 5491294 पर कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। और फिलहाल के लिए बिल्कुल जी आपको याद दिला दे 5491294 ये है एक मैजिकल नंबर जहाँ पर आप अपने दिल की बात लिख के हमें भेजते हो, जहाँ पर ऐसे कोई गाना है जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब, आप सुनना पसंद करोगे 80s और 90s के। सो जरूर आप हमें मैसेज कीजिए, अगर बड़े टाइम हो गए हमने इस गाने को प्ले नहीं किया हमारे शो में, सो व्हाई नॉट, आपकी ये फरमाइश सर आंखों पर। और फिलहाल के लिए टू ऑल दोस हु आर वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक, ये गाना आपके नाम।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: बिल्कुल जी, मुबारक हो जी, मुबारक हो टू दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे ऑन ट्यूसडे 26 मई 2024। आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे अगर आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो हम इस मौके को कैसे मिस कर सकते हैं। आपको भी हम दिल से विश करना चाहेंगे हैप्पी टुगेदरनेस, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माय डियर, एंजॉय टू द मैक्स इट्स योर डे। और आपकी डेडिकेशंस तो हम तक पहुंच ही गई हैं, तो चलिए साथ में चेक कर ही लेते हैं। वी हैव अ प्रिया, प्रिया का जन्मदिन है आज। हेलो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलिए

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, 12 दोस्तों सेलिब्रेटिंग द बर्थडे टुडे। आपको दिल से हम ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं विश करते हैं। सो बेस्ट विशेस कमिंग टू यू प्रिया, इट्स योर बर्थडे टुडे एंड इट्स फ्रॉम योर डियरेस्ट फ्रेंड सचिन की तरफ से, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस स्पेशली फॉर यू माय डियर। तो चलिए, वी डू हैव कविता, कृष्णमूर्ति की आवाज में गाना हो जाए। अच्छा पूजा, ओके पूजा, कोशिश करते हैं टू प्ले दैट फॉर यू। एंड प्रणाम जी, गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी ट्यूसडे। अभी घर आ गए, रेडियो ऑन किया तो आपको सुना बहुत ही अच्छा लगा। अगर हो सकते हैं तो जरूर, क्यों नहीं हो सकता है, चिट्ठी ना कोई संदेश, बिल्कुल जाने वो कौन सा देश। कोशिश करेंगे टू प्ले दैट फॉर यू। आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है और मैं बहुत याद करती हूँ, वो दुनिया में नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम। तो चलिए जी, ये गाना खासकर हमारी तरफ से आपके नाम एंड फॉर यू, पूनम जिनी मोहन, जो गाना से साथ दे रहे हैं।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: तो चलिए जी चेक होता है, एक बज के 32 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल जी, वैसे धूप हो या ऑफिस का प्रेशर, सफर हो या घर की जिम्मेदारियां, वैसे आज आफ्टरनून अपने दिल को दीजिए थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा राहत हम भी तो देंगे, क्योंकि आपके लिए हम लेकर आए हैं 90s, 80s एंड 70s के सुपरहिट बॉलीवुड गीत जो आज भी दिल को छू जाते हैं जब भी सुनते हैं। और पूजा जी, आई होप कि आपको अच्छा लगा इस गाने की आपने मांग की थी, श्रीदेवी की हवा हवाई इन द वॉइस ऑफ कविता कृष्णमूर्ति। सो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें भी बहुत दिल से अच्छा लगा। तो चलिए, वैसे अगर आप ऑफिस में हो, घर पर हो या रोड पर ड्राइव कर रही हो, चलिए रेडियो मस्ती रखिए अपने साथ और एंजॉय कीजिए यादों भरी म्यूजिकल जर्नी हमेशा इन योर रेट्रो रिदम। और वैसे देखा जाए आप भी तो मिडल ऑफ द डे हैं, तो उनको बनाइए और भी स्पेशल विद अ ब्यूटीफुल लवली मेलोडीज ऑन आवर एंड योर रेडियो मस्ती। और फिलहाल के लिए अगला गाना जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे, जिसने लिखा है कि हम तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं इस शो को, थैंक यू सो मच धनेश्वर जी, उनकी प्यारी पत्नी सुनीता भी साथ दे रहे हैं और उनके पूरे परिवार जो है देवडोस एंड कावलिस ऑफ फैमिली साथ दे रहे हैं, पोटिया हंस वी एन बियाना एंड भविका भी। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। हे गुड चॉइसेस गिने, थैंक यू सो मच बनीटा फ्रॉम रोजिल। एंड चलिए गाना हो जाए ओ मेरे सनम फ्रॉम संगम, चलिए देखते हैं अगर टाइम मिले तो जरूर टू बाबूलाल बोईरू, लच्छू राम एंड लच्छू मन एंड कावले साव परिवार जो साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। एंड द नेक्स्ट वन ऑफकोर्स सिस्टर जो हैं जुली एंड हर डॉटर्स खुशबू, अच्छा उनका नाम है जुली, बहुत जुली, अच्छा बहुत ही जुली है उनका नाम, जुली नाम। सो और उनकी जो बेटियां हैं खुशबू, वी हैव खुशबू एंड यशना ऑफ प्लेनमानिया एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम ज्ञानी फ्रॉम मिडलैंड्स, थैंक यू सो मच ज्ञानी जी साथ देने के लिए। शाम देवी चंद फ्रॉम पेरेबे एंजॉइंग द शो एंड घर पर गर्म गर्म इलायची वाले चाय पी रहे हो, अच्छा जी चाय भी हो गई आपका, अच्छी बात है। सो वी हैव ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे, बेस्ट विशेष तन्वीर आयशा तेजल रयान रैना तरश वनीशा वर्षा एंड कमला गंगा बिसुन ऑफ क्वैटर बोन, शी इज एंजॉइंग द शो, अविनाश फ्रॉम बेलेयर, ये अगला गाना आपके लिए। वी हैव वेदही टीना रक्षा एंड वेदना भी साथ दे रही हैं, बोलते हैं बहुत ही प्यारा सा सिलेक्शन है। तो चलिए सिलेक्शन अगर आपको अच्छा लगा सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको ये अगला गाना भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये है टेकन फ्रॉम द मूवी घर घर की कहानी और ये है किशोरदा की आवाज में आपके लिए। सो हियर वी गो, एंजॉय कीजिए।
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: Retro Rhythm.
1: That was such a lovely song, Jihan. Nana karte pyar tumhi se kar baithi. From the voices of Mohammad Rafiji aur Suman Kalyanpur. To chaliye pyar to aap kar hi baithe hain. To I guess ki ye pyar barsane ki bari to hamari aa gayi hai na. Of course, hum lekar aaye hain kuch aise gine chune gaane. Especially for you, my dear lovely people out there. And I really hope ki dil se aapko acha hi lag raha hai. Mujhe to acha lag raha hai. Kyunki such beautiful songs. Waqai, we travel with time. It takes us back to memories. Down memory lane lekar jaate hain. Aap sabhi log. को वैसे आज की दोपहर डेडिकेट करते हैं उन दिलों को जो 90s 80s के बॉलीवुड म्यूजिक के दीवाने हैं, अपनी यादें ढूंढते हैं उसमें. तो ऑल इज नॉट जस्ट गोल्ड माय डियर, ऑल इज हमेशा कंफर्ट, लव और एंडलेस मेमोरीज. तो जहां भी हो, आप कहीं से भी हमारा साथ दे रहे हो, जस्ट स्टे ट्यून ऑन रेडियो मस्ती एंड लेट द म्यूजिक हग योर सोल. जी हाँ, जप्पियां तो पप्पियां भी तो हम पाई लेते हैं आप लोगों से. गायत्री जी आप सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच. एंड आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट वन टू समवन वेरी लवली. अनीता जी फ्रॉम फिकॉन फ्लैग वो बोलते हैं, अच्छे अच्छे गाने आप डेडिकेट कर रहे हो हमारे लिए, तो आपके दोस्त के लिए भी हो जाए. इंदिरा, शमा, मीरा, सिनन, कविराज, साधना, मालिनी एंड कविता के लिए भी जरूर. एंड हैप्पी ट्यूजडे टू you my dear, and enjoy the show. Or I have the next one for you, my lovely Kevin bolte hain, I'm just listening to you and I'm really enjoying. That's very good. Yehi to actually it's our aim ki hum gaane play kare aur aapka dil khush ho jaye aur aap enjoy kare. So here we go, lete hain ek chota sa teeny mini break and uske baad the good music continues.
2: RM2
3: Radio Musti.
4: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sens tous audi, et n'a toujours un pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Li pas une simple tasse, li un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2
3: Radio Musti.

0: तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू। हम कल फिर मिलेंगे, यानी कि कल वेडनेसडे को मिलेंगे रात के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इन योर इवनिंग लाउंज। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक ऑलवेज ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2

0: स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। बैंक ऑफ मॉरिशस अब पूरी तरह स्वतंत्र हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के पीएनक्यू के जवाब में ये बात कही। वे केंद्रीय बैंक द्वारा 20 मई को की रेट में 25 आधार अंकों की वृद्धि पर चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री के अनुसार ये फैसला इस संस्था की पुनः प्राप्त स्वतंत्रता को दर्शाता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो उनके मुताबिक पिछली सरकार के शासनकाल में नहीं थी। प्रधानमंत्री का कहना है कि इन्फ्लेशन दर पूर्वानुमान से ज्यादा रहेगी, यानी 5.5%। उनके अनुसार इसके पीछे वैश्विक स्तर पर पाई जा रही अस्थिरता का कारण है। बालाक्लावा में कल नेशनल साइबर ड्रिल 2026 का आयोजन किया गया। ये पहल सर्ट एमयू की रही। दुनिया में बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ उच्च स्तर के साइबर हमले पेश आने लगे हैं। इस तरह के खतरे के खिलाफ प्रतिरक्षा मजबूत करने के मकसद से सार्वजनिक संस्थाएं इस अभ्यास के लिए जुटी, ताकि प्रतिक्रिया क्षमताएं तेज की जा सके और समन्वय ज़्यादा मजबूत हो। इसके तहत देश के रणनीतिक डिजिटल बुनियादी ढांचों की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों पर गौर किया गया। तलबिया कहते हुए आज मैदान अरफात में सभी हाजी अपने रब के फरमान पर जमा हुए। हमारे 1506 हमवतन भी इनमें शामिल हैं। आज 9 जिल हिजा की तारीख पर यौम अरफात है। हज की अदायगी में ये सबसे अहम मरहला है। आसू द्वारा चलाई गई एक वृहद कार्रवाई के दौरान आज गौबे के कोंकागल इलाके में सिंथेटिक ड्रग्स बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 22,000 रुपये की बताई जाती है। अफसरों को एल्युमिनियम के 13 पार्सल्स मिले और एक प्लास्टिक की थैली में कुछ द्रव्य बरामद हुए। ऐसा संदेह है कि ये पदार्थ सिंथेटिक कैनाबिनॉइड है। इस मामले में 58 वर्षीय एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ पूछताछ चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, जहां कल एक बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ठोस शांति संधि तय होने की उम्मीद है, वहीं कल ही 40 दिनों के युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर नए हमले किए। इस बार ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में उसकी ताकतों ने ये हमले किए। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आगे आ दीजिए। नमस्कार।
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies. Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: झन रान झन रान झन, दैट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। फिल्म तो आपको पता ही होगी, यस, दो पत्ती फिल्म का ये गाना, और इसी गाने के साथ वार्म वेलकम हमारी सभी लिसनर्स का। ट्यूसडे आफ्टरनून है एंड इट्स 2:08, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो वार्म वेलकम हमारे सभी दोस्तों का, सभी लिसनर्स का जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। सो वेल फ्रेंड्स, आई डू होप दैट आज का ट्यूसडे एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त रह रहा है आप सभी के लिए। एंड म्यूजिकली हम तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, बी टाउन के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे विद some wonderful songs. And to get you in the Tuesday mood, we have this gana. चलिए आपके मूड को सेट करते हैं और साथ दे रहे हैं आप messages, dedications 5499-1294 पर। मैं ऊपर ही आपके साथ till 4 PM right here on RM2 Radio Masti.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
1: Bombay Talkies.
2: Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: सो वेल फ्रेंड्स, वी टाउन के अपडेट्स आप तक हम पहुंचाते हैं। 2:23 हो गए हैं और चलिए जानते हैं क्या हो रहा है बॉलीवुड में। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस सबा आजाद पिछले कुछ वक्त से अपनी वेब सीरीज हुज योर गायनेक के दूसरे सीजन को लेकर चर्चाओं में है। ये सीरीज 22 मई को OTT पर रिलीज हुई है और इन दिनों वो जोरों शोरों से इसका प्रमोशन करते नजर आ रही है। हाल ही में सबा ने एक इंटरव्यू में फिल्म इंडस्ट्री में 8 घंटे काम करने की मांग को लेकर चल रही बहस पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का समर्थन, उनका साथ दिया। दीपिका के 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में इसे लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इस बहस पर पूरी इंडस्ट्री दो खातों में जो है वो बट गई है और ज्यादातर सेलेब्स ने दीपिका पादुकोण की इस मांग का समर्थन किया है। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस और थिएटर डायरेक्टर सबा आजाद ने इस मामले पर अपनी राय रखी है और उन्होंने कहा है दैट एक्ट्रेसेज की मांग को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन शी इज अ मदर नाउ एंड शी ऑल्सो हैज अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ। तो जब वो 8 घंटे की मांग करती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है और इसे पॉजिटिवली देखना चाहिए, ये कहना है सबा आजाद का, जो आई है इन सपोर्ट ऑफ दीपिका पादुकोण। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए शिल्पा राव की आवाज एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग वंस अगेन टेकन फ्रॉम द फिल्म दो पत्ती, डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम। कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ, सुन रहे हैं बॉम्बे टॉकीज और ये है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन
5: RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए एक ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड जिगरा फिल्म का ये गाना, एक ऐसा गाना जहाँ पर एक ब्रदर सिस्टर की जो बॉन्डिंग होती है उसको एक अलग तरह से दिखाया गया. व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म इट वाज. और इस फिल्म में हमने देखा आलिया भट्ट को इन अ टोटली डिफरेंट अवतार. सो वेल, दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द ब्रदर्स सिस्टर्स जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. भाई, रक्षाबंधन ही क्यों, राखी ही क्यों, एवरी डे वी सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल बॉन्ड. और जब भी ऐसे कोई गाने चलते हैं तो सबसे पहले अगर किसी की याद आती है तो वो है आपके सिबलिंग्स. सो दिस वन गोज आउट फॉर यू एवरीवन जो हमारा साथ दे रहे हैं. अ ब्यूटीफुल ट्रैक फॉर एवरीवन. मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294 पर.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: एंड वेलकम करते हैं आप सभी का जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. चलिए दोस्तों, और मॉर्निंग टू इवनिंग आपके लिए बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती. और तहे दिल से आपका स्वागत, आपके लिए प्यार हम तो बरसाते रहते हैं. सो यहाँ पर अभी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रही हूँ. मैं हूँ परी आपके साथ, एंड बात करेंगे सुनील दत्त, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर और फिल्म मेकर रहे, जिन्होंने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी. फिल्मी दुनिया में शानदार काम करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा था. उनकी राजनीतिक पारी काफी शानदार रही, लेकिन 25 मई 2025 को दिल का दौरा पड़ने से सुनील दत्त का निधन हो गया और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. अब सुनील दत्त के डेथ एनिवर्सरी पर उनके बेटे और एक्टर संजय दत्त ने अपने पिता को याद किया है. पापा की यादों में डूबे संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की. संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर पिता सुनील दत्त के साथ अपनी 3 तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इन तस्वीरों में पिता बेटा की जो बॉन्डिंग है वो साफ नजर आ रही है. और संजय दत्त ने फोटोज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा दैट आई मिस यू एंड आई ऑलवेज लव यू डैड, यू आर एंड हैव ऑलवेज बीन अ रॉक इन माई लाइफ, आई एम ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल टू हैव अ डैड लाइक यू. और यहाँ पर ये पोस्ट शेयर करते हुए

लग तो रहा है दैट संजय दत्त काफी इमोशनल हो गए और ये हम जानते हैं दैट ही हैज ऑलवेज हैड अ वंडरफुल बॉन्डिंग. अगर उनकी माँ नरगिस दत्त या फिर उनके पिता सुनील दत्त की हम बात करें, वो हमेशा उनसे काफी अटैच रहे, लेकिन उनकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव, इतने अप्स एंड डाउन्स आए और इन अप्स एंड डाउन्स में उनकी माँ नरगिस तो उनके साथ नहीं थी, लेकिन सुनील दत्त वॉज अ रॉक इन हिज लाइफ, जहाँ पर वो बिल्कुल एक सॉलिड पत्थर की तरह उनके साथ खड़े रहे, जहाँ पर इतने सारे उतार चढ़ाव होने के बावजूद वो अपने बेटे के सपोर्ट में हमेशा रहे. और ये भी हमने सुना था कि जब सुनील दत्त जेल में थे तो सुनील दत्त घर पर बिना पंखा ऑन किए जमीन पर चादर डालकर सोते थे, बिकॉज वो जानते थे कि जहाँ उनका बेटा इस तरह रह रहा है तो वो जो फीलिंग है वो बयां करते हुए उनकी आंखें नम हो गई. सो जैसे हम कहते हैं दैट मदर और बच्चों की जो बॉन्डिंग है या फिर फादर और बच्चों की जो बॉन्डिंग है उससे बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं हो सकता. एंड सून वी विल बी सेलिब्रेटिंग मदर्स डे, फादर्स डे. सो दिस वन गोज आउट फॉर एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अ ब्यूटिफुल बॉन्डिंग विथ योर पेरेंट्स. सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, दिस वन गोज आउट फॉर यू.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: वेल संजय दत्त की बात की है और संजय दत्त धुरंधर फिल्म में अवार्ड धमाकेदार रोल उन्होंने निभाया, यानी कि इतना सॉलिड किरदार एसपी असलम चौधरी का किरदार उन्होंने निभाया और उनके कैरेक्टर की काफी तारीफ हुई एंट्री से लेकर उनके एग्जिट तक। कह सकते हैं दैट उन्होंने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। सो वेल फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा कि धुरंधर फिल्म से बहुत सारे लोगों ने अपना कमबैक किया है, हाउ कैन वी नॉट मेंशन राकेश बेदी। बहुत सी फिल्मों में हमने उन्हें देखा, लेकिन जैसा किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया है टोटली डिफरेंट। और उससे पहले अगर रणवीर सिंह की बात करें, सो रॉकी रानी की प्रेम कहानी के बाद बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे वो एक हिट का, और हिट तो क्या, सुपर हिट, ब्लॉक बस्टर हिट उन्हें मिल गए विद द फिल्म धुरंधर। सो दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ धुरंधर। गाना तो है काफी पुराना, लेकिन इस गाने को एक बार फिर हमने सुना धुरंधर में। तो चलिए सभी लिसनर्स के नाम एंड फॉर ऑल द फैंस ऑफ संजय दत्त।

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: तो वेल फ्रेंड्स, थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दे दैट एमबीसी प्ले एंड मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड आपके लिए लेकर आया है एक खास इनाम, जहां पर आप जीत सकते हैं हेलीकॉप्टर राइड फॉर अ कपल. जो ग्रैंड फिनाले है होने वाला है ऑन 29th ऑफ मे. और जैसे कि आप जानते हैं, एवरी डे हम यहाँ पर लिसनर्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं. सो इट्स वेरी सिंपल, इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपको एमबीसी प्ले 1.0 डाउनलोड करना है. एमबीसी प्ले 1.0 डाउनलोड करना है. आप प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. एंड जब आप इसे डाउनलोड करते हैं, इसमें आपको रजिस्टर करना है. वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ, आपको मिलने वाला है एक मैसेज फ्रॉम एमबीसी ओटीटी, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमें भेजना है ऑन 5499 1294. क्या पता बन जाए आप लकी लकी विनर फॉर द वंडरफुल हेलीकॉप्टर राइड जो होने वाला है फॉर अ कपल. सो इट्स वेरी सिंपल, रजिस्टर कीजिए और स्क्रीनशॉट हमें भेजिए ऑन 5499 1294.
4: À l'occasion lancement MBC Play, prépare-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir la chance des grands gagnants pour un pot d'étiquette Saken pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans Région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play avec vous partout. Pour plus d'informations, téléphone-le 400D 8000. Conditions applicables.
5: RM2 Radio Musti.
6: The time is brought to you by
7: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
6: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
8: North, South,
9: 103.5.
8: East, West,
9: 96.4.
8: Center,
9: 99.4.
10: RM2
11: Radio Musti.
10: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
8: Radio Musti.
10: Feel the Musti.
3: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति. आपको नमस्कार.
12: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार. आज सऊदी अरब में हज का दिन है. सभी हाजी आज मैदान अरफात में जमा होकर इबादतें और दुआएं कर रहे हैं. इनमें 1506 मॉरिशन हाजी भी शामिल हैं जो इस्लाम का पांचवा फर्ज अदा कर रहे हैं. यौम अरफात हज की अदायगी में सबसे अहम मरहला माना जाता है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही वहाँ गए हुए लोग हाजी कहलाए जाते हैं. अमेरिकी दूतावास ने राजीव गांधी साइंस सेंटर के सहयोग से

0: हफ्ते अंतरिक्ष नवाचार और उभरती हुई नई टेक्नोलॉजियों पर आधारित फ्रीडम 250 नामक प्रोग्राम का आयोजन किया। कई गोष्ठियां लगाई गईं और चर्चाएं चली। इनके माध्यम से इस मुद्दे पर गौर किया गया कि किस प्रकार विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा को रूपांतरित कर सकते हैं और नौजवानों को भविष्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार कर सकते हैं। बालाक्लावा में कल नेशनल साइबर ड्रिल 2026 का आयोजन किया गया। ये पहल सर्ट एमयू की रही। दुनिया में बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ उच्च स्तर के साइबर हमले भी पेश आने लगे हैं। इस तरह के खतरे के खिलाफ प्रतिरक्षा मजबूत करने के मकसद से सार्वजनिक संस्थाएं इस अभ्यास के लिए जुटी ताकि प्रतिक्रिया क्षमताएं तेज की जा सके और समन्वय ज़्यादा मजबूत हो। इसके तहत देश के रणनीतिक डिजिटल बुनियादी ढांचों की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों पर गौर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बेल्जियम में एक स्कूल मिनी बस और एक ट्रेन के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें स्कूल के 2 बच्चे और 2 वयस्क शामिल हैं। हादसे के वक्त स्कूल बस छात्रों को एक विशेष एजुकेशनल टूर पर ले जा रही थी। उधर उत्तरी भारत के कई इलाकों में भयानक गर्मी की लहर चली है। कई शहरों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों के लिए पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया। दीजिए नमस्कार।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musti.
5: Radio Musti. Welcome to RM2 Radio Musti.
6: Radio Musti.
7: Hits music only.
6: Feels a musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: सो वेल फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सोलफुल सॉन्ग इन द वॉइस ऑफ सोनू निगम. अब इट्स टाइम फॉर लिटिल मस्ती बिकॉज ये है आपका अपना आर एम टू रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे जॉकीज. बी टाउन की खबरें गर्मा गर्म खबरें कर रही हैं आपका इंतजार अभी से लेकर 4 बजे तक. साथ रहेगा आपका और मेरा. सो अभी के लिए कुछ और प्यारे गाने. फॉर नाउ इट्स नकाश अजीज एंड जिगर सारिया की आवाजों में ये गाना फ्रॉम द फिल्म मुंजिया. आप सभी के नाम जो हमारा साथ दे रहे हैं. Not to forget, इस आवो में आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर सनी देओल, जो रेयरली अपनी पत्नी के साथ पब्लिकली नजर आते हैं और हाल ही में उन्हें अपनी वाइफ के साथ स्पॉट किया गया। सो आज यानी कि ट्यूसडे मॉर्निंग गदर एक्टर को अपनी पत्नी पूजा देओल संग एयरपोर्ट पर देखा गया। इस दौरान कपल काफ़ी हैप्पी मूड में नजर आ रहे थे। हालांकि उनकी पत्नी कैमरे से बचते हुए नजर आई और उनकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रही तस्वीरों में सनी देओल अपनी लग्जरी कार से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान बॉर्डर टू एक्टर ने ऑलिव ग्रीन शर्ट, ब्लू डेनिम जीन्स, व्हाइट स्नीकर्स और ब्लैक सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, जिसमें वो बेहद हैंडसम नजर आ रहे हैं। वहीं उनके हाथ में एक छोटा सा ट्रैवल बैग भी है और सनी की पत्नी पूजा देओल सालों से लाइमलाइट से दूर रही है। और वहीं मंगलवार की सुबह एक्टर संग उनकी पत्नी पूजा को देखते ही पैप्स ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया और पूजा इस दौरान बेज कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ एक सिंपल और एलिगेंट लुक में नजर आई। उन्होंने चश्मा भी लगाया हुआ था और उनका मेकअप काफी मिनिमल था। एयरपोर्ट पर सनी पैप्स को देखकर मुस्कुराते हुए पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी एंट्री की ओर तेजी से बढ़े और फिर उन्होंने वहां अपनी पत्नी का इंतजार किया। जैसे ही पूजा सिक्योरिटी चेक एरिया में पहुंची, सनी ने उन्हें आगे जाने दिया और खुद उनके पीछे पीछे चलने लगे। सो वेल, आफ्टर इयर्स इन दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया। वैसे बेटे की शादी में दोनों साथ जरूर नजर आए थे, लेकिन ये हम जानते हैं दैट पूजा देओल वो लाइमलाइट से हमेशा दूर रही है। और ये भी हम जानते हैं दैट सनी देओल और डिंपल कपाड़िया के काफी किस्से सुनने में आए हैं, जहां पर सालों से वो दोनों काफी क्लोज हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। इसके बावजूद उनकी वाइफ जो है यानी कि पूजा देओल हमेशा पैपराजी से दूर ही रही, ना कभी कोई इंटरव्यू दिया ना कभी कोई बातचीत की, लेकिन आज उन्हें एक साथ देखकर उनके फैंस और पैपराजी हो गए काफी खुश। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं, कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स एंड कुछ लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स। इट्स 3:40 यानी कि 3:40 होने को है, पर ये आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। अभी से लेकर 4 बजे तक मैं हूँ आपके साथ।

0: Cheese.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, जुबिन नौटियाल, उन्हीं की आवाज़ का ये वंडरफुल सॉन्ग उनके सभी फैंस के लिए एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती. इस आवाज़ को अगर आप लाइव सुनना चाहते हैं, नॉट टू फॉरगेट 30th ऑफ मे एट SBICC Pi, आप इन्हें लाइव गाते हुए सुन पाएंगे और देख भी पाएंगे. तो इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने ना दें और फटाफट अपने रिजर्वेशंस करवाएं. चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप तो हमारा साथ दे रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं, आपके लिए कुछ खास गेम सेगमेंट सब कुछ होता है बिकॉज ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती. तो जैसे हमने कहा कि अगर आप हेलीकॉप्टर राइड जीतना चाहते हैं फॉर अ कपल, सो आपको रजिस्टर करना है MBC Play 1.0 और जब आप इसे डाउनलोड करते हैं सो आपको इसमें रजिस्टर करवाना है. रजिस्टर करवाने के बाद जो मैसेज आपको आता है MBC की तरफ से, इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आपको हमें भेजना है on 5499-1294. क्या पता आप ही जाए वो लकी विनर जो जीत जाए इस हेलीकॉप्टर राइड को फॉर अ कपल. सो वेल, ऐसे ही कुछ खास मौके आपको हम देते रहेंगे. अभी के लिए तो खास मौके मिल रहे हैं उनको जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं विद देयर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस. प्यारे प्यारे मैसेजेस आप हम तक पहुंचा रहे हैं. सो वेल, कहते हैं कि प्यार वो नहीं जिसमें जीत या हार हो, असली प्यार तो वो है जिसमें मिलने की उम्मीद ना हो फिर भी उसका इंतजार हो. ओ हो हो, ललिता जीतन जी, लगता है कि आप काफी प्यार में डूबी हुई है. लेकिन बात तो आपने बिल्कुल सही की और प्यार तो बिल्कुल वही है जिसमें मिलने की उम्मीद ना हो फिर भी उन्हीं का इंतजार हो. चलिए अभी के लिए एक ब्यूटीफुल गाना डेडिकेट करेंगे आपके नाम और साथ देने के लिए शुक्रिया. और कहते हैं एंजॉइंग द सिलेक्शन, हमारे ऐसे ही जो विशेज हैं वो पूरी हो जाती है इन गानों को सुनकर, कहना है रोशनी का. तो बस कोशिश यही रहेगी कि इन गानों के साथ आप ही अपने आप को एंजॉय कर सके और कनेक्ट कर पाएं. साथ ही यहाँ पर एक स्पेशल सा डेडिकेशन, ये है फॉर लिटिल एंजल आरतिया जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, आज एक साल की हुई है. उनके लिए प्यार एंड ब्लेसिंग्स दैट्स कमिंग फ्रॉम दादा आनंद, दादी साधना, नाना विजय, नानी अंजनी और सभी तोरल परिवार है. उनके लिए लेकर आए हैं बहुत सारा प्यार एंड स्पेशल विशेस. सो लोड्स ऑफ लव एंड गुड विशेस टू यू ऑन योर स्पेशल स्पेशल डे. सो एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अगर आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन 26th ऑफ मे जैसे एंजल आरतिया, सो दिस वन गोज आउट फॉर यू.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: And well, friends, it's 3:55 and time for Pari to say goodbye. जाते जाते विजया जी कह रही है, अरे मैं भी तो हूँ यहाँ. बिल्कुल जी, आपको हम कैसे भूल सकते हैं. अगला गाना डेडिकेट करेंगे आपके नाम. कहते हैं, हेलो लवली बहना परी, मैं हूँ कुमार देवचन, एंजॉइंग द प्रोग्राम और फुल वॉल्यूम पर गानों को सुन रहा हूँ. एंड साथ ही डेडिकेटिंग गाना फॉर लवली पापा श्याम देवचन ऑफ पे बे, उनके लिए बहुत सारा प्यार. बिल्कुल जी, अगला गाना उनके नाम. देवचन हमारा साथ दे रहे हैं आप लाल माती से. वार्म वेलकम आपका ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. नेक्स्ट ट्रैक होगा आपके नाम. And we also have Veena Jagisa, Belvi Mohel se, Gana Sabhi Parivar ke liye, Sabhi Friends ke naam and MBC team ke liye bhi. That's really sweet of you. Thank you ji, thank you. Aur isi ke saath it's time for Pari to say goodbye. Aur mere baad aa rahi hai Manish Malekar, your Raftaar Vibes. So aap se mulaqaat hogi jal dosto, yani ki kal, same place, same time. Tab tak ke liye saath dete rahiye on the waves of RM2 Radio Masti and have a wonderful Tuesday out there.
3: Radio Musti.
0: Hit music only.
3: Feels a musti. Radio Musti.

0: Quatrième saison débat climat peut continuer. Ban participants pour continuer débattre l'oban question climatique qui concerne nous pays et nous planète. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 30 mai pour la suite compétition débat climat entre ben élèves collèges à partir 8h30 à soir l'au MBCN et MBCSAT.
1: RM2 Radio Mystique.
2: The Time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2
5: Radio Musti.
6: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musti.
6: Feel the Musti.
7: Time check, शाम के ठीक 4 बजे हैं. आइए सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार आपके साथ अदिति. नमस्कार आपको.
8: नमस्कार मनीषमा. श्रोताओं को भी नमस्कार. राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा 83 बिलियन रुपए की छपाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बैंक ऑफ मॉरिशस ने सेंट्रल CID में शिकायत दर्ज करवाई है. PMQD सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने डॉक्टर रंगानंदन पदायाची के बयानों को निराधार और दुर्भावनापूर्व कहा. अमेरिकी दूतावास ने राजीव गांधी साइंस सेंटर के सहयोग से पिछले हफ्ते अंतरिक्ष नवाचार और उभरती हुई नई टेक्नोलॉजियों पर आधारित फ्रीडम 250 नामक प्रोग्राम का आयोजन किया. कई गोष्ठियां लगाई गई और चर्चाएं चली. इनके माध्यम से इस मुद्दे पर गौर किया गया कि किस प्रकार विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा को रूपांतरित कर सकते हैं और नौजवानों को भविष्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार कर सकते हैं. आज सऊदी अरब में हज का दिन है. सभी हाजी आज मैदान अरफात में जमा होकर इबादतें और दुआएं कर रहे हैं. इनमें 1506 मर्शन हाजी भी शामिल हैं जो इस्लाम का पांचवा फर्ज अदा कर रहे हैं. यौम अरफात हज की अदायगी में सबसे अहम मरहला माना जाता है जिसके मुकम्मल होने के बाद ही वहां गए हुए लोग हाजी कहलाए जाते हैं.

0: देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, उत्तरी भारत के कई इलाकों में भयानक गर्मी की लहर चली है। कई शहरों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों के लिए पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Raftar Vibes, Filmy Rides, RM2, Radio Musti.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: RM2,
2: रेडियो मस्ती।
1: चलिए सजना तू बेईमान के बाद ये ट्रिपी ट्रिपी सॉन्ग आपका फेवरेट, ये जो सॉन्ग है स्पेशल प्लेइंग फॉर दोस्त जो कि इस आफ्टरनून की वाइब को और भी पसंद कर रहेंगे, और यहाँ पर स्टैंड चांस टू विन अ प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर जोबिन नॉटिया लाइव कंसर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बस सिर्फ हमारे इस सवाल का जवाब देना है ऑन 549 and 1294 पर। बस बताइएगा कि जुबिन नौटियाल के जो जन्म हुआ था इन विच ईयर, यस साल, उनका जन्मदिन तो आप तो जानती है 14th of June को, लेकिन कौन से साल में हुए थे उनका जन्मदिन, एंड आपको सिर्फ साल बताना है ऑन दिस नंबर 549 and 1294 पर, और जीतिए हमारे साथ ये अमेजिंग प्लैटिनम टिकेट टू असिस्ट द लाइव कंसर्ट ऑफ जुबिन नौटियाल।

क्या बात है यहाँ पर नेहा कक्कर, बेनी दयाल और ब्रिजेश संदिलिया की आवाज में फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। से यहाँ मेरा ट्रिपी ट्रिपी, वैसे थोड़ी देर पहले हमने सवाल पूछा था जुबिन नौटियाल कि वो किस साल में पैदा हुए थे, एंड द राइट आंसर इज 1989 इन देहरादून, 14th of June 1989। His birthday and date. And हमारे साथ हमारे lucky winner है, उनका नाम है वंशिका सरवन. Congratulations, वंशिका जी. अजी क्या बात है, in this afternoon आप तो बड़े खुश हो रहे हैं. You stand the chance to win a platinum ticket to assist the spectacular Jubin Nautiyal live concert. Join the magical journey on Saturday 30th of May 2026 को आज from 8 PM onwards. And ये concert होने वाला है SBICCPI for an unforgettable evening with Jubin Nautiyal. The concert is proudly organized by Gravity Zero in collaboration with the ticketbox.mu. Book your tickets.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OM2,
2: रेडियो मस्ती।
3: अच्छा जी, ऑल द बेस्ट गुजार टू एच एंड एवरीबॉडी टर्निंग टू RM2 रेडियो मस्ती। साथ ही साथ जो हमारे साथ यूं ही अपना काम निपटा रहे हैं, वैसे ऑल द बेस्ट आल्सो गुजार टू ऑल दोस जो कि रास्ते पर है, बस यूं ही ट्रैफिक में फंसे हैं। एवरीडे द सेम स्टोरी, द सेम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन को फैसिनेशन में बदल दो, देखना क्या कमाल हो जाती है जिंदगी।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News, latest updates.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
4: चलिए म्यूजिक के साथ साथ एक नजर रहा और एक कदम डालते हैं हमारे स्पोर्ट्स की दुनिया में. हमारे साथ हाजिर है स्टूडियो में अरविंद जी. गुड आफ्टरनून टू यू.
5: गुड आफ्टरनून आपको. गुड आफ्टरनून लिसनर्स. वैसे कल मैंने सुना यू गॉट द आंसर राइट कि मॉरिशस आल्सो पार्टिसिपेटेड.
4: आपको क्या लगा?
5: ओके, इट वाज गुड.
4: बट थैंक्स टू यू.
5: चलो फुटबॉल को थोड़ा आराम देते हैं अभी के लिए. विल टॉक अबाउट फ्रेंच ओपन. फ्रेंच ओपन जहां पर इसी समय सबालेंका, अरीना सबालेंका ने अपना मैच जीता बुजास मानेरो के खिलाफ 6-4, 6-2. सो इजी एंट्री फॉर सबालेंका. और अभी मैच चल रहा है मेंस सिंगल में सिटसिपास और मुलर के बीच. पहला सेट सिटसिपास जीत चुका है 6-2. दूसरे सेट में 3-0 से आगे और रिटायर्ड एक्चुअली तो मुलर रिटायर हो गया. सिटसिपास जीत गया. और अभी थोड़ी देर बाद विल हैव गोफ वर्सेस टाउनसेन और यानिक सिना खेलेगा ताबू के खिलाफ. अन्य मैचों में मेडवेदेव की हार हुई. वॉल्टन ने उसे हराया. आज ओसाका भी मैदान में उतरेगा. उसका मुकाबला सिगरमन से है और उग आलियासी में अगेंस्ट अल्टमायर. क्वामे ने सिलिच को हराया. कुप्रीवा अभी जीत रही हैं सभी मैच. सो विल अपडेट यू कल सुबह इन सब पर. आपको इन सभी मैचों के रिजल्ट्स देंगे ज़रूर. इधर फुटबॉल से दूर भाग ही नहीं सकते. वन एवर यू टॉक ऑफ स्पोर्ट्स फुटबॉल आ ही जाता है. सो अभी कुछ एक दो प्रेडिक्शन होने लगे हैं और यहाँ पर डच टीम कैन विन द वर्ल्ड कप ये बोल रहा है जर्मन इकोनॉमिस्ट योआकिम क्लेमा, जो अपने फोरकास्ट के लिए एकदम 100% रिकॉर्ड देता है सिंस 2014. उसके लिए नेदरलैंड्स फेवरेट हैं इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए. और बाकी टीमें भी अब अपने स्क्वाड का ऐलान करने लगे हैं. पर कल फुटबॉल को देखें तो विल हैव एन इम्पोर्टेंट फिक्स्चर. ये होगा सो वेंसडे. दैट विल बी क्रिस्टल पैलेस अगेंस्ट रायो वालेकानो. ये है यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग का मैच. और अगर क्रिस्टल पैलेस ये मैच जीतता है सो देर क्वालिफाई फॉर यूरोप, यानी यूरोपा कप के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे. और आज कुछ इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच. मोरक्को बुरुंडी, नाइजीरिया जिम्बाब्वे. अंडर 17 चैंपियनशिप में इसी समय इटली और फ्रांस के बीच 0-0. बाकी चैंपियनशिप में फ्रेंच प्ले ऑफ के लिए आज सेंट एटियन का मुकाबला निस से होगा. और कल यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के अलावा काफी इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल फ्रेंडलीज भी खेले जाएंगे और बाकी टीमों का ऐलान भी होता रहेगा. जहां तक लिवरपूल का सवाल है, एवरीवन आस्किंग द क्वेश्चन आने स्लोत रहेगा या जाएगा, लेकिन एज इट इज लगता है कि मैनेजमेंट का सपोर्ट है आने स्लोत के लिए, जो टीम को बदलना चाहता है. लेकिन कैसे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा और परहैप्स वर्ल्ड कप के बाद भी पता चलेगा. क्रिकेट इंटरेस्टिंग मोड पर आ गए हैं. आज एक टीम क्वालिफाई होगी फॉर द फाइनल. ये हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच. स्टार्टिंग 6 PM. और ये मैच जो जीतेगा दे विल क्वालिफाई डायरेक्टली फॉर द फाइनल. और जो टीम हारेगी वो इंतज़ार करेगी कि जो दूसरा जो एलिमिनेटर है राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच. सनराइजर्स हैदराबाद एक्चुअली. हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स, उनके बीच जो जीतेगा उसका मुकाबला आज की लूजिंग टीम से है. तब होगा फाइनल इसी संडे को. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड.
4: Well, thank you so much, Arvind ji. Here we go. Let's have a glimpse of the World Cup. Here we go.
6: Get ready for the biggest World Cup ever.
7: 2026 FIFA World Cup.
6: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. Radio

0: टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
1: चलो वर्ल्ड कप की ओर। एक के बाद एक वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड फाइनलाइज किए जा रहे हैं। इधर वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट टीमों में से एक स्पेन की टीम तैयार है। लामिन यामाल जो इन दिनों घायल हैं स्क्वाड में हैं, पर पहली बार के लिए रियल मैड्रिड का एक भी खिलाड़ी लाहौरा में नहीं। प्रीमियर लीग से 7 खिलाड़ी हैं, माइकल मेरिनो, डेविड राया, जुबी मेंडी, पेड्रो पोरो, मार्क कुकुरेला, रोड्री और येरेमी पिनो। कोलंबिया की टीम भी तैयार है, कप्तान रामेस रोड्रिगेज टीम में है, साथ में है लुइस डियाज। ग्रुप ए से ग्रुप एल मतलब 12 ग्रुप, हर ग्रुप में 4 टीमें, टोटल एक्सपैंडेड 48 टीम्स। ग्रुप प्रेजेंटेशन पूरा हुआ। आज वर्ल्ड कप के कुछ खास फैक्ट्स इस पर चर्चा करेंगे। 1930 में फर्स्ट टूर्नामेंट उरुग्वे में केवल 13 टीमों ने भाग लिया, होस्ट टीम उरुग्वे चैंपियन बनी थी। फिर 24 साल बाद 1954 में स्विट्जरलैंड में पहली बार के लिए टीवी ब्रॉडकास्ट। 1982 में इस बार 24 टीमें 24 टीम्स इनमें भाग ले पाए। 1998 में 32 टीम्स। 2022 में मिडल ईस्ट में पहली बार के लिए कतर होस्ट रहा और 2026 में पहली बार 3 देशों में वर्ल्ड कप, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, और पहली बार 48 टीम फॉर्मेट। कल वर्ल्ड कप विनर्स पर चर्चा करेंगे। सो दैट वाज रोड टू वर्ल्ड कप। चलो वर्ल्ड कप की ओर।
0: FIFA World Cup 2026 11 जून से 19 जुलाई। Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: नशा बटोर के रात की झोली में डालना ये तो हमारा काम है। 5:15 हुए हैं अब जुड़े आरएमटू रेडियो मस्ती के साथ। तो चलिए सवाल ये रहा टू विन। ऑफ कोर्स ये जो गाना है इन द वॉइस ऑफ जुबिन नौटियाल, जुबिन नौटियाल की ढेर सारी बातें हो रही है आजकल, क्योंकि एक जो कंसर्ट होने वाला है आज हम बता देंगे, ये 30th of May 2026 को होने वाला है और आपके लिए ये प्लैटिनम टिकट है टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर जुबिन नौटियाल लाइव कंसर्ट। सवाल ये रहा, आपको सिर्फ बताना है कि ये जो सॉन्ग है जो चल रहा है आसान बना देती हूँ सवाल को, आपको बताना है कि किस मूवी से लिया गया है। जी बताएगा खुशियां बटोर लो सेकंड फ्रॉम व्हिच मूवी, बताइएगा ऑन दिस नंबर 5499194 पर और जीतिए हमारे साथ ये प्लैटिनम टिकट। ऑल द बेस्ट।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
0: OMG मस्त होकर आराम करके आप एंजॉय कर लो हमारे साथ, भूलिएगा मत, बताएगा खुशियां बटोर लो फ्रॉम व्हिच मूवी विद द फुल नेम एंड एड्रेस ऑन दिस नंबर। ऑल द बेस्ट 5499 1294 पर।

0: हुआ बुरा हाल है माही। वैसे यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने पूजा से सवाल किया, बता ही दो कि खुशियां बटोर लो फ्रॉम व्हिच मूवी वाज टेकन फ्रॉम, एंड द राइट आंसर इज शैतान। हमारे साथ हमारे लकी विनर है, कौन बनी है विजेता, उनका नाम है प्रीतिका चौखुरी। कंग्रेचुलेशंस जी। अरे यस, यू प्लेड विद अस एंड दिस इज द राइट आंसर। यू ऑन वन प्लैटिनम टिकट टू अस इज द स्पेक्टेकुलर जुबिन नौटियाल लाइव कंसर्ट। जॉइन द मैजिक म्यूजिकल जर्नी ऑन सैटरडे 30th of May 2026 को रात्रि के 8 बजे। यस, एट SBI CCPI फॉर एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद जुबिन नौटियाल। द कंसर्ट इज प्राउडली ऑर्गेनाइज बाई ग्रेविटी जीरो इन कोलैबोरेशन विद ticketbox.mu। बुक योर टिकट्स नाउ ऑन www.ticketbox.mu एंड फॉर रिजर्वेशन प्लीज call on the hotline 214-6464। Okay ji, have fun, enjoy kijiyega। वैसे जुबिन के बहुत सारे गाने हैं और वैसे कुछ beautiful beautiful upbeat songs are taken from movie Raabta Karunga for you, और उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे और जानेंगे जरूर कि वो कहाँ पैदा हुए थे, क्या कर रहे थे, कैसे बड़े हुए थे, क्या क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उनको आते हैं। एंड यहाँ पर एक वारिया आ रहे हैं आपके लिए आफ्टर एक छोटा सा ब्रेक, देन वी विल बी बैक विद द सॉन्ग। स्टे वेल कनेक्टेड।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती।
1: Kamla, elle a senti bon coup de toi là. Qui? Tu baignes dans parfum? Tu l'auto aussi baignes dans parfum? Tu sale débain si baignes dans parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandale à le kick? Puis toi l'im sandale 24-7 toi?
3: Celle-là, tu peux en trouver ça. Fait que t'es beau que celle-là.
1: À le kick gel air fresh no pocket size? Astier, me comprends. Tu mets air fresh no dans ton postement sport tout.
3: Vrai même, tu bien comique toi, hein? Allez, essaye tout. Allo Kick, peine à ce deuxième sans bosser.
2: Allo Kick, freshness anytime, anywhere.
1: RM2
2: Radio Musty.

0: Nautiyal and the voice of Jubin Nautiyal उनके कंसर्ट होने वाले हैं 30th of May at SBICC पर रात्रि के 8 बजे। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, वैसे जुबिन नौटियाल के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ हम बताना चाहते हैं। जुबिन नौटियाल इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर प्लेबैक सिंगर्स, नोन फॉर हिज सोलफुल रोमांटिक सॉन्ग्स एंड इमोशनल वॉइस। वैसे साथ ही साथ आप हम ऐड करना चाहते हैं कि यू नो उनको बचपन से ही क्लासिकल म्यूजिक में दिलचस्पी थी, तब उन्होंने बस क्लासिकल सिंगिंग का ये जो लेसन लिया एंड वाइल डूइंग दैट लर्निंग इंस्ट्रूमेंट भी आ गया उसके जो शेड्यूल में, जैसे कि गिटार, पियानो, हारमोनियम एंड ड्रम्स। एंड जुबिन इज नाउ एडमायर्ड फॉर ब्लेंडिंग रोमांस, सैडनेस एंड मेलोडी इनटू हिज सिंगिंग स्टाइल, मेकिंग हिम अ फेवरेट अमंग म्यूजिक लवर्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। ओवर द इयर्स ही हैज वन सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग IIFA अवार्ड फॉर बेस्ट मेल playback singer for Atalambia. Today, he's celebrated worldwide for his live performances and chart-topping songs, just in Bollywood songs, captivating audiences with his heartfelt voice and stage presence. Abhi ke liye, the next one goes out to, actually so many people tuning to us right now, everybody tuning to us. Thank you so much for your fidelity and your support. And this one goes out to Govindu Raju.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides.
2: Radio Mastu.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती।
3: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
1: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
3: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: OMG,
4: रेडियो मस्ती।
2: Well, thank you so much for being connected to RM2 Radio. Musty, ladies and gentlemen, वैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी जो लंचिंग कैंपेन ऑफ MBC प्ले शुरू हो चुका है, एंड MBC इन कोलैबोरेशन विद मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड इज ऑर्गेनाइजिंग

नेशनवाइड रेडियो कंपटीशन जहां पर हम हमारे लिसनर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू प्ले विद अस हियर राइट अवे राइट नाउ हर शाम को 5:30 बजे फॉर यू टू बी एबल टू बी क्वालिफाइड फॉर द लास्ट ड्रॉ जो कि होने वाला है ऑन द 29th of May को. जी हाँ, आप बन सकते हैं द विजेता फॉर द एक्सक्लूसिव हेलीकॉप्टर.

0: द ड्रॉ आपको बस डाउनलोड करना पड़ेगा एमबीसी प्ले 1.0 द न्यू वर्शन. एक एमबीसी प्ले अकाउंट क्रिएट करना है और सेंड स्क्रीनशॉट वीआ व्हाट्सएप, यानी कि हमारे व्हाट्सएप पर एक स्क्रीनशॉट भेजिएगा जहां पर है योर ओटीटी एमबीसी ओटीटी और आपका नाम 1549 and 1294. अभी के लिए हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो कि आज के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं और आज एक ही इंसान क्वालिफाइड होगा फॉर द फाइनल ड्रॉ जो कि लगने वाला है ऑन 29th of May. और हम डायरेक्टली बात करते हैं हमारे चोजन पीपल से. यस हमारे मेहमान है राजश्री. हेलो जी राजश्री.
1: हेलो जी नमस्ते.
0: नमस्ते वेलकम ऑन RM2.
1: थैंक यू.
0: आप स्ट्रेस में आ गई, आप बड़े प्यार से बात कर रहे थे. लोग डर क्यों जाते हैं हमारे साथ? कोई बात नहीं राजश्री, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन?
1: जी.
0: अच्छा जी, आप अकेली नहीं हो, हम बात करेंगे विद शालिनी. हेलो शालिनी जी.
2: Hello,
0: Manishma. How are you?
2: I'm good. How are you?
0: I'm good too. Welcome on RM2 Radio Masti. And time to play. And आपको याद दिला दूं, हमने आप दोनों से ऑफ एयर भी बात की है. यहाँ पर एक ही सवाल. क्या हुआ राजश्री, आप भी ऑन एयर हो? सारी बात हम सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बात करते रहो. शालिनी जी, अच्छा आपका बेटा है ये? बेटो या लाइक सन ऑलवेज लाइक आफ्टर द मम्मा. दो मिनट उसको कहो, दो मिनट खेल लो एंड यू विल बी क्वालिफाइड आल्सो. आई डोंट नो एंड ऑल द बेस्ट गोज आउट टू बोथ ऑफ यू. एक ही सवाल करेंगे हम आप दोनों से एक ही सवाल करेंगे और जो सबसे जल्दी जवाब देगी वो बन जाएगी ये क्वालिफाइड पर्सन, जो आप ऑटोमेटिकली फॉर द ड्रॉ के लिए क्वालिफाइड रहेंगी फॉर द 29th of May. ओके ऑल द बेस्ट गुजार टू यू. सवाल ये रहा दोनों को एंड जल्दी से जवाब देना है. 3, 2, 1. कैन लिसनर्स एक्सेस एमबीसी रेडियो स्टेशन? कैन लिसनर्स एक्सेस एमबीसी रेडियो स्टेशंस ऑन एमबीसी प्ले? हाँ या ना में जवाब दीजिए. यस यस यस यस. मिल गया मुझे, मिल गया. शालिनी जी आप थोड़ी सी देरी में आपने जवाब दी. आपने जवाब नहीं दिया शालिनी जी, आप जानते हो ना.
2: मैंने दिया, मैंने बोला ये.
0: हाँ आपने बोला, लेकिन राज ने थोड़ी एक माइक्रो सेकंड आपसे जल्दी दे दिया जवाब. थैंक यू सो मच शालिनी फॉर पार्टिसिपेटिंग दो. हैव अ वंडरफुल डे. वैसे शालिनी जी हेलो.
2: यस
0: एक डेडिकेशन आप कर सकते हैं, हम आपको सुनेंगे, आप बताइए. थैंक यू सो मच शालिनी जी. थैंक यू, बाय बाय. वैसे राजश्री जी कंग्रेचुलेशन. एक्चुअली राजश्री जी जी आप बने हैं द वन हु विल पार्टिसिपेट इन द लकी ड्रॉ, द फाइनल ड्रॉ, और उसके लिए हम आपको कहेंगे ऑल द बेस्ट. आप हमेशा सचेत रहे, बिकॉज एनी टाइम वी कैन कॉल यू इफ यू हैव बीन सिलेक्टेड आफ्टर द ड्रॉ. ओके राजश्री जी, ऑल द बेस्ट फॉर 29th.
2: ओके थैंक यू,
0: बाय बाय बाय बाय. एक डेडिकेशन आप कर सकते हैं, हम सुनेंगे.
1: एक प्यारा सा गाना रक्षाबन फैमिली के लिए,
0: रक्षा
1: मेरे बेटे के लिए.
0: हाँ बेटे का नाम बता दो राजश्री जी.
1: आहान.
0: मम्मी को तंग मकड़ो. थैंक यू सो मच राजश्री जी, बाय बाय.
1: आपका भी थैंक यू वेरी मच.
0: थैंक यू, यू वेलकम, बाय बाय बाय. तो बनी है हमारी जो शॉर्टलिस्टेड पर्सन फॉर द लकी ड्रॉ आज के लिए राजश्री जी. कंग्रेचुलेशंस को जाप्तू राजश्री जी. जैसे कि आप तो जानते ही है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एमबीसी प्ले एप्लीकेशन और रजिस्टर करो, क्रिएट एन अकाउंट एंड सेंड मी दी एमबीसी ओटीटी विद योर नेम एंड ऑन 549 and 1294 पर. और बनिए आज कल परसों फॉर द lucky draw ke liye finalist. Thank you so much, have a wonderful afternoon.
3: Raftaar Vibes, filmy rides,
4: RM2
3: Radio Masti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।
5: Yeah.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी के लिए बढ़ते हैं विद आवर फैशन टिप। वैसे कहते भी हैं कि फॉर्मल वेयर को स्टाइलिश बनाने के लिए लेस इज मोर रूल फॉलो कीजिएगा। अगर आप फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहते हैं, वेरी गुड टू स्ट्रक्चर्ड हैंडबैग और क्लीन हेयर स्टाइल आपके लुक को और भी इंस्टेंटली पॉलिश बना देते हैं। जी यू वॉन्ट बिलीव कि यार ये जो न्यूड मेकअप होते हैं तो सॉफ्ट लिपस्टिक शेड्स फॉर्मल आउटफिट्स के साथ बहुत ही एलिगेंट लगता है। और याद रखिएगा कि कंफर्टेबल शूज चूज करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जहाँ से कि आप चल रहे हो आपके चलने के ढंग से ही आपकी कॉन्फिडेंस तब ही पता चल जाती है। तो कॉन्फिडेंस लेवल और कंफर्टेबल कंफर्ट लेवल को भी और भी आप बढ़ा सकते हैं विद व्हाट यू वेयरिंग, योर शूज एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू रेडियो मस्ती। दैट वाज मनीष वाडिया ऑफ फैशन टिप्स।
3: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
4: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
5: आरएम2
4: रेडियो मस्ती।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती।
1: बजकर 52 मिनट हुए हैं, आप जुड़े हैं इनटू रेडियो मस्ती के साथ, और ऐसे प्यार भरे गाने, रोमांटिक सॉन्ग्स और बीट सॉन्ग्स के साथ साथ हम बढ़ेंगे बस करीबन 8 मिनट में टूवर्ड्स द समाचार बुलेटिन, एंड हमारी मुलाकात फिर से हो जाएगी 6:30 बजे के बाद। ओके जी, अच्छा, यू हैव फन, एंजॉय कीजिएगा अपने ड्राइव को, ऑल द बेस्ट गोज़ आउट टू ऑल दोज़ स्टिल वर्किंग।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2 रेडियो मस्ती। जो विनोद याल और तुलसी कुमार की आवाज में तुम मिल गया श्रीकांत मूवी से लिया गया ये गाना स्पेशली जस्ट टू टेल यू यार यू हैव टू बुक योर टिकट्स ऑन www.ticketbox.mu एंड दिस इज फॉर एक्चुअली वी कैन से इट लेट रिजर्वेशन क्योंकि ये जो कंसर्ट होने वाला है ऑन द 30th ऑफ मे सैटरडे को होने वाला है रात्रि के 8 बजे ऑनवर्ड्स एट SBICC भाई डोंट मिस द अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद जो विनोद याल द कंसर्ट is proudly organized by Gravity Zero in collaboration with ticketbox.mu and hotline bhi hai 214-6464 214-6464 all the best

नमस्कार, सामकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा हाल में की रेट बढ़ाकर 4.45% करने का फैसला नियमित रूप से बढ़ रहे इन्फ्लेशन के कारण लिया गया है। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में कही। राष्ट्रसभा में ही आज प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा 83 बिलियन रुपए की छपाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बैंक ऑफ मॉरिशस ने सेंट्रल CID में एक शिकायत दर्ज करवाई है। पिछले शुक्रवार को मौदालबिया सरकारी पाठशाला में फुट एंड माउथ डिजीज के कुछ मामलों का पता चलने पर स्कूल बंद किया गया था। वहां जरूरी डिसइंफेक्शन कार्यवाही चलाई गई, जिसके बाद कल सुचारू रूप से कक्षाएं जारी रखी गईं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरी भारत के कई इलाकों में भयानक गर्मी की लहर चली। आने वाले दिनों के लिए पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज टी ब्रेक के बाद राष्ट्रीय सभा में अपने फैसले में सभा की स्पीकर शेरिन ओमेरोदी जीफा ने सदस्यों को संसदीय प्रश्न तैयार करते समय स्थायी आदेशों का कड़ाई से पालन करने की याद दिलाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रश्न में तर्क, राय, संकेत, प्रेस के उदाहरण या आपत्तिजनक व्यंग्यात्मक या काल्पनिक अभिव्यक्तियां नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्टीकरण सांसद रोना बेरोंजे द्वारा श्रम मंत्री गजाउतीम से पूछे गए एक प्रश्न के बाद आया। आज राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश किया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य मॉरिशस गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन नियुक्त करने का अधिकार देना है, जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण तथा लोकतंत्र और संस्थानों को मजबूत करने जैसे संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने और उन पर अपनी सिफारिशें देने के लिए

0: उत्तरदायी होगा। बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा हाल में की रेट बढ़ाकर 4.75% करने का फैसला नियमित रूप से बढ़ रहे इन्फ्लेशन के कारण लिया गया है। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व सरकार द्वारा 2019 से 2024 के बीच बाजार में 97 बिलियन रुपए की रकम डाले जाने और MIC की फाइनेंसिंग के लिए 81 बिलियन रुपए खर्च किए जाने के कारण उस अवधि के दौरान मॉरिशन रुपए के भाव में 46% की गिरावट आई थी। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के प्रभावों को ध्यान में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था और परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अत्यधिक इन्फ्लेशन से बचने के लिए सावधान रहने के महत्व पर बल दिया। राष्ट्रीय सभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा 83 बिलियन रुपए की छपाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बैंक ऑफ मॉरिशस ने सेंट्रल CID में शिकायत दर्ज करवाई है। PMQD सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने डॉक्टर रंगनाथन पदायाची के बयानों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण कहा। वित्त मंत्रालय और GRA अवैध सट्टेबाजी से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचे पर अध्ययन करने और सिफारिशें देने के लिए एक सलाहकार की सेवाएं लेने पर विचार कर रहे हैं। ये बात आज राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री के जवाब में सामने आई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम सांसद रोशन जमन के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जो बेटिंग टैक्स से संबंधित था। उन्होंने जानना चाहा था कि क्या टैक्स हटाने पर अवैध सट्टेबाजी और पब्लिक रेवेन्यू पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है या ऐसा करने का विचार है। जवाब में प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के अलावा घुड़दौड़ पर 2014 की पैरी रिपोर्ट का जिक्र किया और याद दिलाया कि सरकार ने घुड़दौड़ के मामले पर काम करने के लिए सन 2024 के आखिर से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था जिसके कारण GRA एक्ट में संशोधन किए गए। PMQD सत्र के दौरान ही डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने गंगा तालाब की पवित्रता संरक्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया। इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक इलेक्ट्रल कॉलेज की स्थापना का भी जिक्र किया।
1: I've also requested the Minister of Arts and Culture to develop an appropriate guidelines to establish a comprehensive framework for the management, protection and preservation of the sanctity of Ganga Talao. The House will appreciate that Mauritius being a secular state, access to a spiritual sanctuary cannot be restricted. At the same time, it is imperative that all visitors comply with established practices, that is regarding behavior, dress code, etc., in order to preserve the sanctity as well as uphold the cultural and religious significance of such sites. In this respect, I'm informed by the Ministry of Tourism that it is collaborating with the Ministry of Arts and Culture on sanitization campaigns for both local and international visitors to these spiritual sites.
0: आज सऊदी अरब में हज का दिन है। सभी हाजी आज मैदान अरफात में जमा होकर इबादतें और दुआएं कर रहे हैं। इनमें 1506 मॉरिशन हाजी भी शामिल हैं जो इस्लाम का 5वां फ़र्ज अदा कर रहे हैं। यौम अरफात हज की अदायगी में सबसे अहम मरहला माना जाता है जिसके मुकम्मल होने के बाद ही वहां गए हुए लोग हाजी कहलाए जाते हैं। ये विशेष रिपोर्ट सुमेरा अकबर अली के साथ।
2: सभी लबों पर तलबिया है, इन लफ्जों से मुराद है मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। 50 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी के बावजूद हजारों किलोमीटर तय करके आखिरकार ये ईमान वाले पहुँचे मैदानी अरफात में, वो भी रब्बे जलील के फरमान पर। 2 मिलियन से जायद हाजियों में हमारे 1506 हमवतन हैं जिन्होंने इस्लामी कैलेंडर के 9 जिलहिज्जा के दिन यहाँ हाजिरी दी है। इसे यौमे अरफात कहा जाता है।

0: ही हज का अहम तरीन मरहला है। कोहे अराफात पर ही खुदा के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत के लिए आखिरी खुतबा दिया था। आज 1400 से ज्यादा सालों के बाद भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए मुसलमान उनके सिखाए हुए रास्तों पर चलकर दीन इस्लाम के लिए अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। सभी हाजियों ने इबादतों, दुआए मगफिरत और शुक्र में एक एक लम्हा गुजारा। हुज्जाज के लिए ये पल हमेशा नायाब रहेंगे।
1: Depuis bien longtemps, puis attendre pour gagner sa invitation là, mais Allah accepte nos doigts et nous passer un beau moment ici sans Arafat, peine Hajj.
2: Alhamdulillah, tout nous ban rite, peut passe bien et nous avons encore un rite qui nous restait pour faire et nous avons l'espoir qu'Allah accepte nos Hajj.
3: Il y a une place que Allah subhanahu wa taala lui fait. Son rahmat, son bénédiction manifestée le ban haji.
4: C'est un feeling extraordinaire qui surmonte toutes difficultés qu'il a et pas capable d'écrire sa feeling qu'il a dans le cœur là quand il fait hajj pour Allah et pour ce love only pour Zisli et nous reçoit sallallahu alayhi wa sallam ce blessing.
5: Ça c'est un grand sens qui nous gagne. Allah fin appelle nous non malgré tout ben difficulté, tout ben salaire qui est là ici. C'est un autre feeling, nous n'avons pas senti rien. Alhamdulillah, Allah fait nous donne nous encore plus courage, donne encore les autres dimoun l'occasion pour venir faire Hajj, Inch'Allah. Et Allah fait nous Hajj Kaboul, Inch'Allah.
6: Merci de nous à Arafat. Vous dites tout ce que nous avons dit.
7: Moi, mon maman et mon Michel, nous sommes restés arrivés là. Et aujourd'hui, nous sommes bien émus que nous puissions rester témoins ce jour-là.
8: C'est l'aboutissement d'un sacrifice pour un dimoun, d'un la vie. D'attente et nous devons au niveau du ICC pour faire tout ce qui est possible pour qu'en termes de logistique, les pèlerins passent un jour dans les meilleures conditions possibles.
9: Aujourd'hui, nous là, nous devons faire ce qui tout déroule dans l'ordre de satisfaction des pèlerins mauriciens.
0: अब गुरूब आफ्ताब के बाद सभी हुज्जाज मुज़दलिफा शहर जा रहे हैं। रईस ज़ादे हों या मुलाजमीन हों, सब एक दूसरे के बगल में आज खुले आसमान में वहाँ शब गुजारेंगे। सबको हज मुबारक हो।
10: थोड़ी देर पहले हम इस पर चर्चा कर रहे थे। बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा हाल में की रेट बढ़ाकर 4.75% करने का फैसला नियमित रूप से बढ़ रहे इन्फ्लेशन के कारण लिया गया है। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता की PNQ के जवाब में कही। माधवी जगन्नाथ, यशना मिश्रा।
11: In regard to the decision taken by the Monetary Policy Committee of the Bank of
12: हाल में बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा रेपो रेट में की गई बढ़ोतरी इस मंगलवार राष्ट्रीय सभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का केंद्र रही। प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा कि यह फैसला 2019 से 2024 के बीच पूर्व शासन द्वारा अर्थव्यवस्था में कई बिलियन रुपए डाले जाने से उत्पन्न लगातार महंगाई तथा मध्य पूर्व संघर्ष के प्रभावों के कारण लिया गया।
11: The bank transferred a total amount of 97 billion rupees to the government during the period 2019.
12: बैंक ने कुल 97 बिलियन रुपए 2019 से 2024 के बीच सरकार को ट्रांसफर किया। इसके अतिरिक्त 3.5 बिलियन रुपए नेशनल प्रॉपर्टी फंड को 2019 से पहले दिए गए। इसके साथ ही मॉरिशस इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को फाइनेंस करने के लिए 81 बिलियन रुपए प्रिंट किया गया। इन सभी से लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी, जिससे इन्फ्लेशन दर बहुत ज्यादा बढ़ गया और रुपए का मोल कम हुआ। 2014 से 2024 के बीच US डॉलर की तुलना में रुपए का मोल 46% से कम हुआ।
11: Depreciated by 46% against the US dollars. 0.5 billion remittances.
12: प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन दर, अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों, फ्रेट और परिवहन कीमतों में बढ़ोतरी और एक्सचेंज रेट के दबाव को ध्यान में रखा है। दामों में स्थिरता बनाए रखने और इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के वास्ते ये जरूरी था कि रेट को 25 बेसिक अंकों से बढ़ाने का निर्णय हाल की भू राजनीतिक स्थिति का मैक्रो इकोनॉमी पर प्रभाव को ध्यान में रखकर लिया गया। जहां तक की रेट में बढ़ोतरी का परिवारों पर प्रभाव है,

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर है।
1: इफ वी अस्यूम फॉर अ मोमेंट दैट अ हाउसहोल्ड हैज अ लोन ऑफ से 500,000 रुपीस,
0: मान ले कि एक घर में 5,00,000 का कर्ज है, 25 बेसिक अंकों की बढ़ोतरी बैंक के सूद दर पर दिखेगा, 1,250 रुपए पर आनम की बढ़ोतरी। कर्जदार व्यवसायों के लिए भी यही रेट है।
1: In the amount of interest rate repayments, the same increase would be applicable to corporates who have loans.
0: अर्थव्यवस्था पर रेपो रेट बढ़ाने के प्रभाव के बारे में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया कि इससे मुद्रा स्फीति के दबाव को कम करने, मॉरिशस की मुद्रा रुपए को समर्थित करने और अनियंत्रित महंगाई को रोकने में मदद मिलेगी। हमें अर्थनीति पर इन्फ्लेशन के प्रभावों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे आदि में इन्फ्लेशन रेट 1,000% प्रति मास से ज्यादा दर्ज हो चुका है। जोले जोंगा ने कंट्रीब्यूशन सोशियल जेनेरालिजे को लेकर अतिरिक्त प्रश्न पूछे।
1: विल द होनरेबल प्राइम मिनिस्टर रिकंसीडर द फेज्ड विथड्रॉवल ऑफ सीएसजी लिंक अलाउंसेस एंड इंस्टेड रीइंस्टेट और रिकैलिब्रेट these supports, particularly for those households not on the social register of Mauritius?
2: If I could laugh, I would laugh because they introduced, yes. Yes. You introduced it. Now you want us to take it out immediately. But why did you introduce it in the first place? And allow things to go back to what it was before? No. The answer is no.
3: How much is inflation estimated to fall now with this increase in repo rate, if we can have the estimate to see if that is going to have any impact at all on the economy?
2: What is more important, Madam Speaker, is not the inflation rate, the expectation of inflation rate. That is what drives an economy, what people expect the inflation rate to be. We have to wait and see.
4: और राष्ट्रसभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा 83 बिलियन रुपए की छपाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बैंक ऑफ मॉरिशस ने सेंट्रल सीआईडी में शिकायत दर्ज करवाई है। मीगान पुना पनाकेन, करुणा लालू।
5: यस ऑनरेबल इटवारिया।
6: सांसद इटवारिया के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2014 में सार्वजनिक ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 58.8% था, जबकि पूर्व सरकार के कार्यकाल में ये दिसंबर 2024 तक बढ़कर 87.7% तक पहुंच गया, यानी इसमें 370 बिलियन रुपए की वृद्धि हुई। बजट 2025-2026 के अनुमानों के अनुसार जून के अंत तक सार्वजनिक ऋण 679.7 बिलियन रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि कई कारणों से ये अनुमान से अधिक हो सकता है, इनमें शागुस ऑक्यूपेलागुस संधि के अनुमोदन में देरी, मध्य पूर्व का संघर्ष तथा सरकारी आय में कमी जैसे कारण शामिल हैं।
1: गवर्नमेंट इज फर्मली कमिटेड।
6: सरकार बजट घाटे को कम करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण को अधिक टिकाऊ और स्थिर मार्ग पर लाने के लिए ठोस राजकोषीय सुधारों और बेहतर सुशासन के माध्यम से दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध हैं। इसी संदर्भ में जैसा कि सरकारी कार्यक्रम और 2025-2026 के बजट भाषण में घोषित किया गया था, एक फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट प्रस्तुत किया जाएगा जिसका उद्देश्य नियम आधारित मजबूत राजकोषीय ढांचा स्थापित करना, सार्वजनिक वित्त में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की सुदृढ़ प्रथाओं को और मजबूत करना है, ताकि पूर्ववर्ती सरकार के समय पाई गई संकट स्थिति को रोका जा सके। एक अतिरिक्त प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री ने आईएमएफ के साथ हालिया परामर्श बैठकों का भी उल्लेख किया। आईएमएफ ने आर्टिकल 4 रिपोर्ट आम की है, वे हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बहुत संतुष्ट हैं ताकि कर्ज को बढ़ने से रोका जा सके। सांसद रामदास के प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस ने कुल 181.5 बिलियन रुपए की मुद्रा छापी थी, इसका एक हिस्सा सरकार को दिया गया जबकि दूसरा एमआईसी को वित्त पोषित करने में इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी कहा कि पूर्व वित्त मंत्री द्वारा बैंक ऑफ मॉरिशस पर

0: 80 बिलियन रुपए छापने के आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बैंक ने इन आरोपों का खंडन करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें एक सार्वजनिक नोटिस भी शामिल हैं। मुझे बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि अपनी कानूनी टीम से परामर्श करने के बाद उसने 16 मई 2026 को पूर्व वित्त मंत्री द्वारा प्रसारित इस अत्यंत गंभीर झूठी और दुर्भावनापूर्ण जानकारी के संबंध में सेंट्रल सीआईडी के समक्ष एक बयान दर्ज कराया है। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में हमारी प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जो निवेशकों के विश्वास को मजबूत करती है और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखती है। केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा जनता के मन में संदेह उत्पन्न करना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। हम किसी भी निराधार आरोप या भ्रामक जानकारी को सहन नहीं कर सकते और न ही करेंगे, जो हमारी संस्थाओं और वित्तीय प्रणाली में विश्वास को कमजोर कर सकती है। सिल्वर बैंक के संबंध में प्रधानमंत्री ने बताया कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने बैंक को लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया की जांच के लिए पहले ही एक स्वतंत्र फर्म को फोरेंसिक ऑडिट करने का जिम्मा सौंप दिया है। साथ ही बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता भी दी है।
1: पिछले शुक्रवार को मौदालबिया सरकारी पाठशाला में फुट एंड माउथ डिजीज के कुछ मामलों का पता चलने पर स्कूल बंद किया गया था। वहां जरूरी डिसइंफेक्शन कार्यवाही चलाई गई, जिसके बाद कल वहां सुचारू रूप से कक्षाएं जारी रखी गईं। एक ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरह से बदलाव की दौर से गुजर रहा है और एकता, प्रगति तथा सहयोग की ओर अग्रसर है। 1963 में की गई अफ्रीकन यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की याद में कल 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में स्टेट हाउस में एक औपचारिक समारोह लगाया गया। ये मौका रहा अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत सॉलिडारिटी और सहयोग बढ़ाने की मांग सामने रखने का। बालाक्लावा में कल नेशनल साइबर ड्रिल 2026 का आयोजन किया गया। ये पहल सर्ट एमयू की रही। दुनिया में बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ उच्च स्तर के साइबर हमले भी पेश आने लगे हैं। इस तरह के खतरों के खिलाफ प्रतिरक्षा मजबूत करने के मकसद से सार्वजनिक संस्थाएं इस अभ्यास के लिए जुटी, ताकि प्रतिक्रिया क्षमताएँ तेज की जा सके और समन्वय ज़्यादा मजबूत हो। इसके तहत देश के रणनीतिक डिजिटल बुनियादी ढांचों की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों पर गौर किया गया। अमेरिकी दूतावास ने राजीव गांधी साइंस सेंटर के सहयोग से पिछले हफ्ते अंतरिक्ष नवाचार और उभरती हुई नई टेक्नोलॉजियों पर आधारित फ्रीडम 2050 नामक प्रोग्राम का आयोजन किया। कई गतिविधियां लगाई गईं और चर्चाएं चली। इसके माध्यम से इस मुद्दे पर गौर किया गया कि किस प्रकार विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा को रूपांतरित कर सकते हैं और नौजवानों को भविष्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार कर सकते हैं। बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां कल एक बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ठोस शांति संधि तय होने की उम्मीद है, वहीं कल ही 40 दिनों के युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर नए हमले किए। उधर बेल्जियम में एक स्कूल मिनीबस और एक ट्रेन के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि उत्तरी भारत के कई इलाकों में भयानक गर्मी की लहर चली है। कई शहरों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। विस्तार विधिमासी बोरन के साथ।
2: सोमवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैन्य तनाव उस समय अचानक बढ़ गया जब अमेरिका ने ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के 2 जहाजों को डुबो दिया, जिनके बारे में उसका कहना था कि वे बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी विमानों पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी, जिसके बाद अमरीका ने बंदर अब्बास के पास मिसाइल लॉन्चर्स पर जवाबी हमले किए। इजरायली वायुसेना ने सोमवार देर रात लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें देश की पूर्वी बेगा घाटी भी शामिल है। ये कार्रवाई

0: इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने लेबनानी चरमपंथी गुट के खिलाफ हमलों को और तेज करने का संकल्प लिया था। पश्चिमी यूरोप में मंगलवार को भी अत्यधिक गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है जिससे ठीक एक दिन पहले फ्रांस और ब्रिटेन दोनों में मई महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था। इस भीषण गर्मी की वजह उत्तरी अफ्रीका से उठी गर्म हवाओं का एक तथाकथित हीट डोम है जो पश्चिमी यूरोप के ऊपर स्थिर हो गया है। इसके कारण तापमान उस स्तर पर पहुंच गया है जो आमतौर पर केवल कड़कड़ाती गर्मियों के बीच में ही देखने को मिलता है। उत्तरी और मध्य भारत में भीषण लू का प्रकोप जारी है जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को भी पार कर गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इस सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण पूर्वोत्तर में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है जबकि दक्षिणी तटों और आंतरिक इलाकों में स्थानीय स्तर पर भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी सोमवार को टोरंटो पहुंची जो संभवतः दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खेल आयोजन का प्रतीक है और जो दुनिया भर के लोगों को अपने पसंदीदा दल का उत्साहवर्धन करने के लिए एक साथ जुटने के लिए प्रेरित करता है। ट्रॉफी के अनावरण के ऐतिहासिक पल को अपने कैमरों में कैद करने के लिए वहां मौजूद सैकड़ों दर्शकों ने अपने सेलफोन निकाली।
1: आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की और सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज रात और कल सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। कल दोपहर बाद खासकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले कुछ इलाकों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:36 पर सूर्योदय, शाम को 5:38 पर सूर्यास्त होगा।

0: देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में शिव हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

श्लोक समाचार सुनिए। स्टीवेंसन स्ट्रीट सुयाक में, स्टीवेंसन स्ट्रीट सुयाक में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड श्री ज्ञानदेव गुरखान, श्री ज्ञानदेव गुरखान जो देव प्रोफेसर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ थी कल दिन के एक बजे, इनकी अर्थ थी कल दिन के एक बजे इनके मकान स्टीवेंसन स्ट्रीट सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। पेरिस फ्रांस में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड श्री महेश दुकारन, श्री महेश दुकारन जो पहले मोसेल मकुंज उपलैंड पापाए रहते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनका अंतिम संस्कार गुरुवार 28 मई को दिन के 1:30 बजे फ्रांस में ही किया जाएगा। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: Play. MBCRadio.tv. MBCRadio.tv.
1: RM2. Radio Musti.

0: आर एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
0: आर एम टू
2: रेडियो मस्ती।

0: भी कुछ नया है, वैसे नई नई बातें हो जाती हैं, दिल को परेशान कर देती हैं। दिलों की परेशानी को हटाने के लिए हम तो यहीं पर बैठे हैं। वैसे 6:30 के बाद आप तो जानती हैं रमाजी गानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। 6:33 हुए हैं। आगे जो सम रियली नाइस ट्रैक ट्यूनिंग फॉर यू, जस्ट टू से वार्म वेलकम, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी ट्यूनिंग टू आरएम2 रेडियो मस्ती।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स।

0: नागपाल की आवाज में, अमल मलिक की आवाज में, पहला नशा 2.0, दिस इज द न्यू वर्जन। बस यहाँ पर जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। दिस वन गोज आउट टू ऑल दोज म्यूजिक लवर्स और रोमांटिक सॉन्ग्स के बड़े प्यारे हैं।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।
0: गॉट हियर द नेक्स्ट वन एंड टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन, पंगा मूवी से दिल ने कहा द रेप्रीज वर्जन। अजीज कौर जब भी कोई भी गाना गाती है तो दिल को छू लेती है, उनकी आवाज में जो टेक्सचर होते हैं ना अलग ही है। वैसे जैसे गिल भी नवाते इस गाने को, आप एंजॉय कीजिएगा। ड्राइव सेफ।

ऐसे थोड़ी देर में जाने का समय भी हो चलेगा, जो बचा कुचा वक्त है हम बस प्यार प्यारे गानों के साथ भी आपका साथ निभाना चाहते हैं। अन्वेषा एंड साइकथ गोबलू की आवाज में आ जा रही परदेसी। मैं तो कब से बैठे हूँ पंथ निहार रही हूँ, क्या बात है। आपके मैसेजेस डेडिकेशंस उनके लिए, साथ के लिए देसी धन्यवाद।

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: मैंने भी सोचा नहीं था कि ऐसे मुलाकात में प्यार और भी बढ़ सकता है. वेल, शाम के 7:05 हो चुके हैं. विशिंग यू ऑल अ लवली गुड इवनिंग एंड अ वार्म वेलकम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 तक. हमेशा हम आपको याद दिलाते रहते हैं कि इट्स टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द कूल म्यूजिक गाने. लेकिन आपको ये भी याद दिलाना है कि कल इट्स बैक टू डेली रूटीन. तो जितना हो सके आप हर एक पल को समेटने की कोशिश कीजिए. कभी हम वेट करते हैं ना कि कोई बड़ा सा मोमेंट आए, कोई बड़ा सा इवेंट आए, तब हम मेमोरीज क्रिएट करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करते हैं. लेकिन आपको ये एहसास बिल्कुल करना है कि ज़िंदगी में यू डोंट नीड टू वेट फॉर द राइट मोमेंट, यू जस्ट नीड टू टेक दैट मोमेंट एंड मेक इट राइट. और जिस दिन आप इस बात का एहसास करेंगे, आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि हर पल कितना खूबसूरत होता है और हर पल में आप नई नई यादें क्रिएट कर सकते हैं. तो चलिए, यहाँ पर दिव्या का साथ है, आप लोगों का भी साथ है. तो चलिए इस म्यूजिकल कारवां को बहुत ही प्यार से आगे बढ़ाते रहेंगे. ऑफ कोर्स, आपके मैसेजेस के बिना ये शो तो अधूरा है. तो वेलकमिंग योर मैसेजेस एंड डेडिकेशंस ऑन 5499-1294. और साथ में लाइन खुली हुई है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपके फोन कॉल्स का इंतजार करेंगे ऑन 4028235. कट सौ दो खत्मा थोसाइक पर हम आपके फोन कॉल्स का इंतजार करेंगे.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: आर एम टू
1: रेडियो मस्ती
2: मैं ना रहा
3: जुबिन नौटियाल लाइव इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 30th ऑफ मे एट SBICC पाए विनर ऑफ द बेस्ट सिंगर अवार्ड ऑफ 2025. Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
0: RM2
1: Radio Musti.

प्यार हुआ चुपके से भाई, देखिए प्यार चुपके से ही होता है, लेकिन प्यार का इजहार और इकरार चुपके से नहीं होना चाहिए, बल्कि कहते हैं ना कि जब प्यार होता है तो खुल्लम खुला और खुलेआम इसका इजहार इकरार होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे जो आपने बहुत ही प्यार से भेजे हैं 5499-1294। किसी ने कहा है कि इफ़ यू कुड प्लीज़ प्ले द सॉन्ग तेरा चेहरा ना देखूं अगर, फ्रॉम द मूवी रामशास्त्र। That's a beautiful one. Thank you so much for requesting for this gana. हम देखेंगे कि वक्त नहीं इजाज़त दी तो ये गाना हम ज़रूर चलाएंगे for especially for your जान रवि। आपका पति इस वक्त शायद ड्राइव कर रही हैं तो उनको विश करेंगे हैव अ सेफ ट्रिप एंड हैव अ सेफ ड्राइव। थैंक यू फ्रॉम करिश, करिश साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। हाई रेडियो मस्ती फैंटास्टिक टीम, प्रकाश हियर अप्रिशिएटिंग द गुड वाइब्स फ्रॉम वैनकूवर। हे प्रकाश, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप कहते हैं अ बिग शाउट फॉर एवरीवन कनेक्टेड थ्रू योर रेडियो एंड एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक। टेक केयर एज वेल प्रकाश, एंड थैंक यू सो मच एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो मस्ती। एंड आई जस्ट होप दैट We'll keep hearing from you and उम्मीद करते हैं कि time to time आपके messages को हम receive करते रहेंगे। Hi, good evening everyone. Christy, आप हैं रविया द ख्याल से। A special message for हबी विक्रम। आप कहते हैं कि the right person always comes late and when they arrive, life becomes beautiful just like when I met you, honey. Next gana goes out to twins Kaushik Kaushal. That's a beautiful, beautiful message जो आपने हमारे listeners तक पहुंचाया है। ये आपने सही कहा। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी देर से शादी हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जल्दी शादी हो गई है, बट यू नेवर अर्ली, यू नेवर लेट, यू ऑलवेज ऑन टाइम। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, और वैसे कहते हैं ना कि वक्त से पहले

0: किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा, सो जस्ट कीप गोइंग विद द फ्लो. हाय दिव्या, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. गिरीश, आप डेडिकेट करना चाहते हैं अगला गाना इक्का राजा रानी, दिल को जरा सा थाम लेंगे और थोड़ा सा आराम भी देंगे कुमार सानू की आवाज़ के साथ. चलिए इस गाने को हम ज़रूर चलाने की कोशिश करेंगे. एंड नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, बट थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. कुछ कुछ आपके मैसेज हम तक ज़रूर पहुंच रहे हैं, तो चलिए आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे थोड़ी देर में. एंड डोंट फॉरगेट, लाइन खुली हुई है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो वेटिंग फॉर योर फोन कॉल्स ऑन 4028235 पर.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. सच ए ब्यूटिफुल रोमांटिक वन. जब प्यार होता है तो सिलसिला यही से शुरू होता है. बार बार उस इंसान का फ़ोटो देखते रहना और उससे बातें करना और शायद अपने फीलिंग्स को फ़ोटो के ज़रिए एक्सप्रेस करना. लेकिन फ़ोटो पर ही नहीं बल्कि आपको रियल में भी एक्सप्रेस करते रहना चाहिए, प्यार को जताना चाहिए. 7:32 already told those having the dinner right now. Once again, आपको विश करेंगे बना पिछी शुभाहर. ऐसे ही दिव्या का साथ देते रहे on the waves of radio मस्ती, जहां पर चल रहा है आपका evening lounge. And don't forget, line खुली हुई है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो. Waiting for your phone calls on 4 2 8 2 3 5. 4 2 8 2 3 5.

कहते हैं कि जब प्यार होता है तो कहते हैं कि बस वह इंसान बार बार हर चेहरे पर नजर आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो शायद आपको प्यार हो गया है। कभी कभी चेहरे के साथ साथ उनकी मौजूदगी का एहसास भी होने लग जाता है, और कभी कभी उनके ना होने पर जो अकेलापन है वो खटकने लग जाती है। शायद इसी को प्यार कहते हैं। और आपको क्या लगता है, अगर आपको ये प्यार लगता है तो आपके दिल को शायद पता होगा कि उसको किससे प्यार है, और उसी प्यार के का वास्ता आपको ज़रूर बताना है हमें कि आप हमारे गीतों को सुनने के बाद कैसे महसूस कर रहे हैं। So waiting for your messages on 5499-1294, and of course आप हमसे बात भी कर सकते हैं on 4028-2035 4028-2035 पर हम आपके फोन कॉल्स

इंतजार कर रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के मैसेजेस आ रही है लेकिन ऑफ एयर बात कर रही हैं और गाने की रिक्वेस्ट भी कर रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट गाना आपने मांगा बहुत ही प्यार से, आशा ऑफ बिलिया, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड द नेक्स्ट ट्रैक गोज़ आउट स्पेशली फॉर योर किड्स और आपके पति देव के लिए जो इस वक्त काम पर है, उनको बहुत ही मिस किया जा रहा है।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. प्यार में बस कुछ दिनों की बात बरसों की बात लगती है और ऐसा लगता है ना कि जब हम किसी से मुलाकात करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं एक दिन ना मिलो दो दिन ना मिलो तो ऐसा लगता है कि बरसों बाद उनको नहीं देखा है। बस प्यार में ऐसा लगता है कि वक्त धीरे धीरे ही चलता रहता है और प्यार में मन यही कहता है कि बस समय तू जल्दी जल्दी चल। चलिए पलक झपकते ही बस ये वक्त निकल ही रहा है। थोड़ी देर में विल बी स्टेपिंग इन द सेकंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज जहां पर दिव्या का साथ है अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक।

बिल्कुल आपके दिल में ऐसी जगह हम बना लेंगे कि आपको खुद लगेगा कि बस यही प्यार है। वेल आपके इस दिल को और भी करार और कुछ कुछ बेकरार करने के लिए आ चुके हैं कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। 8:08 हो चुके हैं ट्यूसडे इवनिंग, जहां पर दिव्या का साथ है। आपके मैसेजेस भी हम तक पहुंच रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पर गीतों का कारवा तो आगे हम बढ़ाते रहेंगे, लेकिन इससे पहले वी हैव समथिंग टू अनाउंस। ऑफ कोर्स सैटरडे को आप एंजॉय कर पाएंगे द एक्स्ट्रा स्पेशल कॉन्सर्ट, यस टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे 30th May 2026, और ये होने वाला है आज फ्रॉम 8 PM एट SVICCPI। और आपको हम बता देते हैं कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय ग्रेविटी जीरो एंड टिकट बॉक्स, और टिकट्स आर अवेलेबल एंड रिजर्वेशंस कैन बी मेड थ्रू हॉटलाइन, और नंबर है 2146464 ऑन

0: ticketbox.mu. और चलिए हम बात कर रहे हैं कॉन्सर्ट अबाउट जुबिन नौटियाल, उनके बारे में क्या कहें, आवाज़ इतनी सुरीली है और बस उनके नेचर के बारे में बात करें तो ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ और पीपल आर वेटिंग टू बी एबल टू असिस्ट दिस कॉन्सर्ट लाइव एंड डायरेक्ट टू सी हिम सिंगिंग, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं, तो जितना हो सके टेक वन एडवांटेज ऑफ दिस ब्यूटिफुल ओकेजन और आपको मौका मिलेगा टू सी हिम सिंगिंग लाइव, तो बस मौका ना गवाएं। वैसे हमने आपको बता दिया है कि कौन से नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं ऑन दी हॉटलाइन टू रिज़र्व योर टिकट्स और वहाँ पर टिकट्स अवेलेबल भी है, बस आप जाइए और कॉन्सर्ट को एंजॉय कीजिए। आई एम वेरी श्योर इट्स गोइंग टू बी अ मैजिकल मैजिकल कॉन्सर्ट।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: वेल ये गाना हमने खास तौर से डेडिकेट किया हुआ है फॉर ज्ञान बिहारी जी, आपकी वाइफ है सबीता, बहन एक्चुअली सिस्टर इन लॉ है गीता, संजीव, फ्रेंड सुनील, रानी और सभी RM2 लिसनर्स के नाम।
1: इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।
0: एक और खूबसूरत सा गाना, दिल और रूह को छू देने वाला गाना। आज बजकर 23 मिनट हो चुके हैं। दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर श्वेता हुकुम ऑफ बुना कई, गोज आउट फॉर बिलवड हबी रोशन, एंड जस्ट वांट टू टेल हिम दैट आई लव हिम सो मच।

0: वेल रात्रि के 8:30 हैं और उम्मीद करते हैं दैट यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती और हमारे खूबसूरत गीतों को एंजॉय करते हुए आपके खूबसूरत मैसेजेस हम तक एक बार फिर से पहुंच रहे हैं. एंड यहाँ पर किसी ने कहा है हाय दिव्या हाउ यू थैंक्स ऑल फॉर दिस लवली गाने माई रिक्वेस्ट फॉर द सॉन्ग हर किसी को नहीं मिलता फ्रॉम द मूवी बॉस. चलिए आपको भी शुभरात्रि एंड ये गाना हम थोड़ी देर में ज़रूर आपके लिए हम चलाएंगे. एंड किसी ने कहा है कैन यू प्लीज़ प्ले द सॉन्ग व्हाई डिड यू ब्रेक माय हार्ट फ्रॉम द मूवी अकेले हम अकेले तुम फ्रॉम कैश. हाय क्या हुआ आपका दिल टूटा हुआ है क्या. लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पर टूटे दिलों को ज़रूर हम जोड़ते हैं. एंड ये गाना गोज़ आउट स्पेशली आपके नाम जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: वैसे इस गाने की फरमाइश, वेल वी हैव दिस गाना और इस गाने को बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट किया गया है. थैंक यू सो मच रोशनी इस खूबसूरत गीत को रिक्वेस्ट करने के लिए. एंड उम्मीद करते हैं कि आप इस गाने को बहुत ही एंजॉय करेंगे और इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट जहां पे आप पूरा पूरा रिलैक्स कर पा रहे हैं और ख़ुद को थोड़ा टाइम दे पा रहे हैं. तो चलिए रिलैक्स कीजिए और अपने इस फेवरेट गीत को एंजॉय कीजिए.

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: हमारा दिल बार बार आपको चुनता है और बस दिल दिमाग यही कहता है कि आपसे प्यार करें और प्यार की बातें करें और साथ में आपके फीलिंग्स के बारे में जानें। वैसे प्यार में तो बस यही सिचुएशन चलता रहता है कि एक बैठ के दूसरे की फीलिंग्स के बारे में समझें, सोचें, सुने और जब बारी आती है तो दूसरे शख्स सेम ही करता है। इससे थोड़ा और प्यार बढ़ता है और इट्स ऑलवेज नाइस टू नो कि दिल का हाल कैसा है, इसीलिए इसको एक्सप्रेस करें ना कि इसको सप्रेस करें। चलिए इसी के साथ इट्स टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत, आपको हम विश करेंगे शुभ रात्रि, शब खैर, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a musti.
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: A very good evening, ladies and gentlemen. आप सभी का स्वागत. और क्लॉक ने जैसी 9 बजाए, हम भी समझ गए कि हम यहाँ पर आए आपका साथ निभाने के लिए. भाई ऑफिस का स्ट्रेस हो या ट्रैफिक का, मैं सबको बोलो बाय बाय. मैं आ गया हूँ म्यूजिक को साथ देकर, मस्ती और थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल आपके लिए. कॉफी रेडी रखो, मूड लाइट रखो और वॉल्यूम थोड़ी हाई कर लो. आज की रात होंगे सॉन्ग स्माइल्स और स्वीट मेमोरीज के नाम, तो सीट बेल्ट बांध दो क्योंकि म्यूजिकल राइड अब स्टार्ट होने वाली है.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: भाई रात जितनी गहरी होती है कॉन्वर्सेशंस उतनी ऑनेस्ट हो जाती हैं, और इसी ऑनेस्टी के साथ हम लाए हैं गाने जो दिल को सॉफ्टली टच कर जाएंगे। कोई याद आ रही हो तो टेक्स्ट कर दो, कोई क्रश ऑनलाइन हो तो इनडायरेक्टली सॉन्ग डेडिकेट कर दो। ये शो है इमोशंस का, नाइट रंगीन, और वो फीलिंग बहुत ही न्यू। बस मूड को रिचार्ज करो और म्यूजिक को दिल में उतरने दो।

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: अच्छा डिनर हो गया ना तो डिजर्ट में कुछ हो जाए. अरे प्यारे प्यारे खूबसूरत बहुत ही कमाल के म्यूजिक स्टाइल्स. अब टाइम है थोड़ी सी म्यूजिकल कैलोरीज को बर्न करने का. यहाँ बजेंगे गाने जो बेडरूम को, कॉन्सर्ट और कार को डिस्को बना दें. हाँ आज की रात बोरिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होने वाली. स्माइल मैंडेटरी है और ओवर थिंकिंग स्ट्रिक्टली बैंड. सो रिलैक्स कीजिए बिकॉज योर हैप्पी प्लेस इज ऑफिशियली ऑन एयर.

भाई तारे से तारे आसमान में फुल अटेंडेंस दे रहे हैं और बिल्कुल तैयार हैं हमारे इस स्टार शो के अंदर, क्योंकि इतनी सारी आवाजें, इतने सारे गाने और सब है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जय एंटरटेनमेंट का फुल कॉम्बो पैक, थोड़े से गॉसिप्स, थोड़े से रोमांस और बहुत सारा म्यूजिक। अगर नींद आ रही है ना तो टेंशन मत लो, हम है ना आपका साथ देने के लिए, रात को स्पेशल बनाने के लिए। बस एयरफोन्स लगाओ, दुनिया को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दो।

0: वेलकम टू RM2। आता है मुझको
1: प्यार में जल जाना। इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
2: चेक दिस आउट।
1: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
3: Nimura, nimura, nimura.
2: Check this out.
1: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: अच्छा, हर रात का एक अपना साउंड ट्रैक होता है, किसी यादों का, किसी के सपनों का, किसी की लेट नाइट ड्राइव का, और आज की प्लेलिस्ट भी बिल्कुल वैसे ही मैजिकल होने वाली है। दिल डांस करेगा, फेस स्माइल करेगा और मूड शाइन करेगा। ये तीन घंटे सिर्फ आपके नाम, तो वेलकम टू योर नाइटली डोज ऑफ फील गुड वाइब्स।

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits, music only.
1: Feels a musti.
3: देखिए, नाइट शो का असली मजा तब आता है जब लाइट्स डिम हो और सॉन्ग्स दिल के करीब हो। आज की रात हम लेकर आए हैं मेलोडी और मैडनेस का परफेक्ट बैलेंस, कभी ओल्ड स्कूल फील और कभी लेटेस्ट बीट्स, कभी हंसी वाली बातें तो कभी हार्ट टचिंग मोमेंट्स। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मिलता है आपको एक प्रॉमिस कि नेगेटिविटी को एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ गुड वाइब्स और गुड म्यूजिक।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: Just me. क्या कहा? अभी भी काम चल रहा है। अरे लैपटॉप बंद करो, लाइव की प्लेलिस्ट चालू कर दो, बिकॉज अब शुरू हो गया है आपका फेवरेट नाइट हैंग आउट। यहाँ कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, सिर्फ दोस्ती वाली फ्रीक्वेंसी है। आप सुनते रहो, हम एंटरटेन करते रहेंगे, और हाँ मिडनाइट तक मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड।
1: वेलकम टू RM2। आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: It's all day long Bollywood hits music.
3: Check this out.
2: Radio Musti. Radio Musti. Feel the Musti.
4: Nimura, Nimura, Nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.

0: Radio Mercy
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: ये लेट नाइट शोज का चार्म ही कुछ अलग होता है। यहाँ लोग दिल से गानों को सुनते हैं। आज वही फीलिंग्स हम लेकर आए हैं जो डायरेक्टली हार्ट पे नॉक नॉक करने वाले हैं। अगर आप बालकनी में चाय लेकर बैठे हैं तो परफेक्ट टाइमिंग, अगर ब्लैंकेट में रैप्ड अप हो तो और भी परफेक्ट। बस म्यूजिक को अपना नाइट पार्टनर बना लो।
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.

रात का साइलेंस और सॉफ्ट म्यूजिक, हाँ डेंजरस कॉम्बो होता है। पुरानी यादें भी आ जाती हैं और हिडन सिंगर्स भी बाहर आ जाते हैं। तो अगर आज बाथरूम कॉन्सर्ट करने वाले हो तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ मूड को बनाना है और वो हम फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्माइलिंग।

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: आरएम टू पर लेट नाइट ग्रूव्स और सभी इंटरनेशनल लिसनर्स को बिग हेलो। वैसे लाइफ में सबको एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां जजमेंट्स ना हो, सिर्फ कंफर्ट हो, और ये शो बिल्कुल वही जगह है। यहां सॉन्ग्स भी दोस्त जैसे हैं और वाइब्स बिल्कुल फैमिली वाली। आज की रात खुद को थोड़ा पैम्पर करो, म्यूजिक थेरेपी फ्री में मिल रही है।
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: Radio Musty, all the way.
5: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
6: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
1: Radio Musty, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits, music only.
1: Feels a musti.
3: दिन भर की रेस के बाद दिल को ब्रेक चाहिए होता है, इसलिए रात को थोड़ा स्लो होना भी जरूरी है। तो बस अब रिलैक्स मोड ऑन कर लीजिए। हम लेकर आए मेलोडीज जो स्ट्रेस को सॉफ्टली डिलीट कर देती हैं और वो मोमेंट्स जो मूड को इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देते हैं। वेलकम टू योर मिडनाइट हैप्पीनेस स्टेशन RM2 लेट नाइट ग्रूव्स।

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: अच्छा, कई लोग कॉफ़ी पीते हैं कि रात को आंखें खुली रहें, और कुछ लोग हमारा शो सुनते हैं क्योंकि यहाँ एनर्जी भी है और इमोशंस भी, गाने भी मिलेंगे और कुछ फन भी। रात बोरिंग लग रही है तो बस स्टेशन चेंज मत करना, फ्रीक्वेंसी को सेट कर लेना। वही हमारा प्रॉमिस है कि आपका साथ यूं ही निभाएंगे, आप चलेंगे तो हम भी साथ चलते जाएंगे।
0: Radio Musty in the mix.

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: बाहर कुछ ठंडी हवा चल रही है ना, और स्पीकर के अंदर वार्म मेलोडीज रेडी है। कॉम्बिनेशन काफी कमाल की और बहुत ही क्यूट। आज अगर हर गाना एक मूवी वाली फीलिंग दे रहा है तो बस इमेजिनेशन को ओपन छोड़ दो और रात को थोड़ा सिनेमैटिक बना दो।

ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कल के काम के बारे में सोच रहे हैं, बस यही सोच रहे हैं कि आज रात खत्म होगी तो एक बार फिर से वही भागा दौड़ी और वही जिंदगी का नॉर्मल रूटीन। इसलिए जरूरी है कि म्यूजिक के जरिए थोड़ा जिंदगी में ट्विस्ट तो लाओ। अरे अगर गाना पसंद है तो थोड़ा गुनगुनाओ।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती
3: भाई, देखते देखते ये कैसे 3 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। और बस हमारा ये सफर है यूं चलता जाएगा, लेकिन अब जल्द मुलाकात होगी कल। अब आपका जो प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है, वरना मॉर्निंग अलार्म दुश्मन बन जाएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और म्यूजिक को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखिए। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, और कल जैसे मैंने कहा कि एक बार फिर से मिलते हैं अलग साल के साथ, फुल ऑन मस्ती RM2।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music. Welcome to RM2.
5: Radio Musti.
0: Radio Musti.
5: North, South.
0: 103.5.
5: East, West.
0: 96.4.
5: Center.
0: 99.4.
2: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: The latest news and the greatest mix of music.
5: Radio

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a

0: RM2.
1: Radio Musty feels a mistake.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: ear musty.
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा.
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: RM2 Radio Musti in the mix. Radio

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.